नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:57 होने वाले हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। यह फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को पैराग्वे

0: ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मैक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना।

हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर सागर की गहराइयों तक फैला हमारा भारत संस्कृति, परंपरा, भाषा और धर्म की अनोखी माला है। आइए हम इस महान भूमि को नमन करते हैं, जिसे हम गर्व से भारत कहते हैं।

विघ्नहर्ता मंगलकर्ता माता गौरी के लाडले पुत्र प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का स्मरण करें। बुद्धि विवेक ज्ञान और सफलता के प्रतीक श्री गणेश जी की कृपा से ही हर कार्य सिद्ध होता है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ गौरी पुत्र श्री गणेश जी का वंदन करें।

सत्य में शिवत्व और शिवत्व में सुंदरता का संगम होता है, तब एक अद्भुत अनुभूति जन्म लेती है। इसी दिव्य भावना को स्वर और संगीत में पिरोता हुआ यह गीत प्रस्तुत है।

वृंदावन की पावन गलियों में गूंजती बांसुरी की मधुर तान भक्तों के हृदय में प्रेम और भक्ति का संचार करती है। राधा रानी के प्रियतम, भक्तों के पालनहार और लीलाओं के अधिपति श्री कुंज बिहारी जी की महिमा का गुणगान करता हुआ यह सुंदर भजन, आइए भक्ति और प्रेम के रस में डूबकर इसका आनंद लें।

0: श्रोताओ, ये था आज का वंदना कार्यक्रम। आलेख एवं संकलन निहारिका श्रीवास्तव का, स्वर अमृता विक्रम सिंह के। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए आज का चिंतन। आज के चिंतन का विषय है उड़ान हौसलों की। आलेख निहारिका श्रीवास्तव का है और वाचन स्वर मुकाम सिंह चौहान के।
1: अक्सर हम आकाश में उड़ते परिंदों को देखकर सोचते हैं कि काश हमारे पास भी पंख होते, लेकिन मनुष्य के पास ईश्वर ने उन पंखों से भी कहीं अधिक शक्तिशाली चीज दी है, और वह है अदम्य साहस और कभी न हार मानने वाला हौसला। हम सोचते हैं कि बड़ी सफलता पाने के लिए हमें बहुत सारे साधनों, सुविधाओं या बहुत ऊंचे खानदान की जरूरत है, लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया को उन्हीं लोगों ने बदला है जिनके पास साधन तो कम थे पर हौसले अटूट थे। सच कहा गया है कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसका अर्थ यह है कि जब परिस्थितियां आपको नीचे गिराने की कोशिश करें, तब आपकी इच्छा शक्ति आपको ऊपर उठाती है। हौसला वह ताकत है जो एक दिव्यांग को पहाड़ चढ़ने की हिम्मत देता है और एक गरीब बच्चे को विश्व स्तर का वैज्ञानिक बना देता है। यदि आपके भीतर अटूट विश्वास है तो दुनिया की कोई भी दीवार आपको आपके सपनों की ऊंचाई तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। इसलिए अपनी परिस्थितियों को दोष देना छोड़ें और अपने सपनों में जान फूंकिए, क्योंकि आपकी असली उड़ान आपके पंख नहीं बल्कि आपकी हिम्मत और आपका जज्बा तय करेगा। उड़ान हौसलों की का अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि आपकी सफलता आपकी बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आपके आंतरिक संकल्प से तय होती है। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो चुनौतियां आना स्वाभाविक है। कभी धन की कमी आड़े आती है, कभी स्वास्थ्य साथ नहीं देता, तो कभी समाज हमारे सपनों पर हंसता है। लेकिन जिनके पास हौसला होता है वह इन बाधाओं को बाधा नहीं बल्कि अपनी सफलता की सीढ़ी मानता है। पंख केवल हवा में संतुलन बनाने के काम आते हैं, लेकिन जो शक्ति परिंदे को तूफानों को चीरने के लिए प्रेरित करती है वह उसके भीतर का जज्बा होता है। ठीक इसी तरह एक विद्यार्थी के लिए उसके संसाधन नहीं बल्कि उसकी मेहनत और एकाग्रता ही उसके हौसले की उड़ान है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें ऐसे अनगिनत व्यक्तित्व मिलेंगे जिन्होंने इस बात को सिद्ध किया है। हम बात करें बाबा साहेब अम्बेडकर की, जिन्होंने अभावों और सामाजिक विषमताओं के बावजूद अपनी विद्वता से देश का संविधान लिख डाला। हम बात करें अरुणिमा सिन्हा की, जिनका एक पैर नहीं था फिर भी उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। क्या उनके पास ऊंची उड़ान के लिए शारीरिक पंख थे? नहीं, उनके पास था तो बस एक अटूट हौसला जिसने असंभव को भी संभव बना दिया। अपनी सीमाओं को कभी भी अपनी नियति नहीं मानना चाहिए। आपके भीतर संभावनाओं का एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है। डर को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि डर आपको बांधता है और हौसला आपको आजाद करता है। कहा भी गया है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। उड़ान हौसलों की केवल एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन का वह मंत्र है जो हमें सिखाता है कि असली ताकत हमारे अंदर छिपी होती है। जब इंसान अपने सपनों पर विश्वास करता है, अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के बल पर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है, तो वह आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। हौसले ही वे पंख हैं जो हमें कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। अगर मन में कुछ कर गुजरने की चाह हो तो रास्ते की बाधाएं भी छोटी लगने लगती है। जो व्यक्ति हार नहीं मानता, अपने हौसलों को बनाए रखता है, वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। बस लक्ष्य तय कीजिए और अपने हौसलों को इतनी ऊंचाई दीजिए कि आसमान भी छोटा लगने लगे।
0: उड़ान हौसलों की, ये था आज का चिंतन। आलेख निहारिका श्रीवास्तव का, वाचन मुकाम सिंह चौहान। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोतों, अब सुनिए कार्यक्रम खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जल निकासी व जल संरक्षण विषय पर जानकारी दी जाएगी, जानकारी का वाचन कर रही हैं संध्या कोठारी।
2: कृष्ण भयोन, राम राम। कृष्ण भयोन, हमारी पूरी जो मेहनत छे खेती किसानी की वो काम सबसे महत्वपूर्ण छे पानी। अगर पानी बाबो समय पर अच्छो बढ़िया आई जाए तो हमारी खेती बाड़ी का काम बहुत अच्छा से सुचारू रूप से कमा कि चली जाए।

0: पर अगर पानी बाबा की मेहरबानी अच्छी हो तो फसल भी अच्छी आवाज। पर भाई हूँ कई बार हर चीज़ अच्छी भी नहीं होती है। पानी अच्छी बात है आई जाए, पर कभी हमारा खेत में अगर पानी को कहीं भराव हो रो हो तो वो पानी हमारा लैंड खतरनाक हो सके। तो आपको यूज कहूँगा कि जब हम बोनी करा हमारा खेत को ध्यान रखा और खेत में जहाँ भी जल जमाव होता हो तो ओकी निकासी का हमको आवश्यक रूप से अच्छे से ओकी निकासी कर देनो चाहिए। अपन यूँ कहवा कि कहीं का भी क्षेत्र में सतह या उप सतह को पानी को प्राकृतिक या कृत्रिम ढंग से हटाणु अपने एक जल निकासी कही सकें। न कृषि भूमि का उत्पादन का सुधारना और पानी की आपूर्ति को प्रबंधन करें जल निकासी बहुत आवश्यक छे। अब जल निकासी करना का लेन हमको जब हम बुआई करा तो चोड़ी चोड़ी नाली न असी होनी चाहिए जे काम असी पानी को निकास अच्छो रहे। जब हम बीज बोवा तो ओका पाटो चढ़े ना आपको तो मालूम छे दो ही तरफ से ऊंची ऊंची पाड़ करी ना हम बीज बोवा ताकि अंकुरण जब आव तो जितरो पानी हमारा बीज का लग ओतरोज वहाँ रहे, बाकी ढलान का रूप में आई ना नाली में से पानी हमारो चली जाए। अगर अंकुरण का बीज का पानी में लगो और पर्याप्त धूप में लगी तो जज हमारो अंकुरण भी अच्छो आई जाएगो और हम जैसा 100 बीज बोवांगा तो 100 पौधा हमको होमसी मिलेगा। साथज में हम यूँ कहवा कि अच्छा अंकुरण का लेन पौधा का भी जैसा हमारा जीवन का लेन ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता छे असोज हमारा पौधा की जड़ का अंकुरण का ओकर ऑक्सीजन मिलनु भी बहुत जरूरी छे। तो जसोज ऑक्सीजन मिलेगा और अगर पौधा का ऑक्सीजन मिले तो नाइट्रोजन भी वहाँ को वहाँ ओकर मिली जाए और पौधा की बढ़वाल बहुत अच्छा तरीका से हो। साथ में आपको ये बताऊँ कि अगर हमारा खेत में से जल निकासी की व्यवस्था अगर अच्छी हो तो निश्चित रूप से हमारा खेती बाड़ी का जो काम है हमको खेत में जाने जो काम करना है खरपतवार है या हमारी निंदई गुड़ाई है या जहाँ बीज का अंकुरण नहीं हुआ वहाँ नयो पौधों लगाना है हमको जो भी काम करना है अगर जल निकासी अच्छी होगी तो हमारा खेत भी अच्छा रहेगा और हम ये सारा काम आसानी से करी पावांगा। साथज में जल निकासी करा और जल निकासी का साथ साथ आपको तो मालूम छे कि हमको जल संरक्षण करनो भी बहुत आवश्यक छे क्योंकि जब पानी नहीं आवोगो तब भी पानी हमको चाहिए और पानी तो सो खेती बाड़ी का लेने इतना आवश्यक छे कि अगर आज हमको पेड़ पौधा ना का पानी देणु तो निश्चित रूप से हमको आज देणु पड़ेगा नहीं तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। साथज में जल निकासी का लेन भी आपको बहुत अच्छो साधारण सो तरीको हम बताऊँ कि हमारो खेत जिस प्रकार से छे जहाँ ढलान आई रोज हम उना ढलान का वहाँ जितरो बड़ो चाह जितनी जमीन छोड़ी सका हम उतनी गहरो गड्ढो कर लेवा और चारी तरफ से ओका अच्छो बढ़िया कर लेवा और पानी अगर आवोगो पूरा खेत में हमारा जाएगो। साथज में जहाँ से पानी का हमने निकासी की व्यवस्था करी वो पानी सीधो जाए ना उना गहरा गड्ढा में एकत्रित हो जाएगा। बाद में जब हम चाह तो उना पानी को पछुआ में उपयोग करी लेवा हमारा खेती में डालने का लेन और हमारा पौधा नंबर देने का लेन। और कई बार कहे हो कि पानी आवना में और बोवनी में बहुत ज़्यादा गेप हो जाए अपन कहवा कि ज़्यादा दिन हो जाए तब हमको पानी की बहुत आवश्यकता लगे। तो भाई हूँ पानी को संरक्षण भी करा और पानी की निकासी को प्रबंधन भी बहुत अच्छे से करा और आज हमारा सबके सभी किसान भाई बहन का यूज करनु छे भाई राम राम।
1: जल निकासी व जल संरक्षण इस विषय पर केंद्रित था आज का खेती की बातें कार्यक्रम। जानकारी दे रही थी संध्या कोठारी। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।

भगवान शंकर के विवाह का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने इन शब्दों में किया है। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। शिव ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, देवताओं ने हर्ष ध्वनि की, श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और सर्वत्र आनंद छा गया। विदा के समय जामाता को अनेक उपहार देकर हिमाचल ने हाथ जोड़े, हे शिव, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। हिमाचल पत्नी मैना ने विनती की, उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, आप इसके सभी अपराध क्षमा कीजिएगा। और बेटी के लिए मां के वचन थे, हे पार्वती, तुम सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। तत्पश्चात शिव पार्वती कैलाश पर्वत के लिए विदा हुए।

आइए श्रोताओं, अब आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आप श्रोताओं के पत्रों के उत्तर दिए जाएंगे कार्यक्रम आपका पत्र में आज सुबह 7:20 से। इस कार्यक्रम में यदि आप मेल करना चाहते हैं तो अभी इस वक्त भी मेल कर सकते हैं, हम आपके मेल का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा मेल आईडी है आपका पत्र indore@gmail.com, APKAPATRAINDORE@gmail.com। इस मेल आईडी पर आप इस वक्त भी मेल कर कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं। हम श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि फिल्मों के गीतों की फरमाइश इस कार्यक्रम में न करें, कृपया आप कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं। आप श्रोताओं के पत्रों के उत्तर देंगे कार्यक्रम प्रमुख श्री राजेश। 8:30 पर फिल्म संगीत सुना जा सकता है। लोक संगीत में स्नेहलता भटोरे के गाए लोकगीत आप सुबह 9 और शाम 6:45 पर सुनेंगे। अनुराधा पौडवाल के गाए नगमे सुनिएगा सुगम संगीत में सुबह 9:15 और शाम 6:30 से। शास्त्रीय संगीत में पंडित कमल कामले का वायलिन पर बजाया राग गुजरी तोड़ी हम आपको सुबह 9:30 सुनवाएंगे, और पंडित कमल कामले का ही वायलिन वादन आप रात्रि 10:30 भी सुन सकते हैं। रात्रि 10:30 आप सुनेंगे राग बागेश्री। 10:05 का समय होगा फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन का। आइए अब आपको दोपहर की सभा के कार्यक्रमों के बारे में बता दें। 11:00 फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने सुना जा सकता है। दोपहर की सभा में आप फिल्म संगीत सुन सकते हैं 12:00, 2:00 और 2:30 से। 12:30 का समय संग्रहालय से कार्यक्रम का होगा। 1:30 पर आप महिला कार्यक्रम सुनेंगे। 1:00 आप महिला कार्यक्रम सुनेंगे। 1:30 का समय सुगम संगीत का होगा और 1:45 पर लोक संगीत सुनवाया जाएगा। सांध्यकालीन सभा में शाम 5:00 युवाणी कार्यक्रम होगा। आज के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है एक ही फिल्म से कार्यक्रम। शाम 5:45 पर फिल्म संगीत का आनंद लिया जा सकता है। शाम 6:00 आप सुनेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 7:20 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम होगा। ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में सफेद मूसली की खेती इस विषय पर जानकारी होगी और कार्यक्रम में इस विषय पर भोला वाक्तारिया से की गई भेंटवार्ता आप सुनेंगे। रात्रि 8:00 सुर्खियों में कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। 8:15 का समय होगा दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम का। 9:15 पर आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रगीत सुनेंगे। रात्रि 9:30 चर्चा का विषय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 10:00 सुनिएगा नाटक पथरीले पल, इसका निर्देशन एवं प्रस्तुति संजीव मालवीय की है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की। एक बार फिर से हम आपको बता दें, सुबह 7:20 पर आपका पत्र कार्यक्रम होगा, जिसका मेल आईडी है आपका पत्र indore@gmail.com। आप इस समय भी मेल कर अपने समीक्षा अपने कार्यक्रमों के बारे में बता सकते हैं। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 6:55 होने को हैं। थोड़ी देर में संस्कृत में समाचार और 7:00 हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ता

0: ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले किए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे, वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कम्प्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। पहले कल मंगलवार तक ये छूट दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
3: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
4: सच कहा।

0: और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
1: क्या?
3: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
1: वो कैसे?
3: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: पर सुनेंगे कैसे?
3: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
4: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
3: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
4: वही 1:00 PM।
3: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।
0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में, मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा,
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: श्रोताओ, एक बार फिर हम आपको याद दिला दें, आपका पत्र कार्यक्रम 7:20 से होगा। इस कार्यक्रम का मेल आईडी है आपका पत्र indoor@gmail.com। हम आपके मेल्स का इंतज़ार कर रहे हैं। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अरुणाचल में भारी बारिश का जायजा लिया, कहा केंद्र और राज्य मिलकर संकट से निपटेंगे। वीबी जी राम जी अधिनियम आज से होगा लागू, ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की मिलेगी गारंटी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज सिवनी में राज्य स्तरीय धान महोत्सव में होंगे शामिल। और मौसम विभाग ने बालाघाट और डिंडौरी में भारी बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति भयावह है। इस संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे। उन्होंने बताया कि हमने स्थिति का जायजा लिया है और इसके लिए चर्चा की है। संकट बड़ा है और चुनौती भी सामान्य नहीं है।
2: यहाँ भारी बारिश के कारण अरुणाचल प्रदेश में जो संकट पैदा हुआ है, स्थिति भयावह है, संकट बड़ा है और चुनौती भी सामान्य नहीं है, लेकिन फिर भी तत्परता पूर्वक कदम उठाए गए। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, रेस्क्यू ऑपरेशन। मैं राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि
1: कृषि मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है। प्रधानमंत्री को यहां की स्थिति की रिपोर्ट दी जाएगी और हर संभव सहयोग भारत सरकार करेगी। श्री चौहान ने आज भी प्रभावित इलाकों में जाकर स्थिति का जायजा लेने का आश्वासन दिया है। विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जीराम जी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के श्रमिक रोजगार गारंटी देने वाला अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में देश भर में इस नए कानून को लागू करने के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन के बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इससे कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहेगा। श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर नए ढांचे में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा बनी सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज सिवनी जिले में राज्य स्तरीय धान महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव जिले को विकास और किसान कल्याण की अनेक सौगातें देंगे। महोत्सव में कोदो कुटकी उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि का अंतरण, 494 करोड़ से अधिक लागत के 629 विकास कार्यों को लोकार्पण एवं भूमि पूजन और हितग्राहियों को हितलाभ वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव राज्य के कोदो कुटकी उत्पादक 3,941 किसानों के बैंक खातों में 2,82,99,300 रुपए की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे। ये राशि किसानों को 1,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रदान की जा रही है, जिससे श्री अन्न उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इस अवसर पर राजस्व मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा, कृषि मंत्री अदित्य सिंह कंसाना, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद भारती पारदी सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि जल से ही जीवन है और जीवन के लिए पानी की

0: बचत करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जल संरक्षण और संवर्धन का अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी बीते 3 वर्षों से यह अभियान वृहद रूप से जन सहयोग से चलाया जा रहा है और बड़ी संख्या में जल संरचनाओं का संरक्षण एवं पुनरुद्धार किया है। कल राजगढ़ में जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल अलनीनो के प्रभाव से कम बारिश का अनुमान है, इसलिए प्रदेश में अमृत सरोवर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और नदी संरक्षण जैसे जल स्रोतों के संरक्षण कार्य निरंतर जारी रहेंगे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि
1: मुझे इस बात की प्रसन्नता है 19 मार्च से 30 जून तक लगभग 100 दिन में 10,514 करोड़ की लागत से 3,62,000 से अधिक ये हमारे नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, छोटे कूप, अमृत सरोवर, इन सब का पुनरुद्धार किया।
0: रिजर्व बैंक RBI ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली ने बड़े बाहरी झटकों का सामना करने के बावजूद जबरदस्त मजबूती दिखाई है। बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की प्रस्तावना में RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत विकास दर, कम महंगाई, वित्तीय और गैर वित्तीय कंपनियों की बेहतर बैलेंस शीट और पर्याप्त बफर ने माइक्रो फाइनेंशियल स्थिरता बनाए रखने में मदद की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के मजबूत माइक्रो इकोनॉमिक आधार उसे कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में रखते हैं और बाहरी झटकों से निपटने की ज्यादा क्षमता प्रदान करते हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ई प्रवेश पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 30 जून तक प्रदेश भर में 5,48,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। इनमें से 4,68,000 से अधिक विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन पूर्ण हो चुका है तथा 2,93,257 विद्यार्थियों ने विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत की उनकी यह पहली आधिकारिक यात्रा है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के अवसर प्रदान करेगा। प्रदेश में पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक कुल 1,43,150 उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि इनके बैंक खातों में 1,010,25,00,000 रुपए की सब्सिडी जमा कराई जा चुकी है। अब रुक करते हैं खेल की खबर का। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया ICC महिला T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन के ओवल में कल पहले सेमीफाइनल में उसने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 126 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 13 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। कल मानसून जबलपुर, भोपाल, रीवा, शहडोल संभाग के जिलों में प्रवेश कर गया है। मौसम विभाग ने आज बालाघाट, डिंडौरी, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा और सागर सहित अधिकांश जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने जिला स्तरीय बैंकर समन्वय समिति की बैठक में बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हितग्राही मूलक योजनाओं के लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा कर पात्र लोगों को तुरंत लाभ पहुंचाया जाए। मानसून के चलते नर्मदापुरम का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और शिवपुरी का माधव टाइगर रिजर्व आज से 30 सितंबर तक अगले 3 महीनों के लिए पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद किया जाएगा। सतपुड़ा के मढ़ई और चूरना कोर क्षेत्रों में पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। झाबुआ जिले में साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 के 7वें दिन साइबर सुरक्षा रैली, नुक्कड़ नाटक और विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इंदौर के 100 सरकारी स्कूलों में ONGC, CSR फंड और सांसद सेवा संकल्प के सहयोग से करीब 70 लाख रुपए की लागत से RO सिस्टम और वाटर कूलर लगाए जा रहे हैं। पहले चरण में 29 स्कूलों से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और बड़वानी जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी आज से शुरू हो गई है। ये खरीदी आगामी 10 अगस्त तक चलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अरुणाचल में भारी बारिश का जायजा लिया। कहा केंद्र और राज्य मिलकर संकट से निपटेंगे। BBG रामजी अधिनियम आज से होगा लागू। ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिवनी में राज्य स्तरीय धान महोत्सव में होंगे शामिल। और मौसम विभाग ने बालाघाट और डिंडौरी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: वो चिट्ठी पत्री कागज पर झुककर लिखी हर पंक्ति में चाह, हर शब्द में घुलती अपनेपन की राह। मन की बातें कागज पर जब मोती बन जाती, सच की खुशबू हर अक्षर में जीवन भर जाती। गांव चौपालों की वो खबरें ले आती, दूर के दिलों को पल में निकट कर जाती। नमस्कार श्रोताओं, आपका पत्र कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम में आज आपके साथ हूं मैं शालिनी, और आप श्रोताओं के पत्रों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम प्रमुख श्री राजेश जी। राजेश जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: नमस्कार। शालिनी जी, आपने मोती की बात की
0: जी,
1: तो बारिश का माहौल है और पत्तों पर जो बूंदे हैं
0: जी,
1: वो किसी मोती से कम नहीं है।
0: बिल्कुल सही।
1: आपने चूंकि कुछ चंद पंक्तियां पढ़े
0: जी,
1: तो हमें भी कुछ अवसर मिलना चाहिए अगर आपकी इजाजत हो तो।
0: बिल्कुल सर।
1: पत्तों पर पड़ी बारिश की बूंदे कहती है, पत्तों पर पड़ी बारिश की बूंदे कहती है, हमारे प्यार की उम्र इतनी कम क्यों है। पड़ी रहना चाहती है हम अपना मोहब्बत की आगोश में, मगर ये कमबख्त हवाएं हमसे खफा क्यों हैं।
0: बहुत अच्छी पंक्ति है।
1: देखिए, आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई को भारत में मुख्य रूप से राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस और राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट दिवस मनाया जाता है।
0: जी सर।
1: राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस की बात करें तो भारत में यह दिन महान चिकित्सक पश्चिमी बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और चार्टर्ड अकाउंट दिवस की बात करें तो यह दिवस 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और 1 जुलाई को कनाडा का राष्ट्रीय दिवस भी है। और सबसे विशेष बात यह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस है और यह दिन हंसी मजाक और खुशियां बांटने के लिए वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है
0: जी।
1: तो अब हम अपने श्रोताओं से रूबरू होते हैं
0: जी।
1: हमारे पास ढेर सारे श्रोताओं के पत्र आए हैं, मेल आए हैं, और जो न पत्र लिख पाए हैं और न मेल लिख पाए हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9993290063, एक बार पुनः सुन लें, 9993290063, इस पर आप ये जो लाइव व्हाट्सएप का ये आपके पत्र प्रोग्राम है
0: जी,
1: जो मेल व्हाट्सएप सब पर केंद्रित है, आप इस पर कर सकते हैं। एक बार आप मेल आईडी शेयर कर दें
0: जी। श्रोताओं, हमारा मेल आईडी है आपका पत्र indore@gmail.com।
1: एक एक करके पढ़ें।
0: APKAPATRAINDORE@gmail.com। इस मेल आईडी पर आप अब से लेकर 8 बजे तक हमें मेल कर सकते हैं, और साथ ही व्हाट्सएप नंबर 9993290063 पर भी आप हमें मेल कर, आप हमें मैसेज कर अपनी प्रतिक्रियाएं बता सकते हैं
1: जी। अब शुरू करने के पहले, नभ से मोतियों का झरना, टिप टिप हौले से बरसे, वर्षा की बूंदों का एहसास, प्यारी पृथ्वी कब से तरसे, भूमि पर जल पड़ते ही मिट्टी की फैले सुरभि अनुपम, पानी से हो पुनित मानस, दिखे निसर्ग कितना हरितम। चारों ओर हरियाली ही हरियाली,
0: हरियाली हरियाली, और हरियाली महोत्सव आज से शुरू हो रहा है एक हफ्ते का।
1: और देखिए, इस हरियाली के मौके पर जब हमारे श्रोताओं के ढेर सारे पत्र और मेल शामिल होंगे तभी उनके चेहरे पर हरियाली झलक, उनकी एक झलक देखने को मिलेगी, तो नहीं हम एहसास जरूर कर सकते हैं। तो अब सिलसिला शुरू करें। ये पहला मेल
0: जी, पहला मेल आया है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से, और लिखने वाले हमारे श्रोता हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे।

0: वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम्बाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। इन्होंने सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग कहा है और ये आगे लिखते हैं,
1: आपको भी सुबह का नमस्कार। आगे क्या लिखते हैं?
0: कहते हैं कि हमें 25 जून का महिला सभा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में लोक परंपराओं को सहेजने में महिलाओं की भूमिका, इस विषय पर पूजा चौरसिया जी से जो बातचीत की गई थी वो इन्हें बहुत पसंद आई।
1: बहुत ही आपने अच्छा कहा। देखिए, लोक परंपरा जो होता है इसको निभाने में खास करके पुरुषों की तुलना में महिलाओं की अहम भूमिका होती है।
0: अहम भूमिका होती है, बिल्कुल सही
1: आपने सही कहा। और आगे क्या लिखते हैं?
0: बेहतरीन कार्यक्रम के लिए ये प्रेजेंटर शिखा जी को हार्दिक बधाई देते हैं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास व्हाट्सएप संदेश आया है श्रीनिवास देश पांडे जी का। आपने दो बार व्हाट्सएप किए। लिखते हैं, आकाशवाणी इंदौर को मेरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। आपने मेरा नाम कार्यक्रम में शामिल किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे लिखते हैं, शनिवार का सुनहरे पल कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा। रूपाली चौहान जी ने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका धन्यवाद हम उन तक पहुंचा रहे हैं।
0: जी
1: व्हाट्सएप के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भैरूलाल भक्तरिया धाकड़, जो उन्हेल जिला उज्जैन के एक प्रगतिशील कृषक हैं, इन्होंने लिखे हैं, सोमवार गुड मॉर्निंग इंदौर में प्रीति जोशी जी की प्रस्तुति विश्व नशा निरोग दिवस और आगामी डॉक्टर दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टरों से बातचीत और उनकी पसंद के गीत बहुत अच्छे लगे। और कल सुनहरे पल कार्यक्रम में कल्याणी जी के जन्मदिन के अवसर पर जानकारी और कल्याण जी आनंद जी के जो संगीतबद्ध फिल्मी गीत पसंद आए, माजदा खान की जो प्रस्तुति थी बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कल्याणी जी लिखा है, कल्याण जी हैं, कल्याण जी आनंद जी। और आगे लिखते हैं, 26 जून को खेती गृहस्थी कार्यक्रम में सनावत के वरिष्ठ श्रोता हुकुम चंद कटारिया जी से पर्यावरण संबंधी काव्य पाठ सुनने को मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। और आकाशवाणी परिवार की ओर से भी हुकुम चंद कटारिया जी को ढेर सारे बधाइयां अच्छे काव्य पाठ के लिए। और देखिए, चूंकि किसान श्रोता है तो हम किसानों को बता दें, जैसा आपने अभी अभी न्यूज में भी सुना, बरवानी जिले में मूंग की खरीदी जो है शुरू हो गई है
0: जी।
1: और 10 अगस्त तक ये चलेगी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। और लखनदास बैरागी जी गांव लेकोड़ा आंजना उन्हें जिला उज्जैन से लिखते हैं, आज सुबह चिंतन में हौसलों की उड़ान शीर्षक पर ज्ञानवर्धक बातें बहुत अच्छी लगी। मोगाम सिंह चौहान जी की प्रस्तुति सराहनीय लगी। उम्मीद है बहुत सारे श्रोतागण अपने सपने को लेकर हौसला मिला है इनको। और खेती की बातें में जल निकासी और जल संरक्षण के बारे में जो जानकारी दी गई बहुत अच्छा लगा। देखिए, वर्तमान समय में जल संरक्षण का काफी महत्व है। अगर आप पानी की एक एक बूंद को संयोजेंगे तो निश्चित रूप से हम भूमि में जल स्तर बढ़ा सकते हैं
0: जी।
1: और आगे लिखते हैं, आकाशवाणी इंदौर को हम प्रतिदिन सुनते हैं और हम अपना जो व्हाट्सएप किए हैं हमारा शामिल हो आपकी पत्र में, इन्होंने अपनी
0: जी और
1: शामिल बिल्कुल हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी।
1: अगला मेल
0: है अरविंद कुमार गुड़िया, भाव्या कुमारी, निवेश और नियति, ये बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से हमें मेल करते हैं।
1: न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से हमारे ढेर सारे देश विदेश के श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चूंकि हमारा ट्रांसमीटर तो रेडियो जो है 200 किलो वाट के रेडियस में ये मीडियम वेव लोग सुनते हैं। देखिए, न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हमारे जो सुनने वाले जो आकाशवाणी इंदौर के जो प्रेमी श्रोता हैं बिल्कुल प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। आगे क्या
0: इनका ये शिकायती पत्र है, इसलिए मैंने इसे सबसे पहले लिया है। पहले तो इन्होंने कहा है कि 26 जून को खेती गृहस्थी कार्यक्रम के अंतर्गत सनावत शहर के जाने माने श्रोता हुकुमचंद कटारिया जी का काव्य पाठ सुना, जो पर्यावरण पर आधारित था, और ये इन्हें बहुत ही प्रेरणादायक और वर्तमान स्थितियों को अवगत कराता हुआ लगा, और इतनी अच्छी रचना के लिए इन्होंने धन्यवाद दिया है।
1: देखिए, सबसे बड़ी बात है हुकुमचंद कटारिया जी इतने रेडियो सुनते हैं और खास करके ढेर सारे जो कविगण, बड़े बड़े कविगण हैं उनसे सुनते हैं कि खुद ही कवि हो गए
0: जी।
1: इससे सबसे बड़ी बात और उपलब्धि रेडियो के लिए क्या हो सकती है।
0: बिल्कुल सही।
1: आगे क्या लिखते हैं?
0: आगे ये लिखते हैं कि कभी कभी इंदौर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ठीक से चल नहीं पाता,

0: शायद कुछ तकनीकी समस्या है।
1: आपने बिल्कुल सही कहा, न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से ये कार्यक्रम यहाँ का प्रसारित होता है और कभी कभी इंटरनेट की समस्या आ जाती है, इसलिए इस प्रकार की ये समस्याएं आती हैं।
0: इनका कहना है कि इस विषय पर थोड़ा ध्यान दिया जाए क्योंकि हम सब मित्रों को आकाशवाणी इंदौर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही सुनाई देता है।
1: जी बिल्कुल, आपने सही कहा और आपकी शिकायत हम अभियांत्रिकी प्रमुख और क्लस्टर प्रमुख भोपाल तक हम पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि ये व्यवस्था दुरुस्त हो जाए। फिलहाल हमारा इंटरनेट
0: तो हमारे हैं जो BSNL
1: का चल रहा है। जी
0: जी, साथ में ये सुझाव देते हैं कि आप कुछ फरमाइशी गीत कार्यक्रम भविष्य में व्हाट्सएप या फेसबुक पेज पर आधारित।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है और अगले फिक्स पॉइंट चार्ट में हम बिल्कुल इन बातों पर इनायत दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास भीखन गांव से संतोष सातले जी, चंदन सातले जी, सारिका सातले, रोहित सातले, शुभम सातले, शैलेंद्र सातले, कंचनबाई सातले और सपरिवार, ये लिखते हैं, महोदय जी नमस्ते, 24 जून की एक ही फिल्म कार्यक्रम में फिल्म एक दूजे के लिए जो स्टोरी और गीत सुनाए गए काफ़ी पसंद आए। और आगे इन्होंने लिखा है, प्रशांत मालवीय जी को धन्यवाद, ये कार्यक्रम जो सुन लिए हैं, खंडवा का कार्यक्रम सुन लिए हैं, लेकिन व्हाट्सएप मेरे को कर दिए हैं।
0: अच्छा,
1: खैर कोई बात नहीं है, देश के जितने भी आकाशवाणी केंद्र है
0: वो सब एक दूसरे से जुड़े
1: एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप जिस भी केंद्र को सुनना चाहें बिल्कुल स्वागत है। और आगे इन्होंने लिखा है, राखी जैन का भी कार्यक्रम बहुत पसंद आया
0: जी।
1: तो चूंकि न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से किसी भी केंद्र को सिलेक्ट कर लेते हैं,
0: ये बहुत अच्छी
1: सुविधा है। और सबसे बड़ी बात है कि आकाशवाणी खंडवा जो है आकाशवाणी इंदौर के ज्यूरिडिक्शन में है।
0: अच्छा,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला मेल,
0: कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण शिमाली जी का मेल आया है।
1: क्या आया है?
0: इन्होंने 26 जून को सुनहरे पल कार्यक्रम में माजदा जी ने जो मुहर्रम के बारे में जानकारी दी थी
1: जी।
0: और जो गीत सुनवाए थे वो इन्हें बहुत मनोरंजक लगे और इसी दिन का इंदौर परिक्रमा कार्यक्रम भी इन्हें पसंद आया। 27 जून को खेती गृहस्थी में सनावत के कविवर भाई हुकुमचंद कटारिया का पर्यावरण पर कविता पाठ भी इनके मन को भा गया। 28 जून को वसुंधरा के अंतर्गत कवि धर्मेंद्र बम के कविता पाठ ने इनका मन मोह लिया।
1: अच्छा था जी।
0: और 29 जून का गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम जो कि विश्व डॉक्टर्स दिवस और विश्व नशा निरोध दिवस पर केंद्रित था, सभी महानुभावों के विचार स्वास्थ्यप्रद लगे और कार्यक्रम की अनूठी प्रस्तुति के लिए ये प्रीति जोशी जी को धन्यवाद देते हैं।
1: और आपका धन्यवाद हम उन तक पहुंचा रहे हैं। देखिए जो विभिन्न दिवस हैं
0: जी,
1: इनकी महत्ता और इनके बारे में हम अपने श्रोताओं को प्रतिदिन अवगत कराते रहते हैं विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न अनुभागों के माध्यम से
0: जी,
1: ताकि वे अपडेट रहें
0: जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। अगला,
0: और 30 जून को प्रवीण शिमाली जी आगे लिखते हैं कि 30 जून को सुनहरे पल कार्यक्रम में संगीतकार कल्याण जी के बारे में जो जानकारी दी गई वो इन्हें बहुत पसंद आई। माजदा जी की ये प्रस्तुति थी। इसी दिन सुबह विविधा के अंतर्गत मुद्रा लोन लेकर किस तरह हम अपना व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, इस विषय पर कमल शर्मा से मिलिंद सुबेदार की बातचीत भी इन्हें रोचक लगी। और
1: काफी पुरानी बातचीत थी
0: जी।
1: और देखिए मुद्रा योजना का लाभ तो अभी भी ले सकते हैं और लेना भी चाहिए, तो अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त करना चाहिए
0: जी।
1: अगला,
0: साथ में ये लिखते हैं कि आपके केंद्र से प्रसारित मनभावन, चॉइस टाइम, दिल ने फिर याद किया और कंपेयर्ड फिल्म संगीत, साथ में इंदौर परिक्रमा, चित्रपट संगीत आदि कार्यक्रम की प्रस्तुतियां सभी प्रस्तोता द्वारा बड़े ही लगन व मेहनत से की जाती है, सभी को हार्दिक साधुवाद।
1: आपको भी ढेर सारे शुभकामनाएं, आप हमारा कार्यक्रम सुनते रहते हैं। हमारे पास एक और व्हाट्सएप संदेश आया है, जेतापुर खरगोन से रचना राजेश खेड़े, तनुजा और अनु हनी खेड़े लिखते हैं, दोनों प्रस्तुतकर्ता को नमस्कार करते हुए आगे लिखा है, युवानी में क्रिस फिल्म की स्टोरी और गीत संगीत बहुत अच्छे लगे और इस फिल्म में मेरे बेटे का बचपन याद दिला दिया, कैसे वह क्रिस के मुखौटे को लेने की जिद करता और दिल ना लिया, गाने पर उसका डांस, अब तो मेरे बेटे तनुज की शादी हो चुकी है, क्या बात है। उनका बचपना याद दिलाने के लिए दोनों दीदियों को साधुवाद इन्होंने दिया है। और 26 जून को खेती गृहस्थी कार्यक्रम में हुकुमचंद कटारिया जी का जो काव्य पाठ सुनाया गया काफी अच्छा लगा
0: जी।

0: लोगों की पसंद देखकर ऐसा लगता है कि हुकुम चंद कटारिया जी अब करीब करीब कवि बन ही चुके हैं।
1: जी जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद कटारिया जी। और लिखे हैं कि आपके सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। अगला मेल,
1: ये सूरज चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार डाक से दुर्गेश नगनपुरे और ऋतुराज अचोले का मेल है। ये लिखते हैं कि आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। 28 जून का कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे इन्हें पसंद आया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थी जीवन में योग और ध्यान का महत्व, इस विषय पर दी गई जानकारी इन्हें पसंद आई और प्रेजेंटर दुर्गेश नंदिनी चौधरी जी को ये बधाई देते हैं।
0: बहुत बहुत आपको भी बधाइयाँ। देखिए, योग दिवस के अवसर पर ढेर सारे कार्यक्रम किए गए हैं और लोग जागरूक भी हैं। योग भगाए रोग, अगर हम योग करेंगे प्रतिदिन तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी की गरिमा में उपस्थिति में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के छठे दीक्षांत समारोह पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण जो है ये काफ़ी अच्छा लगा और इसके लिए ढेर सारे श्रोताओं ने जो है लिखे हैं और ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अतुल गौतमी जी लिखे हैं, अरुण कॉलेज एडी कांबले जी लिखे हैं, तुषार करने जी, प्रासंगिक कांबले जी, एकता कांबले जी, इनको जो है गीत संगीत का जो कार्यक्रम होता है ये काफ़ी पसंद आता है। और अगला जो हमारे पास व्हाट्सएप संदेश आया है, बे लावरिया भैरू इंदौर से अनिल बामनिया, परमिला बामनिया, नंदनी, मुस्कान, नीलम एवं समस्त बामनिया परिवार लिखते हैं, आपका पत्र प्रस्तुतकर्ताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और 24 जून को आपका पत्र कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, ये काफ़ी अच्छा लगा। और राजेश पाठक जी द्वारा प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत पर जो जानकारी दी गई वो भी कर्णप्रिय थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे इन्होंने लिखा है कि 26 जून को हमारे मेहमान कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया तथा 28 जून को फिर से हमारे मेहमान प्रस्तुत किया गया, जो हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम को सप्ताह में एक ही बार प्रस्तुत किया जाए ताकि दूसरे कार्यक्रम भी प्रसारित हो सकें। इसकी पुष्टि हम मुकाम सिंह चौहान जी से बिल्कुल कर लेंगे
1: जी।
0: और आगे इन्होंने लिखा है कि एक जिज्ञासा है, आकाशवाणी इंदौर पर कितने उद्घोषक एवं उद्घोषिकाएं हैं, ये जरूर बताने का कष्ट करें
1: जी।
0: तो आप तो सुन ही रहे हैं
1: जी,
0: हर एक उद्घोषक भाई बहनों को
1: आपको आवाज सुनते हैं और आवाज सुनते हैं
0: और पहचानते भी हैं, बिल्कुल आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपकी पहली जो है आप ही पर हम थोपता हूं कि आप बताएं अभी तक आपने
1: कितने
0: वर्षों से रेडियो सुन रहे हैं, कितने लोगों को सुना और कितने लोगों को नहीं सुना और कितने लोग छूट गए
1: जी,
0: और आपका उत्तर हम बिल्कुल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मेल,
1: अगला मेल धर्मपुरी जिला धार से शेख वही मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर अयान, फैजान सुमेरा, कशिश साइमा, हसनैन और खुशी का है। इन्हें 29 जून को रात्रि 8:15 बजे प्रसारित कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया पसंद आया। इनका कहना है कि प्रोग्राम बहुत लाजवाब था और दिल की गहराइयों तक छू गया। रिमझिम बारिश की फुहारों के सानिध्य के बीच प्रस्तुतकर्ता पद्मश्री तपस्वी जी की खूबसूरत अल्फाजों की चाशनी में डूबी हुई शायरी ने कानों में माधुर्यता का रस उड़ेल दिया। बारिश की रिमझिम फुहारों के मानिंद पद्मश्री जी की शायरी ने जमीय दिल को सौंधी सौंधी खुशबू से महका दिया और कई अनगिनत यादों के फूल खिल गए। पद्मश्री जी की शायरी सुनकर लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। शायरी और सुमधुर गीतों के कॉम्बिनेशन पर प्रस्तुतकर्ता को ये बधाई देते हैं। आज का दिल ने फिर याद किया प्रोग्राम अपने नाम के अनुरूप था और ये प्रोग्राम शायरी, गीतों और पद्मश्री जी की पेशकश के कारण हमेशा दिल में याद रहेगा। शानदार, प्रभावशाली और सशक्त पेशकश के लिए ये धन्यवाद देते हैं पद्मश्री जी को।
0: और आपका धन्यवाद हम पद्मश्री जी तक पहुंचा रहे हैं, काफ़ी अच्छे प्रोग्राम किए आपने, सराहा, बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गेश नागनपुरे सूरज कुमार ढाकसे जी ग्राम ब्यासबारी से लिख रहे हैं कि आदरणीय पाठक जी, हमारे गांव तक आकाशवाणी इंदौर का प्रसारण रेडियो पर स्पष्ट रूप से नहीं पहुँचता है, हम आपका कार्यक्रम मोबाइल ऐप पर सुनते हैं। देखिए, आपका जो है इंदौर और उज्जैन संभाग के समस्त जिले हैं रेडियो पर भी सुनाई किस कारण नहीं दे रहा है, इस पर हम चर्चा अपने अभियांत्रिकी प्रमुख क्लस्टर प्रमुख से अवश्य करेंगे। आपने इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला मेल,
1: अगला मेल है हनुमंत शिंदे ऋषिकेश शिंदे शिरटे जिला सांगली से, इन्होंने हमें मेल किया है। इन्हें सोमवार 22 जून को प्रसारित किया गया गुड मॉर्निंग इंदौर प्रोग्राम अच्छा लगा। नेशनल डॉक्टर्स डे के बारे में अनिल दुबे जी की जानकारी, जिसमें डॉक्टर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इस विषय पर जानकारी इन्हें अच्छी लगी। डॉक्टर अभय जैन जी ने नशे का असर कैसे होता है और नशे का विपरीत परिणाम आरोग्य पर होता है, इस विषय पर जानकारी।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए, नशा मुक्त भारत बनाने में आकाशवाणी केंद्र के साथ साथ हमारे जितने श्रोताओं हैं सभी जागरूक होके नशा मुक्ति कार्यक्रम अभियान चलाएं, ताकि हमारा देश जो है
1: प्रस्तुत करते हैं स्वस्थ और लोगों को इससे प्रेरणा मिलती है।
0: जब लोग स्वस्थ होंगे तो देश स्वस्थ होगा, जब देश स्वस्थ होगा तो उनकी मानसिकता मजबूत और सशक्त होगी। और देखिए, अभी अभी श्रीमाली जी ने व्हाट्सएप किया है, नर्मदा जी के दर्शन कर लिए हैं और काफी अच्छी तरीके से।

0: तो ये देखिए, नर्मदे हर जीवन भर अपने नर्मदा जी के दर्शन करके आनंदित होते हैं, और बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे दूर दराज के उनको अपने श्रोताओं को भी इन्होंने अवगत करा दिया। अपने आपके इस सार्थक प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच एक और व्हाट्सएप संदेश आया है। गुड मॉर्निंग, और मैं विक्रम चौधरी, मेरा बेटा अंश चौधरी, गांव बगड़ी, जिला धार, मांडव रोड से, मुझे आपका पत्र कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। मैं आपका पूरा कार्यक्रम सुनता हूँ। कल से बारिश का माहौल जो स्टार्ट हुआ है, मौसम बड़ा सुहाना हो गया है। राजेश पाठक जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी लग रही है, और वास्तव में इस समय कुछ और बारिश हो जाए तो धार मांडव का जो नज़ारा ही कुछ और हो जाए।
1: बिल्कुल सही,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला मेल किनका है?
1: अगला मेल धर्म,
0: एक बार मेल और बता दें,
1: मेल आईडी एक बार फिर हम अपने श्रोताओं को बता दें। अभी 15 मिनट का समय और है, आप हमें मेल कर सकते हैं,
0: अधिक से अधिक मेल करें
1: जी। हमारा मेल आईडी है आकाशवाणी इंदौर, आपका पत्र इंदौर @gmail.com, APKAPATRAINDOR@gmail.com, ये हमारा मेल आईडी है। और श्रोताओं को एक बार व्हाट्सएप नंबर भी बता देते हैं
0: जी,
1: 999-329-0063, 999-329-0063, इस नंबर पर आप अभी इस वक्त व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और हमें मेल और व्हाट्सएप दोनों का इंतजार रहेगा।
0: हमारे पास एक और व्हाट्सएप आया है, डॉक्टर साहब ने भेजे हैं, ये है डॉक्टर तापस मंडल, जिला सीहोर, तहसील जाबर, ग्राम गुरारिया वर्मा और मध्य प्रदेश से ये लिखे हैं। सभी को नमस्कार, और गुरारिया वर्मा का, ये जिला गुरारिया वर्मा का निवासी हूँ, मुझे आशा है हमारी मन की बात, इनकी मन की बात
1: जी,
0: इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो देखिए, आपका जो आपने व्हाट्सएप किया है, आपका कार्यक्रम, आपके जो भावनाएं शामिल हो गई, और इन्होंने जो अपने मन की बात जो लिखा है, सुनहरे पल कार्यक्रम इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, और समय बढ़ाने की मांग इन्होंने किया है। आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है डॉक्टर साहब, और बिल्कुल हम अच्छे अच्छे गीत सुनाएंगे, ताकि चिकित्सा के क्षेत्र में देखें, और तो संगीत का बड़ा योगदान होता है।
1: बिल्कुल सही,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला मेल
1: है धर्मपुरी जिला धार से शेख फहीम मोहम्मद साहब का एक और मेल हमें मिला है, जिसमें ये लिखते हैं कि 26 जून को सुनहरे पल प्रोग्राम सुना, बहुत पसंद आया। प्रोग्राम में मुहर्रम पर्व और करबला से जुड़ी जानकारियां प्रेरणास्पद लगी, और यह पर्व हमें सत्य, न्याय और ईमानदारी पर

0: चलने की प्रेरणा देता है। सुमधुर गीतों के साथ प्रस्तुतकर्ता माजिदा खान का अंदाज ए पेशकश बहुत ही प्रभावशाली और सशक्त था। साथ ही 30 जून को संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी की पुण्यतिथि थी। उन्हीं के संगीतबद्ध किए गीतों को सुनकर सुबह सुहानी हो गई। प्रस्तुतकर्ता माजिदा खान जी की पेशकश इन्हें बहुत अच्छी लगी और इस पेशकश ने इंद्रधनुषी छटा बिखेर दी।
1: क्या बात है। और देखिए बिल्कुल इंद्रधनुषी माहौल में हमारे बीच एक और हमारे पास मनीष निवारे जी खरगोन से व्हाट्सएप प्राप्त हुआ है
0: जी।
1: इन्होंने लिखे हैं हुकुम चंद कटारिया जी का काव्य पाठ बहुत अच्छा लगा और केंद्र को बधाई दिया है। और आगे लिखते हैं सुबह जब केंद्र आरंभ होता है तो उसमें प्रतिदिन वंदे मातरम गीत 15 दिन में गायक बदल बदल सुनने की अपेक्षा है। आपका हमने सुझाव नोट कर लिया है। और आगे जो हमारे पास व्हाट्सएप आए हैं झमकलाल पाटीदार शिक्षक ग्राम पिपलौदी पोस्ट बिरमा बल से ये लिखते हैं मैं आकाशवाणी इंदौर का नियमित श्रोता हूँ। और आगे लिखते हैं मैंने मार्च 1985 में पहली बार 450 रुपया का रेडियो ACDC से चलाने वाला खरीदा था। रेडियो की मंद आवाज़ के साथ पढ़ाई की और मैं शारीरिक रूप से एक पैर से दिव्यांग हूँ पर मन और क्रम से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और गत बुधवार को इन्होंने लिखा है आपके पत्र कार्यक्रम में फरमाइशी लोकगीत के लिए पत्र लिखा था और लिखे हैं कि लोकगीत के लिए एक खास सुझाव है कि प्रति रविवार को 30 मिनट के लिए प्रसारण करवाने की कृपा करें। और आज भी सुबह 9:15 से के लिए स्नेहलता भटोरे जी का प्रसारण की इच्छा इन्होंने व्यक्त किया है
0: जी।
1: तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा
0: स्नेहलता भटोरे जी के लोकगीत आज हम सुनवाएंगे इन्हें।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: सुबह 9 बजे और शाम
1: देखिये 7 बजे जी ने जो है वादा बिल्कुल किया कर दिया है। और हम उम्मीद करते हैं पाटीदार जी आपको आपकी जो फरमाइश है आज सालने जी अवश्य आपको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये व्हाट्सएप का सिलसिला बिल्कुल जारी है। और नमस्कार राम राम इन्होंने लिखे हैं। और बालातोरा राजस्थान से मोहन लाल प्रजापत जी लिखते हैं बहुत अच्छा प्रसारण चल रहा है और न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से हम राजस्थान में जो है हम सुन रहे हैं। और आगे इनका तो शामिल हो ही गया है बामनिया जी का
0: जी।
1: इन्होंने दोबारा व्हाट्सएप कर दिया है
0: और उन्होंने मेल भी किया है
1: जी,
0: वही बात लिखते हुए
1: आगे 22 जून को प्रसारित किया गया कार्यक्रम अच्छा लगा। और नेशनल डॉक्टर डे में डॉक्टर अनिल दुबे जी ने अच्छी जानकारी दी और डॉक्टर भूमिका जी की भी जानकारी अच्छी लगी। डॉक्टर अभय जैन जी ने नशा का असर कैसा होता है और नशे का विपरीत परिणाम जो है इसके बारे में भी इन्होंने सुना। ये प्रीति जैन जी लिख रहे हैं कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार हमारे बीच व्हाट्सएप का सिलसिला जारी है। फिलहाल मेल किन का आया ये पढ़ें।
0: ये ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी का एक और मेल हमें मिला है। ये लिखते हैं कि 29 जून 2026 का आकाशवाणी मराठी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में पावसाला विशेष पर सो योगिनी श्रृंगारपुरी से अपेक्षा खोचे जी की बातचीत इन्हें बहुत अच्छी लगी और ये इसके लिए धन्यवाद देते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। दिनांक 20 जून को सुबह की सभा में शास्त्रीय गायन के संगीत कार्यक्रम में हरी चौरसिया जी को सुना बांसुरी वादन मन को मोह लिया। ये लिख रहे हैं प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी जी तनुजा जोशी जी। और इसी दिन 10 बजे रात में नई दिल्ली के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में मध्य प्रदेश का नेतृत्व डॉक्टर विवेक क्रमहे जी ने किया जिनका प्रसारण जो है आकाशवाणी इंदौर द्वारा किया गया। डॉक्टर विवेक जी आकाशवाणी इंदौर के नियमित श्रोता हैं और श्रोता ये आनंद जोशी जी खंडवा शहर के प्रतिष्ठित जोशी परिवार के दामाद हैं। उनकी शानदार प्रस्तुति ने न केवल इंदौर खंडवा अब तो संपूर्ण मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। उन्हें हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएँ दिया है और हुकुम चंद कटारिया जी को सुंदर काव्य पाठ के लिए बधाइयां इन्होंने दिया है। तो देखिए वास्तव में हमारे जो हैं डॉक्टर विवेक

0: एक कर्महे जी जो हैं संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हमारे केंद्र पर इस कार्यक्रम का प्रोडक्शन किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से पूरे देश में इसे एक साथ प्रसारित किया गया। ये हमारे लिए भी बहुत गौरव की बात है कि इतने अच्छे कलाकार जो हैं हमारे बीच उपस्थित हैं और उनके जो अनुभव है उनका लाभ जो है हमारे जो युवा पीढ़ी के कलाकार हैं वो भी ले रहे हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं।
1: पूरा भारत इसको सुन पा रहा है।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अगला मेल खेगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा ने हमें ये मेल भेजा है और ये कहते हैं कि हमें नियमित रूप से प्रतिदिन आपका युवाणी कार्यक्रम पसंद आता है। युवाणी कार्यक्रम में अनुरोध गीत और बुधवारीय पत्र उत्तर कार्यक्रम को पुनः शुरू करें, ये इनका अनुरोध है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हमने सुझाव नोट कर लिया है। जो युवाणी कार्यक्रम के जो कार्यक्रम अधिकारी हैं उन तक ये बात हम पहुंचा देंगे। हमारे बीच एक और व्हाट्सएप संदेश आया है, लिखने वाले हैं अस्मिता रेडियो फेसबुक लाइव शो ग्रुप भाटापारा छत्तीसगढ़ से, सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, बेबी बैदेही जोशी, बेबी हंसिका जोशी, कुमारी अंकिता जोशी और इसके साथ खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार डाबर जी। ये लिखते हैं कि सभी कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का जो कार्यक्रम है एक से बढ़कर एक है, हम सभी कार्यक्रम सुनते हैं, गीत संगीत भी सुनते हैं, फिल्म संगीत भी सुनते हैं, चॉइस टाइम भी सुनते हैं, सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक लगता है, आपके पत्र कार्यक्रम भी हम पूरे ग्रुप में सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और तापस मंडल जी ने लिखा है, ग्राम गुरारिया वर्मा ये लिखे हैं, यहाँ से लिखे हैं, फिर इन्होंने दोबारा व्हाट्सएप कर दिए हैं, तो आप दोबारा व्हाट्सएप ना करें, आपका जो कार्यक्रम है शामिल कर लिया गया है डॉक्टर साहब और 40 सालों से ये रेडियो सुनते आए हैं। ज्योति भदौरिया जी लिख रही है, सभी के बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इन्होंने लिखी है, थापना ओंकारेश्वर से डॉक्टर डे पर जो कार्यक्रम प्रसारित की गई बहुत अच्छी थी और प्रीति जी की प्रस्तुति काफ़ी अच्छी थी। खेती गृहस्थी कार्यक्रम में हुकुमचंद कटारिया जी का काव्य पाठ काफ़ी अच्छा लगा। MH हॉटलाइन में आरती जी ने और तृप्ति जी ने श्रोताओं से जो सधी हुई बातचीत की ये भी काफ़ी अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला मेल किन का है?
1: अगला मेल है नेपा नगर से
0: जी,
1: लिखने वाले हैं प्रभुलाल शिवदे, शिवा बसंतीबाई और गणेश शिवदे। इनका कहना है कि आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम इन्हें अच्छे लगते हैं। आकाशवाणी इंदौर से खेती गृहस्थी कार्यक्रम, वंदना मन भावन इत्यादि कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और ये इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला मेल
1: राजेश जी, कुछ श्रोताओं ने हमें मेल किया है जिन्होंने हमें फिल्म की गीत सुनवाने की का अनुरोध किया है, हम श्रोताओं से के नाम बता दें जिन्होंने हमें मेल
0: बिल्कुल,
1: किया है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कौन किन कौन लोग
1: मेल करने वाले श्रोता हैं, धनोरी तोलीवाल से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू, पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से नितिश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल और सावित्री बाई देवांगन, ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार, पलारी छत्तीसगढ़ से नितिश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूजा राम देवांगन और कृष्णा देवांगन, और ग्राम शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़
0: जी।
1: तो हम इन श्रोताओं से अनुरोध करेंगे कि कार्यक्रम की समीक्षा भी अगली बार ये हमें
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुआ है चौकड़ा धाम कॉलोनी सनावस्ते जिला खरगोन मध्य प्रदेश, लिखने वाले हैं कृष्णपाल सिंह चौहान, श्रीमती तारा देवी चौहान, नवोदित चौहान, वैभव पाल सिंह चौहान, सभी को धन्यवाद देते हुए इन्होंने लिखा है, एक पेड़ माँ का नाम, वसुंधरा को अब हमें हरा भरा बनाना है, अब हमें एक पेड़ माँ के नाम लगाना है, वसुंधरा में जो बोना है वह पाना है, अब हमें एक पेड़ माँ के नाम लगाना है, क्या बात है। और मुकाम सिंह चौहान जी ने जो है यातायात विभाग के इसके साथ है नगरीय प्रशासन की परिक्रमा करवाई थी, वास्तव में इंदौर परिक्रमा का अंक बहुत अच्छा लगा और आगे इन्होंने

0: लिखते हैं 29 जून का जो कार्यक्रम डॉक्टर साहब से मुखातिब कराया गया, डॉक्टर भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से कम भी नहीं होते हैं, इन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की और आज डॉक्टर दिवस पर जो कार्यक्रम स्वास्थ्यवर्धक सुनाए गए काफ़ी अच्छा लगा। 27 जून को सुनहरे पल कार्यक्रम इन्हें काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब, आपने प्रतिक्रिया व्यक्त की।
1: हुकुमचंद कटारिया जी का भी हमारे पास मेल आया है,
0: क्या लिखते
1: ये लिखते हैं कि डॉक्टर डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 27 जून को खेती गृहस्थी कार्यक्रम के अंतर्गत सनावद नगर के कवि धन्नालाल जी धवल से उनकी काव्य रचनाएं सुनी जो पर्यावरण पर आधारित थी, इन्हें बहुत अच्छी लगी। कल्याण जी आनंद जी के जयंती के अवसर पर माजदा खान जी ने सुनहरे पल कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक गीतों का समावेश किया, इस सुंदर प्रस्तुति के लिए ये धन्यवाद देते हैं। और इनके साथ हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, मिश्रा, केपी सिंह चौहान, दीपक सचिन कटारिया, कृष्णा विराज, अर्णव काव्यांशी कृतिका और श्रीमती प्रभा कटारिया भी शामिल हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास एक और व्हाट्सएप संदेश आया है DC सारस्वत 15 पटवारी कॉलोनी रतलाम से, लिखते हैं 28 जून को हमारे आकाशवाणी इंदौर पर प्रातः वसुंधरा कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण पर धर्मेंद्र बम जी का जो कविता पाठ हुआ बहुत सुंदर लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और हमारे पास पत्र प्राप्त हुआ है, लिखने वाले हैं पांगरा सिंधे, तहसील बसमत, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से। इन्होंने लिखा है कि आपका जो कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रम खास करके चॉइस टाइम, लोक संगीत का कार्यक्रम, विविध भारती कार्यक्रम, ये काफ़ी अच्छा लगता है और इसी कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए झुमड़ी तलैया से लिखने वाले हैं छकुली इंगोले, देव इंगोले, छोटू दादा इंगोले, पेंटर रामचंद्र इंगोले जी और महेंद्र चौरसिया जी, आपका कार्यक्रम हम न्यूज ऑन एरेप के माध्यम से सुनते रहते हैं और कार्यक्रमों की तारीफ करते हुए लिखते हैं दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नाइमा बेगम, कासिम अली, नादिम अली जी, जुनेद अब्बासी जी, आपका पत्रोत्तर कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, हम लोग यहाँ पूरे सुनते हैं, शामिल होता है तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है, फिल्म म्यूजिक और विविध भारती के कार्यक्रम काफ़ी अच्छा लगता है। और अगला मेल
1: है ग्राम खेगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश धर्मेंद्र और ममताबाई वर्मा का
0: जी।
1: ये लिखते हैं कि हमें नियमित रूप से प्रतिदिन आपका युवाणी कार्यक्रम ध्यानपूर्वक सुनते हैं, युवाणी कार्यक्रम में अनुरोध गीत और बुधवारीय पत्रोत्तर पुनः शुरू करने का ये भी अनुरोध करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया जी, प्रियंका पंचोलिया, संप्रीत पंचोलिया जी लिखते हैं 29 जुलाई को खंडवा में गुरु पूर्णिमा उत्सव पर लाखों श्रद्धालु की उपस्थिति में दादा जी धाम में उत्सवी माहौल रहेगा, पूरा शहर अगवानी में लगे रहता है, लगभग 4 से 5 लाख भक्तों की उपस्थिति खंडवा जिले में रहती है। आकाशवाणी इंदौर केंद्र पर इस पर यहाँ की रिपोर्टिंग कर अपने श्रोताओं को आंखों देखा हाल सुनाएं, इसके लिए समय पूर्व इन्होंने सुझाव दिया है
1: जी।
0: और पर्यावरण पर हुकुमचंद कटारिया जी का काव्य पाठ बहुत अच्छा लगा, सुंदर प्रस्तुति के लिए पंचोलिया जी कटारिया जी को बधाइयां दिया है। आपका सुझाव हम पंचोलिया जी नोट कर लिए हैं, बिल्कुल इनको जो है दादाजी का प्रोग्राम तो कवर होगा, लेकिन ये वादा नहीं करते हैं कि इंदौर करेगा और ये खंडवा करेगा, और घड़ी की सुई अभी इजाजत नहीं दे रही है, हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में

0: बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपये से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपये, गोवा में 406 रूपये और केरल में 401 रूपये प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रूपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
3: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा।

0: सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कम्प्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
3: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजानदास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
4: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
3: सभी मदरसों को यूडायस, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
5: स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के

0: तिरुवनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा व्यक्त की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में डीआरडीओ द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। विकसित भारत जी राम जी स्कीम कम्स इनटू फोर्स अक्रॉस द कंट्री टुडे, रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग एमजी नरेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स टू ईरानियन प्रेसिडेंट, स्ट्रेस्ड नीड फॉर कंटिन्यूड एफर्ट्स टू सिक्योर लास्टिंग पीस इन वेस्ट एशिया एंड सेफ गार्डिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड कॉमर्स। जापानीज प्राइम मिनिस्टर सनाए ताकाइची to arrive in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. France beat Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football, and India's men's cricket team to begin their five-match 2020.

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
3: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
2: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV/AIDS जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
3: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
4: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
5: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: प्रायोजित कार्यक्रम वदन का राग सुनिए प्रत्येक गुरुवार सुबह 9:30 आकाशवाणी इंदौर पर। प्रायोजक संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल।
7: श्रोताओं, हर साल जुलाई का महीना हरियाली की सौगात लेकर आता है। बारिश की पहली फुहार के साथ धरती पर बूंदों का उत्सव शुरू हो जाता है और इसी के साथ शुरू होता है वन महोत्सव। एक ऐसा अभियान जो केवल पेड़ लगाने का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को जीवन देने का संकल्प है।

वन महोत्सव हर वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री एम के मुंशी ने की थी। उनका उद्देश्य था कि हर नागरिक कम से कम एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल भी करे। कल्पना कीजिए, यदि एक दिन पेड़ धरती से गायब हो जाएं तो कैसा होगा? न हवा शुद्ध होगी, न पक्षियों का संगीत, न बारिश, न छांव, न फल, न जीवन। एक बड़ा पेड़ अपने जीवन काल में लाखों रुपए के बराबर ऑक्सीजन और पर्यावरणीय सेवाएं देता है।

श्रोताओं, हमारी संस्कृति में वृक्षों को देवताओं के समान माना गया है। पीपल, बरगद, नीम, तुलसी, आंवला, इन सभी का धार्मिक और औषधीय महत्व है। बरगद दीर्घायु का प्रतीक है, पीपल जीवन का, नीम स्वास्थ्य का और तुलसी पवित्रता की। हमारे त्योहार और परंपराएं भी प्रकृति संरक्षण का संदेश देते हैं।

आज दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, प्रदूषण और जंगलों की कटाई जैसी समस्या से जूझ रही है। अगर जंगल कटेंगे तो बारिश कम होगी, गर्मी बढ़ेगी, भूजल घटेगा और वन्यजीव संकट में पड़ेंगे। आज यदि हम एक पौधा लगाते हैं तो आने वाले समय हमें ठंडी छांव, स्वस्थ हवा और सुरक्षित भविष्य के रूप में उसका प्रतिफल देगा। पेड़ से ही जीवन है, पेड़ों से ही संसार है, इनको बचाना हमारा धर्म है और यही प्रकृति का प्यार है।

श्रोताओं, भारत में 1 जुलाई केवल एक सामान्य तारीख नहीं है, बल्कि 2 ऐसे पेशों को सम्मान देने का अवसर भी है जिनका देश की प्रगति और समाज की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान है। इस दिन पूरे देश में राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी मनाया जाता है। एक और डॉक्टर अपने ज्ञान, सेवा और समर्पण से लोगों का जीवन बचाते हैं, वहीं दूसरी ओर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश की आर्थिक व्यवस्था, वित्तीय पारदर्शिता और व्यवसायों को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो श्रोताओं, डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक गीत समर्पित करते हुए आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए लोक संगीत। आज लोक संगीत में हम आपको स्नेहलता भटोरे और साथियों के गाए मालवी लोकगीत सुनवा रहे हैं।

0: प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुनिए प्रत्येक गुरुवार सुबह 9:30 बजे आकाशवाणी इंदौर पर। प्रायोजक संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6:00 बजे।

लोक संगीत में आज आपने स्नेहलता भटोरे के गाए निमाड़ी विवाह गीत सुने। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। कलाकार हैं अनुराधा पोडवाल।

अनुराधा पौडवाल के गाए गीत के बाद अब वक्त है शास्त्रीय संगीत का। आज हम आपको पंडित कमल कामले का वायलिन वादन सुनवा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे राग गुजरी तोड़ी। विलंबित गत एक ताल और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं पवन सेम।

शास्त्रीय संगीत में अभी आपने पंडित कमल कामले का वायलिन पर बजाया राग गुजरी तोड़ी सुना। तबले पर संगत कर रहे थे पवन सेम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले की जाएगी।

0: स्टेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10 बजे हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बड़वानी जिले की चिट्ठी। आलेख शिवपाल सिंह सिसोदिया का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बड़वानी जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात करते हैं मानसून और प्रशासनिक तैयारियों की। पश्चिमी निमाड़ के बड़वानी जिले में बारिश का दौर शुरू हो गया है। इस वर्ष जिले में जून माह में औसतन 743.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारिश की शुरुआत होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। नगर पालिका परिषद बड़वानी द्वारा मानसून के दौरान शहर में संभावित जल भराव, बाढ़ या अतिवृष्टि जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। नगरवासियों को सूचित किया गया है कि बारिश में यदि शहर के किसी भी क्षेत्र में जलभराव या अन्य कोई समस्या होती है तो नागरिक सतर्कता बरतें और तत्काल राहत व बचाव दल से संपर्क करें। अब बात करते हैं जन स्वास्थ्य की, जिसके तहत बड़वानी में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। अभियान में जन्म से 5 वर्ष तक की आयु के कुल 2,61,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। वहीं मृदा परीक्षण और कृषि विकास के क्षेत्र में किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए जारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत जिले को इस वर्ष 7,718 मिट्टी परीक्षण का लक्ष्य दिया गया था, जिसके मुकाबले अभी तक 7,178 मिट्टी नमूनों की जांच की जा चुकी है। अब बात नशा मुक्ति और सामाजिक जागरूकता की, जिसके तहत पिछले दिनों जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी द्वारा नशा मुक्ति सप्ताह के दौरान गाँवों में जाकर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक का मंचन कर युवाओं और समुदाय को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक भी किया गया। वहीं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के अंतर्गत 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान 24 मार्च से जिले भर में चलाया जा रहा है। पिछले दिनों केंद्रीय जेल बड़वानी में 10 दिवसीय जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रतिदिन 100 कैदियों की टीबी की स्क्रीनिंग की। अब बात आपदा प्रबंधन और युवा शक्ति की। पिछले दिनों 7 दिवसीय युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण के तीसरे सत्र का समापन हुआ। इस सत्र के दौरान जिला आपदा प्रबंधन के आदेश से बाढ़ बचाव व सिंहस्थ कुंभ के लिए 231 युवाओं को संभागीय सेनानी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण दिया गया। अब बात करते हैं खेल जगत और बड़वानी के गौरव की। हॉकी इंडिया द्वारा ओमान में 20 से 25 जुलाई तक आयोजित होने वाली एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए अंडर 18 महिला हॉकी टीम की घोषणा की गई है, जिसमें बड़वानी शहर की स्नेहा दावड़े को पुनः भारतीय टीम में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं व्यापार और अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमिता की, जिसके तहत पिछले दिनों दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड नेशनल SC/ST हब MSME मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में सेंधवा में SC/ST उद्यमिता जागरूकता एवं स्पेशल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। अब बात करते हैं सिकल सेल नियंत्रण की, जिसके तहत पिछले दिनों विश्व सिकल सेल दिवस पर आयुष विभाग के चिकित्सा अधिकारी और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा एड ऑन थेरेपी के रूप में सिकल सेल से प्रभावित 201 रोगियों को आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण घर घर जाकर किया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगर बात करें तो पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम रामकुलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, कलेक्टर जयति सिंह, SP पदम विलोचन शुक्ल सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, छात्र व नागरिक उपस्थित थे। वहीं पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में पिछले दिनों दुग्ध उत्पादकों की जागरूकता कार्यशाला का आयोजन जिले में किया गया। कार्यशाला के दौरान उपसंचालक डॉ. दिनेश पटेल ने पशुओं में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, संतुलित आहार बनाने की विधि और दुग्ध उत्पादन के लाभ तथा साइलेज की ई मार्केटिंग व गोरस एप्लीकेशन की जानकारी प्रदान की। बड़वानी जिले की चिट्ठी में अब बात करते हैं साइबर सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता की। साइबर अपराधों के बढ़ते ग्राफ पर अंकुश लगाने, आमजनों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति सजग करने और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के उद्देश्य से पिछले दिनों जिले में 15 दिवसीय विशेष साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। और अंत में बात जल संरक्षण और जलगंगा संवर्धन अभियान की, जिसके तहत बड़वानी जिले में जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और नदी पुनर्जीवन सहित विभिन्न कार्यों को संपादित किया गया। वहीं कल यानी 30 जून को जलगंगा संवर्धन अभियान के जिला स्तरीय समापन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। जिले में कुल 5,666 विकास कार्यों को पूरा किया गया है, जिसके चलते जिला प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल हो गया है। तो श्रोताओं, ये थी बड़वानी जिले की चिट्ठी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए सजीव फॉरेन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
1: हेलो MH हॉटलाइन।

0: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को शालिनी का नमस्कार। श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम में आप अब से लेकर 11 बजे तक हमें फोन कर सकते हैं और अपनी पसंद के फिल्मी गीत सुन सकते हैं। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर नोट करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड 0731। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड 0731। तो चलिए लेते हैं आज का पहला फोन कॉल। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: तहसील बहादुरपुर, जिला अशोकनगर, एमपी से मैं सूर्य प्रताप यादव बात कर रहा हूँ।
0: जी सूर्य प्रताप जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैम मैं एक गीत बताना चाहता हूँ, और उससे पहले मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैंने वो गीत आकाशवाणी इंदौर पर सुना है
0: जी।
1: संग्राम फिल्म का गीत मिल जाएगा, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो।
0: देखिए हम देख लेते हैं ये गीत अवेलेबल है क्या।
1: नहीं मैंने सुना है।
0: इसकी शुरुआती बोल यही है।
1: हाँ हो सकता है तुम मेरी मोहब्बत हो इससे शुरुआत हो।
0: देखिए इस तरह से तो कोई गीत शुरू नहीं हो रहा है। संग्राम फिल्म

0: है जरूर, लेकिन पुरानी संग्राम फिल्म है ये।
1: अच्छा नई वाली नहीं है, अजय देवगन वाली?
0: नहीं, अजय देवगन वाली नहीं है।
1: अच्छा तो फिर दूसरा बताओ।
0: दूसरा बताइए।
1: बोल बच्चन फिल्म का सुनवा दीजिए।
0: बोल बच्चन फिल्म का कौन सा गीत?
1: चलाओ ना नैनों से बाउंड्री।
0: जी, अपने बारे में बताएं आप।
1: जी मैं आपके कार्यक्रमों से जुड़ा रहता हूँ
0: जी
1: और बहुत पुराना श्रोता हूँ, मतलब 10-12 साल से जुड़ा हुआ हूँ।
0: जी आप अक्सर फोन भी करते हैं और हम आपसे बात भी करते हैं।
1: हाँ अभी सोमवार को ही मेरा कॉल लगा था।
0: जी, तो चलिए आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: जी मैम धन्यवाद।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: जय श्री महाकाल मैम।
0: जय श्री महाकाल।
1: जीवालोहट एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ मैम, आपका नेम है श्रोता।
0: जी नाम बताएं अपना।
1: जीवालोहट एमपी विदिशा।
0: जी जी जी, कौन सा गीत सुनेंगे शिवा जी?
1: मैम मूवी का नाम रहेगा मासूम, और उसमें एक अभिजीत भट्टाचार्य जी की आवाज में गाना है, ये जो तेरे पायलों की संचन है।
0: जी जी जी
1: मैम, कुछ दोस्तों को याद करना चाहते थे।
0: हाँ जी बताएं।
1: मैं मिस कहेंगे पूरन वर्मा जी, राकेश जी, पुरुषोत्तम कुमार जी, अविनाश जी, भगवान सिंह परमार जी, रमेश प्रजापति जी, गजराल लोधी जी, कल्याण सेन जी, तमाम सुनने वाले, और स्पेशली मैम आप।
0: तो ये सारे आपके खास मित्र हैं
1: जी?
0: या आपके रेडियो मित्र हैं जिनके साथ आप गाने सुनते हैं?
1: जी जी मैम, वो लोग भी कॉल लगाते रहते हैं।
0: अच्छा अच्छा जी जी, चलिए आप सभी के लिए हम सुनवा रहे हैं फिल्म मासूम का ये गीत। धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार,
1: मैं व्यास बोल रहा हूँ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव मऊ से।
0: जी जी व्यास जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
1: आज प्रियजन की याद में मुझे गीत सुनना है। फिल्म का नाम है मैं और मेरा भाई और गाने के बोल है
0: जी।
1: मैं भी गैर हूँ, मुझको अभी अपना ना कहो, हाय मर जाएंगे मिट जाएंगे ऐसा ना कहो, मैं भी गैर हूँ। और चलिए जी, एक बात ये कहना चाहूंगा कि हमारे कुछ ऐसे संगीतकार हुए हैं
0: जी
1: जिन्होंने बड़ा अच्छा और बड़ा यादगार संगीत दिया है, लेकिन कहते हैं ना कि सरप्राइज हर किसी को नहीं मिलती
0: जी।
1: तो ये गीत इतना अच्छा गीत है कि आप जब भी इसको सुनेंगे आपको ऐसा लगेगा कि बड़ा सरोताजा और बड़ा मेलोडियस गीत है ये। तो ये गीत आज मेरी सुनने की इच्छा थी
0: जी,
1: और
0: जी।
1: अच्छा हुआ कि आपसे आज मेरी बात हो गई और आप सुनाएं आप कैसी हैं, बहुत दिनों बाद आपसे बात हुई है।
0: जी जी, बहुत दिनों बाद आपसे बात हुई है। और आपका स्वास्थ्य या गला गड़बड़ है मौसम की वजह से?
1: नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था चाची जी,
0: जी
1: कोरोना की जब वैक्सीन लगी थी उसके
0: जी।
1: बाद से ही थोड़ी सी आवाज में दिक्कत है।
0: अच्छा अच्छा,
1: वैसे मुझे गाने में दिक्कत नहीं होती पर थोड़ी सी बोलने में कभी कभार होती है।
0: जी वही हमने सुना कि गाने में आपको दिक्कत नहीं होती और हाँ। बोलने में हो रही, लेकिन गाने में कोई दिक्कत नहीं।
1: एक बार मैं आपको मजेदार बात छोटी सी, एक बार मैं अपने एक गले के डॉक्टर को दिखाने गया तो
0: जी
1: मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा सर मुझे गाने में दिक्कत नहीं होती है, तो
0: जी
1: चाहे गाना सुना उनका गाना सुन, तो मैंने कहा कौन सा था, उन्होंने सुना मुझसे नाम गुम जाएगा, तो मैंने बुखड़ा सुना है, बोला अच्छा कंठरा और

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन
1: जी। नमस्ते मैम, शेफाली जी को नमस्कार।
0: शालिनी बोल रही हूँ।
1: शालिनी जी को नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं अरविंद अग्रवाल, श्रीनगर जिला महुआ
0: जी। अरविंद जी बताएं कौन सा गीत सुनेंगे
1: जी? फिल्म का नाम रहेगा मुकद्दर का सिकंदर
0: जी। और गीत के बोल?
1: सलामेश।
0: बहुत अच्छा गाना है, सुनवा रहे हैं अरविंद जी आपको। सुनिए अपने रेडियो सेट पर। धन्यवाद।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन
1: जी। सालिनी जी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी। मोहम्मद यूनुस खत्री बोल रहा हूँ, छिपा कॉलोनी खंडवा से।
0: जी खत्री जी बताएं कौन सा गीत सुनेंगे।

0: जी मुझे, मैं सफर में हूँ, बस में भी आपको एमएच रोडलाइंस के दीवाने, आपको बस में भी नहीं छोड़ रहे हैं।
1: जी
0: तो मुझे एक गाना इस सफर में आपके, मतलब एमएच रोडलाइन के ऐसे ऐसे दीवाने देखे मैंने
1: जी जी
0: कि कहीं पे छोड़ते नहीं है।
1: बिल्कुल सही
0: तो
1: है।
0: मुझे आज आपको ये गीत सुनना है, सफर में हूँ तो आज मैं मुसाफिर है, रफी साहब की आवाज में, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है।
1: क्या बात है, आप
0: और
1: कहाँ जा रहे
0: हमारे
1: हैं इस वक्त?
0: सर, मैं इस वक्त मैं जा रहा हूँ खंडवा से चोरी के जा रहा हूँ, ठीकरी
1: अच्छा,
0: धामनो ठीकरी है।
1: जी,
0: जी तो बस
1: और
0: में
1: सफर में
0: हूँ।
1: आपको ये गाना सुनना है?
0: जी, सफर में ये गाना सुनने का मजा कुछ और है।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: हम तो आपके सफर में भी हैं, आपको हम तो
1: याद
0: सुन ही
1: करते
0: रहे,
1: हैं।
0: आपको याद कर ही रहे हैं।
1: जी,
0: और हम तो बहुत पुराने श्रोता, करीब 46-47 साल पुराने आकाशवाणी इंदौर के,
1: जी, बिल्कुल
0: बहुत
1: आपको
0: पुराना श्रोता
1: जानते
0: हूँ
1: हैं।
0: मैं। जी, हमारे तो पुराने पुराने को अलाउंस सर, इतने आए रिटायर हो गए बेचारे।
1: जी,
0: जी
1: तो
0: आप
1: खत्री
0: जैसे कि
1: जी,
0: आप
1: आप
0: जैसा
1: जी,
0: जी
1: आप
0: जी
1: कुछ कह रहे थे?
0: जी मैं ये बोल रहा था कि भैया, अब आप जैसे, आप हमारी बहनें आ गई है तो आपको भी सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: बिल्कुल
1: तो धन्यवाद सुनने के लिए, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत, सुनिए अभी।
0: जी।
1: धन्यवाद।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो।
0: हेलो,
1: हाँ दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: आपके नीमित श्रोता भागचंद साहू जी।
0: जी भागचंद साहू जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे
1: आज? हमें सुनना है बॉर्डर प्लम का, फौजी भाइयों के लिए संदेश आती है चिट्ठी, ऐसा कुछ है।
0: अच्छा, इस जमाने में आप चिट्ठी को याद कर रहे हैं?
1: बिल्कुल दीदी, हम तो कहा है, हम 20 साल से पुराने श्रोता हैं, आकाशवाणी केंद्रों से जुड़े हैं।
0: जी,
1: तो हम तो फौजी भाइयों के लिए सुनाना चाहते हैं।
0: फौजी भाइयों के लिए सुनाना चाहते हैं, और चिट्ठी पत्री का दौर आज भी जिंदा है आपके घर में?
1: बिल्कुल चल रहा है दीदी, हमें तो बड़ा शौक है लिखने का, लेटर लिखने का, पत्र डालने का।
0: और आप अपने रिश्तेदारों को भी भेजते हैं या आकाशवाणी में ही भेजते हैं केवल?
1: नहीं, आकाशवाणी सभी आकाशवाणी भेजते हैं और रिश्तेदारों को भी लेटर वगैरह भेजते हैं,
0: क्योंकि आजकल बहुत कम हो गया है लेटर आना। जब से फोन का जमाना आया है तब से चिट्ठी पत्री लिखना कम हो गया है। क्या क्या खास बात लगती है चिट्ठी पत्री में आपको?
1: आपका मोबाइल चल रहा है ना, व्हाट्सएप वगैरह, इस पे कर लेते हैं व्यक्ति।
0: जी।
1: और दीदी हम अभी गांव पे आए हुए हैं।
0: अच्छा, कहाँ है आपका गांव?
1: हमारा गांव है जैन मंदिर के पास परसोन।
0: अच्छा, ये कौन से जिले में आता है?
1: तहसील मालथोन है और जिला सागर है।
0: सागर जिले में आता है? अच्छा,
1: सागर जिले में आता है। हम अभी गांव पे आए, उससे बोनी चल रही थी।
0: अच्छा,
1: सोयाबीन की बोनी वगैरह हो रही थी।
0: तो आप बोनी करवा रहे हैं?
1: बिल्कुल दीदी, वो पानी पूरी सेंटर का ठेला हम लगाते हैं, गंजवासोदा में रहते हैं।
0: हाँ, वो तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ आप आपके खेत हैं और आप इस समय वहाँ जाते हैं बुआई करने के लिए?
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: रही थी, अभी अब वो नहीं चल रही थी, तो हमने कही दीदी से बात कर लें थोड़ी सी।
1: जी जी जी, चलिए ये गीत सुनिए और आनंद लीजिए। धन्यवाद फोन करने के लिए।
0: बिल्कुल दीदी, मौसम कैसा है इंदौर का?
1: इंदौर का मौसम अच्छा है, बारिश बहुत ज़्यादा भी नहीं है पर हो रही है, ये अच्छी बात है। अभी तो मौसम अच्छा
0: की तो हो रही है, फिर भी अभी वो मस्त टाइप की है।
1: हाँ,
0: और दीदी और बढ़िया हो आप?
1: बिल्कुल, हम सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया। आपका गांव अच्छा
0: दीदी,
1: है, गांव के लोग अच्छे हैं?
0: हमारे शामिल, हाँ पत्र शामिल जरूर करते रहे ना,
1: जी जी
0: हमने भेज
1: बिल्कुल
0: चुके।
1: बिल्कुल बिल्कुल। भागचंद जी सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हाँ नमस्कार मैडम,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं बालोदा लखा जिला उज्जैन से कन्हैया लाल प्रजापति बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी कन्हैया लाल जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
1: उबरी खरानी जरा झूठे बरसो, मेरा दिल मरहान पाए झूम के बरसो।
0: ये गीत तो अवेलेबल नहीं है, कोई और गीत बताएं।
1: दूसरा वो महबूबा का मेरे नैना सान बादो, फिर भी मेरा मन प्यासा।
0: जी महबूबा फिल्म का नाम है।
1: हाँ महबूबा।
0: जी जी जी
1: हाँ।
0: आप अपने बारे में बताएं कुछ।
1: हाँ मैं तो क्या हुआ कि हमारे इधर तो बारिश हो गई और सोयाबीन भी बढ़िया फर्स्ट क्लास में उगी है और बारिश भी बहुत भयंकर गिरी, ताकि अब सभी किसानों के चेहरे खिल उठे हैं।
0: जी जी जी
1: हाँ
0: और बुआई हो गई आपके यहाँ गांव में?
1: हाँ बुआई हो गई, नहीं 22-23 की हो गई।
0: अच्छा, तो बारिश इतनी
1: हाँ
0: हो गई थी कि बुआई कर सके?
1: हाँ बस पहले बारिश हुई, बाद में हमने बुआई की, बुआई के बाद फिर अच्छी बारिश हो गई तो बहुत बढ़िया था क्या।
0: जी जी जी
1: हाँ
0: और ऐसे भी आपके खेत में पानी की सुविधा है?
1: हाँ जी अभी भी और कोई कोई मतलब खाल वगैरह सभी नदी नाले सभी उफान पर गए थे।
0: जी जी
1: हाँ
0: महबूबा फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहा है आपने?
1: मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, ये वाला।
0: जी जी ये गीत आपको सुनवा रहे हैं।
1: हाँ जी
0: सुनिए अपने रेडियो सेट पर। धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: ओके धन्यवाद आपको।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का MH हॉटलाइन कार्यक्रम समाप्त करने की शालिनी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।
0: अभी आप MH हॉटलाइन कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करे गीत सुने।
3: नमस्कार श्रोताओं, फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तवर। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश के गीत और आपको हमें करना होता है फोन। तो हमारे फोन नंबर है 2660902 और STD कोड है 0755। तो आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार है। साथ ही कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को हम रिकॉर्ड करते हैं रोजाना सुबह 10:30 से 11 बजे तक। हेलो।
4: हेलो
3: नमस्कार, फोन करें गीत सुने।
4: नमस्कार मैम
3: जी, किन से बात हो रही है?
4: रानू गुप्ता बात कर रही हूँ, देवास से।
3: रानू गुप्ता जी, कैसी हैं आप?
4: हाँ ठीक हूँ मैम, आपकी क्या हालचाल?
3: मैं भी बढ़िया हूँ। और क्या करती हैं रानू जी?
4: मैम मैं हाउस मेकर हूँ।
3: और क्या चल रहा है अभी आपका?
4: फिलहाल तो मैं घर में ही हूँ। आज मेरे बेटे का बर्थडे है तो मेरे बेटे को हैप्पी बर्थडे।
3: क्या नाम है आपके बेटे का?
4: मेरे बेटे का अश्विन गुप्ता।
3: अश्विन, अश्विन को हमारी ओर से भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
4: थैंक यू मैम। अभी क्या है, मतलब करीबन 6 महीने से हम लोगों ने कॉल नहीं किया, मैंने और नंदिनी ने, बट आज मेरे बेटे का बर्थडे था तो हमने सोचा चलो कॉल कर लेते हैं। और एक जो जबलपुर के श्रोता है वंदना दीदी, उनके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने 6 महीने से कॉल नहीं किया बट वो हमें याद करती है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अरे वाह, वेरी नाइस। तो कार्यक्रम में आज गीत कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
4: मूवी का नाम मुझे नहीं पता, बस गाने के बोल बता देती हूँ। हंसते हंसते कट जाए रस्ते,
3: खून भरी मांग का गीत है मुझे लगता है ये।
4: जी जी बिल्कुल सही बात है, ये सही है। बस यही सॉन्ग सुना दीजिए।
3: हंसते हंसते कट जाए रस्ते, खून भरी मांग जी का जी। ये गीत आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानू जी।

0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: हेलो,
0: जी नमस्कार।
1: फोन करें जी, सुने
0: जी, किससे बात हो रही है?
1: जी, मैं शिवपुरी जिले के रामखेड़ी मारोराज से मोतीलाल परिहार बात कर रहा हूँ।
0: मोतीलाल परिहार जी,
1: और दीदी कैसी हो?
0: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
1: बढ़िया। इस समय खेती का काम चल रहा है, टमाटर की बहुत मोत तैयार कर रहे हैं।
0: अच्छा, टमाटर की खेती कर रहे हैं अभी आप?
1: जी,
0: अरे वाह, अरे वाह। तो अभी क्या क्या चल रहा है उसके अंदर?
1: अभी तो पौधा मतलब छोटे छोटे पौध करी है, अभी तो बहुत तैयार हुई है।
0: अच्छा,
1: अब बरसात हो जाएगी, 2-4 दिन में तो लगाते हैं।
0: हाँ,
1: जी,
0: अरे वाह, बहुत अच्छा। और क्या क्या लगाते हैं आप?
1: टमाटर, मिर्ची, सब्जी होती है हमारे इधर बहुत।
0: तो सभी तरह की सब्जियां लगाते हैं।
1: जी, बाहर से गाड़ी आती है और टमाटर चालू हो जाता है हमारा से बाहर की गाड़ी
0: अच्छा
1: पर।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अभी मौसम हो रहा है बारिश का?
1: जी मैडम, अभी क्या है, 1-2-4 दिन में होने वाली है बारिश, तो एक आध दिन बरस गया है, थोड़ा कम कम बरसा है अभी।
0: हाँ, अभी थोड़ा सा बारिश उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, है ना?
1: जी, ऐसे ज्यादा बारिश हो जाती है ना, उसमें गर्म ठंडक आ जाती है, उसमें अच्छी सब
0: हाँ
1: पौधे लगाए जाते हैं।
0: जी। तो कार्यक्रम में आज गीत कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
1: आई मिलन की रात को सुना जी, कितने दिनों के बाद आई।
0: जी, अनुराधा पौडवाल की आवाज में, साथ ही मोहम्मद अजीज की आवाज में ये गीत है।
1: जी,
0: बिल्कुल, आपको सुनवा देते हैं, गीत उपलब्ध है हमारे पास।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्कार, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: दीदी नमस्कार,
0: नमस्ते।
1: मैं ग्राम बाबूपुरा तहसील खोद जिला जालौन से सुरेंद्रपाल सिंह गुर्जर बोल रहा हूँ।
0: सुरेंद्र पाल सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: जी सब बढ़िया है, अच्छे आनंद में है खूब।
0: क्या चल रहा है
1: इस समय? कुछ नहीं, धान की वो चल रही है बुवाई।
0: और क्या लगाते हैं आप?
1: और इस समय तो केवल धान लगाते हैं खरीफ में।
0: अच्छा,
1: जी
0: और रबी में क्या लगाते हैं?
1: रबी में गेहूं है, मटर है, मसूर है, सरसों है, ये सब लगाते हैं।
0: तो अभी आप खेत में ही हैं?
1: नहीं अभी खेत से आए, घर पे हैं।
0: अच्छा, ठीक है।
1: तो मैंने सोचा लगा ले फोन, शायद लग जाए।
0: हाँ देखिए, लग गया।
1: जी
0: अच्छा सोचा आपने। तो कौन सा गीत सुनेंगे बताएं?
1: अमृत का सुनवा दीजिए, दुनिया
0: अमृत।
1: में कितना गम है, अपना गम कितना कम है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनवा देते हैं। मोहम्मद अजीज की आवाज में ये गीत है,
1: जी
0: तो ठीक है, बिल्कुल ये गीत हम आपको सुनवा देते हैं। आपके रेडियो सेट्स पर आएगा, और कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: हेलो हेलो, फोन करें, गीत सुने।
0: जी नमस्कार,
1: हम ग्राम छात्र तहसील उदयपुर जिला रायसेन से भगत जी बात कर रहे हैं।
0: भगत जी कैसे हैं आप?
1: जी हम बहुत बढ़िया। दीदी आपके तो बरसा हो रहा है?
0: अभी मौसम बना हुआ है, अभी हो नहीं रही लेकिन।
1: अच्छा मतलब भोपाल में अच्छा मौसम बन हुआ है?
0: हाँ मौसम बन रहा।

0: बताओ मतलब दीक्षा साहू को ब्याह हुआ तो हमें सुनने हैं वो गाना, फिल्म का नाम है विवाह।
1: क्या फिल्म का नाम है?
0: विवाह फिल्म को गाना, वो गाना हम बता रहे हैं।
1: अच्छा विवाह फिल्म।

0: डी ए वाला।
1: बिल्कुल बिल्कुल, पामेला जैन और श्रेया घोषाल की आवाज में
0: हाँ, पोमेला जैन और श्रेया घोषाल की आवाज में जो गाना।
1: विवाह फिल्म का ये गीत। और आपने बताया दीक्षा साहू के लिए गीत आप बजवाना
0: हाँ,
1: चाहते
0: दीक्षा साहू की आज बारात आ रही है, तेज
1: हैं।
0: है, हमें जो गाना सुनने हैं।
1: बहुत बहुत बढ़िया। तो आपका गीत आपको सुनवाते हैं आप कार्यक्रम में। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दीदी आपको भी धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है
1: हेलो मैम,
0: जी। नमस्कार।
1: मैं हीरू बोल रही, बाग से मैम,
0: हीरू
1: हीरू प्रयाग।
0: हीरू परिहार बोल रही हैं, कहाँ से?
1: हाँ, आप कैसे हो?
0: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं?
1: हम बढ़िया हैं मैम।
0: कहाँ से बात कर रही हैं हीरू जी?
1: मैं बाग जिला धार।
0: जिला धार से बात कर रही हैं।
1: हाँ,
0: अच्छा, क्या चल रहा है?
1: सब बढ़िया है। अभी तो मौसम भी ठंडा है। आप कैसे हो?
0: मैं बढ़िया हूँ। आप क्या करती हैं हीरू जी?
1: मैं यहाँ दुकान लगाती हूँ, यहाँ सोचती नहीं, देखती हूँ।
0: अच्छा, कौन सा
1: हाँ,
0: गीत सुनना चाहते हैं फिर हीरू जी?
1: वो सुना दो, पति मेरा देवता है, जैसा भला है बुरा है, जैसा मेरा पति देवता है, वो वाला।
0: नसीब अपना अपना फिल्म से ये गीत है।
1: हाँ,
0: बिल्कुल, आपको सुनवा देते हैं अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में ये गीत है।
1: धन्यवाद
0: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: धन्यवाद धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करे गीत सुने
1: जी। नमस्कार नमस्कार दीदी जी, कहते हैं जिस देश में गंगा बहती है उस देश के हम वासी हैं, और जहां मैंने फोन लगाया है उसके ही हम प्रवासी हैं।
0: बढ़िया, बहुत अच्छा, किन से बात हो रही है?
1: मैं चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ दीदी जी को, और सत सत राम राम भेज रहा हूँ चित्रकूट धाम से।
0: दिनकर जी चित्रकूट से
1: जी, और बहन जी का भी नाम जानना चाहूँ दीदी जी।
0: जी मेरा नाम रक्षा है।
1: जी रक्षा जी नमस्कार, बहुत दिनों के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला है, हम धन हो गए आपके जो है आपसे बात करके।
0: जी जी जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो क्या चल रहा है दिनकर जी?
1: बिल्कुल इस समय जो है नर्सरी पर बैठा हूँ, धान की नर्सरी तैयार हो रही है और यहाँ पर छाया भी है, चारपाई में बैठा हूँ और आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
0: अरे वाह।
1: जी जी जी बिल्कुल, और रेडियो में गीत भी चल रहा है और आपका फोन भी जो है आपके साथ बात भी कर रहा हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो फिर बताएं कौन से गीत सुनेंगे आप?
1: मुझे फिल्म जीत का गीत सुनना, जीत का JEET।
0: जीत फिल्म से कौन सा गीत?
1: अभी साथ लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो।
0: चलिए आपको सुनवाते हैं।
1: और ये मेरे पास जो है बब्बू वर्मा जी बैठे हैं, वो उनके साथ और प्रेम दास बाबा फूलचंद मनकारी से जो है उनके उनके साथ सुनूंगा ये गीत।
0: कार्यक्रम में ये गीत अब आपको सुनवाए देते हैं फिल्म जीत से।
1: जी नमस्कार दीदी जी।
0: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने
1: हेलो
0: जी। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, नमस्कार
1: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं आज?
0: जी। मैं रक्षा बात कर रही हूँ, मेरी बात किन से हो रही है?
1: मैं सतना से बोल रही हूँ, मध्य प्रदेश सतना से, कविता।
0: कविता जी सतना से बात कर रही हैं।
1: जी
0: कैसी हैं आप कविता जी?
1: बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: क्या चल रहा है कविता जी, मौसम कैसा है?
1: वो मैं पता है, दो मैंने 16 तारीख को फोन लगाया था तब लग गया था, और आज फिर मतलब 2-3 दिन से ट्राई कर रही थी तो वो लग ही नहीं रहा था, फिर आज मैंने फिर देखा, अभी लगा के देखूं अब लग गया।
0: बहुत बहुत बधाई हो।
1: हाँ, मैं बहुत अच्छा लगता है बात करने में।
0: जी, वो तो आपकी आवाज़ सुन के हमें पता चल रहा है कि आपको बहुत खुशी हो रही है, हमें भी बहुत खुशी होती है आप जैसे सभी श्रोताओं से बात करके।
1: वो पता है, मैंने अपनी बेटी को बताया कि मैं ऐसे बात कर रही हूँ और मैं अपने गीत बताती हूँ, वो
0: जी
1: बोल रही है मम्मी मेरे को भी रेडियो लेके दो।
0: अरे वाह, क्या नाम है आपकी
1: हाँ,
0: बिटिया का?
1: मेरी बेटी का पूजा,
0: पूजा। पूजा, अच्छा जी। तो कौन सा गीत सुनेंगे आज कार्यक्रम में?
1: पूरब और पश्चिम का, वो ये है प्रीत कहाँ की रीत सदा।
0: पूरब और पश्चिम फिल्म का। बिल्कुल, ये गीत तो हमारे पास उपलब्ध है, ये सुनवा देते हैं आपको महेंद्र कपूर की
1: हाँ,
0: आवाज में। बिल्कुल,
1: थैंक यू,
0: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: बहुत खुशी हुई मेरे को, बहुत खुशी।
0: हमें भी बहुत अच्छा लगा कविता जी, ऐसे ही हमें फोन करते रहा कीजिए।
1: हाँ, वही 15 दिन के बाद किया है मैंने।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद है।
0: तो अब आप सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं कविता जी की पसंद का ये गीत फिल्म पूरब और पश्चिम से, आवाज है महेंद्र कपूर की।
2: जब

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करने गीत सुने।
1: हेलो
0: जी। हेलो
1: जी दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, किनसे बात हो रही है?
1: जी दीदी, मैं ग्राम परसेठा, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, यमुना बेल्ट के किनारे से मैं बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ। दीदी,
0: बेटा सिंह यादव जी, कैसे हैं आप?
1: जी दीदी, बढ़िया है, अच्छा है, और हमने सोचा बातचीत कर लिया जाए। फोन करें गीत सुने में, तो आज फोन लग भी गया।
0: अरे वाह, तो क्या चल रहा है बेटा सिंह जी?
1: जी दीदी, वैसे तो अभी घर बनवा रहे थे, तो वही काम कर रहे थे और ट्राई भी कर रहे थे, तो फोन भी लग गया, तो आपसे बातें भी हो रही हैं।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जी दीदी, फिल्म का नाम रहेगा सीरीज 420 और गीत की बोल रहेगा रमैया अवस्था भैया, मैंने दिल तो इसको दिया।
0: बहुत बहुत अच्छा गीत, मुझे भी बहुत पसंद है ये गीत।
1: जी दीदी, कौन दीदी बात कर रही हैं आप?
0: मैं रक्षा बात कर रही हूँ।
1: जी दीदी बिल्कुल, और हमारी आपसे बात अक्सर हुआ करती थी जब एकदम लाइव कार्यक्रम चलता था।
0: जी,
1: और बिल्कुल आपको बात करने का तरीका है कि यार एक जो अंदाजा है, बहुत सचमुच मुझे बहुत ही अच्छा लगता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपको गीत सुनवा देते हैं आपकी पसंद का, 420 से।
1: ओके दीदी, नमस्ते।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: आज चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेखाकारों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शिता और पेशेवर उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से लेखाकार देश की वित्तीय व्यवस्था को सशक्त बनाते हैं, उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं और निवेशकों में विश्वास सृजित करते हैं। विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG राम जी अधिनियम 2025 आज

0: पूरे देश में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रूपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज सिवनी जिले में राज्य स्तरीय धान महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव जिले को विकास और किसान कल्याण की अनेक सौगातें देंगे। मुख्यमंत्री इसके बाद जबलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए हैं। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक हैं। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। पिछले साल की तुलना में 20% की बढ़ोतरी हुई है। यूपीआई अब दुनिया के 8 से ज्यादा देशों में उपलब्ध है। और मौसम विभाग ने आज बालाघाट, डिंडौरी, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर, रीवा तथा सागर सहित अधिकांश जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का सबसे पहला ये गाना हम ले रहे हैं फिल्म शान का एक गीत। आवाजें हैं आरडी बर्मन, मोहम्मद रफी और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, संगीत आरडी बर्मन का ही है। सुनते हैं ये गीत और इस गाने को पसंद किया है। गाना सुनने के बाद हम आपको बताएंगे। सुनिए ये गीत।

शान फिल्म में अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी, आर डी बर्मन और साथियों को, और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था आर डी बर्मन का। इस गाने के लिए हमारे पास में जो फरमाइश आई है वो इस तरह से, लखड़ बाजार खंडवा से लिखने वाले हैं मोहम्मद रफ़ीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। बाजार चौक ग्राम दिवाल से शंकरलाल गंगराड़े, विनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े ने, और ग्राम छेगांव देवी जिला खंडवा से लिखने वाले हैं अशोक कुमार वागे, वंदना वागे, भूपेंद्र वागे, ईश्वर बागे, तनुश्री आरोही और कान्हा बागे। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से लिखने वाले हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमिता राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। अगला गाना लिया है हमने आशा भोसले की आवाज़ में, इसमें दूसरी आवाज़ शशि कपूर की है, फिल्म का नाम है सुहाग। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गाने को संगीत से सजाया है। सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म श्री 420 से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। शैलेंद्र ने इस गाने को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत। और इस गाने की और पिछले गाने की दोनों की मिली जुली फरमाइश इस तरह से है, भोपाल से लिखने वाले हैं बिंदु नारायण गौतम, लक्ष्मी ध्रुवपाल सिंह, मदन गोपाल शुक्ला, चित्रकला सेन, अरविंद शर्मा, इंद्रजीत बिश्नोई और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, लिखने वाले हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, असमा, सालिया, शोएब, मुश्तबा, रऊफ और शाहिद। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है गांधी बाग अकोला से, लिखने वाले हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। और इसी गाने की फरमाइश के लिए हमारे पास में जो ख़त आया है ये है, जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ, बस स्टैंड बंडा, ज़िला सागर से लक्ष्मण रेखवार, विनीता रेखवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनरत रेखवार, हल्ले लल्लू और ऋषि रेखवार ने इस गाने को पसंद किया है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म अब्दुल्ला से, आवाज़ किशोर कुमार की है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है घंटाघर चौक खंडवा से, लिखने वाले हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया ने। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है छत्रपति संभाजी नगर से, राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने। इसी गाने की फरमाइश आए है शाहू नगर यवतमाल से, लिखने वाले हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल तथा चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनते हैं ये गीत।

इसी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: इस समय आप हैं हमारे साथ।
3: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
4: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
5: अनजान ऐप से बचें।
6: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
8: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
9: आकाशवाणी इंदौर।
8: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
7: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
8: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
7: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
8: अरे काहे का मजा।
7: क्यों, क्या हुआ?
8: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
7: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
8: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
7: ये हुई ना बात।
1: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
8: चलो दीदी, झूला झूलते हैं।
10: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
1: और झूलते झूलते सुनते हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
8: अरे दीदी धीरे धीरे।
11: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
12: क्या?
11: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
12: वो कैसे?
11: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
12: और सुनेंगे कैसे?
11: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

पिछली कड़ियों में आपने जाना कि हूणों के साथ युद्ध में भुवन मोहिनी छाया की तरह विजय श्रवा के साथ रही और विजय श्रवा को जीत हासिल हुई। भुवन मोहिनी और राजमाता को दिए गए वचन के अनुसार विजय श्रवा ने चंद्रहासिनी से विवाह किया, सम्राट बना। भुवन मोहिनी उन दोनों के सुखमय जीवन के लिए दूर चली गई और जाकर समाज सेवा में जुट गई। जब वो वापस आई तो चंद्रहासिनी ने भुवन मोहिनी का अपमान किया। उससे दुखी होकर विजय श्रवा भुवन मोहिनी को अपने पास बुलाकर महल से अलग रहने लगा। चंद्रहासिनी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सम्राट विजय श्रवा ने उसको निष्कासित करने का आदेश दे दिया। भुवन मोहिनी के निवेदन पर सम्राट ने चंद्रहासिनी को क्षमा कर दिया। भुवन मोहिनी एक बार फिर दोनों को समीप कर स्वयं दूर चली गई और 5 वर्षों तक इधर उधर भटकने के बाद ये सोचकर वापस आई कि अब सब ठीक हो गया होगा, सम्राट उसे भूल चुके होंगे और अब वो स्थिर होकर शांतिपूर्वक अपना शेष जीवन बिताएगी। सम्राट के दिए अलग महल में रह रही भुवन मोहिनी बीमार रहने लगी। असलियत का पता लगाने जब विजय श्रवा चंद्रहासिनी के महल गया तो उसे पता चला कि चंद्रहासिनी अपनी ममेरी बहन विमला के हाथों भुवन मोहिनी को जहर दिला रही है। भुवन मोहिनी की हत्या की कोशिश करने के अपराध में विजय श्रवा ने उन दोनों को दीवार में चुनवा दिया। सम्राट ने एक दिन भुवन मोहिनी को बुलवाया और चंद्रहासिनी के पिता और इंद्रप्रस्थ महाराज आदित्य सेन की शर्त को बताया। अब आगे क्या होता है सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 13वीं और अंतिम कड़ी में।

0: सम्राट, क्या राजकुमारी को दंड देने के पूर्व इन संभव परिणामों की ओर आपने विचार नहीं किया था?
1: सब कुछ किया था, किंतु मैं नहीं चाहता था कि भारतीय राष्ट्र की साम्राज्ञी

0: इतना निंद और गर्हित कर्म करे, और विशेषकर उसके साथ जिसकी रक्षा का अभेद्य कवच बनकर मैं स्वयं खड़ा था।
1: पूज्य सम्राट, क्या ये युद्ध टाला नहीं जा सकता?
0: टाला जा सकता है।
1: कैसे?
0: भुवन मोहिनी के कटे हुए शीश को भेजकर।
1: मैं सहर्ष अपना शीश देने को तत्पर हूँ।
0: इसका अर्थ है कि मैं भी अपने जीवन से हाथ धो लूं?
1: नहीं सम्राट, यदि देश दासत्व की श्रृंखला से जकड़ा गया तो भावी संतान अपने पूर्व पुरुषों पर हंसेगी। इतिहास के पन्ने साक्षी होंगे उस अधा पतन के जिसका हम आज आरंभ करने जा रहे हैं। सम्राट, क्या भविष्य में भारतीय संतानें सम्राटों के नाम पर घृणा और तिरस्कार की वर्षा न करेंगे, जब वे इतिहास के पृष्ठों में अतीत के संस्मरणों पर एक दृष्टि डालेंगे तो उन्हें विलासी सम्राटों की काली करतूतों के प्रति घोर विरक्ति नहीं होगी? भावी संतानें न कहेंगी कि इंद्रिय लोलुप शासकों ने सुरा और सुंदरी की उपासना में भारतीय वीरता को कलंकित किया है? इससे तो कहीं अच्छा है कि आज का सम्राट अनासक्त भाव से अपना कर्तव्य करे। जो सम्राट अपनी साम्राज्ञी को भयानक दंड दे सकता है, वो राष्ट्र में एक नर्तकी के मुंह में पड़कर निरपराध प्राणियों की हत्या द्वारा रक्त वैतरणी में क्यों निमग्न होना चाहता है? मैं निवेदन करना चाहती हूं कि युद्ध के आमंत्रण को स्वीकार करने से कहीं अधिक श्रेयस्कर ये है कि महाराज आदित्य सेन को सूचना भेज दी जाए कि शीघ्र ही उनकी सेवा में भुवन मोहिनी का शीश भेजा जाएगा।
0: नहीं भुवन मोहिनी, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
1: सम्राट, आपको स्मरण होगा कि इंद्रप्रस्थ के आश्रम में आपने मुझे दो पुरस्कार देने की बात कही थी। एक पुरस्कार तो मैंने ले लिया था, परंतु दूसरा पुरस्कार?
0: मुझे स्मरण है भुवन मोहिनी।
1: तो आज दूसरा पुरस्कार देने का समय आ गया है मेरे प्राण प्रिय। मुझे मृत्युदान दीजिए। मैं नहीं देख सकती कि एक गलित और पतित नर्तकी के जीवन का मोह आपको कर्तव्य कर्म से विलग करता जा रहा है। सत्य ये है कि एक सम्राट के दृष्टि में समस्त शासित प्रजा एक समान है। यदि मेरे तुच्छ शरीर का मोह राष्ट्र के सर्वनाश का कारण बना तो आपके पवित्र और राष्ट्राभिमानी चरित्र पर कलंक लग जाएगा। एक ओर धर्म पत्नी का न्याय के नाम पर क्रूरता पूर्वक विनाश और दूसरी ओर एक नर्तकी की आसक्ति के कारण राष्ट्र का सर्वनाश। प्रियतम, मैं तुम्हारे चरणों में गिरती हूं। मैं इस जीवन में तुम्हारी बनकर भी अपवित्रतावश तुम्हें स्पर्श करने तक से हिचकती रही हूं। मेरी शून्य छाया तुम्हारे उदास जीवन और चरित्र के लिए मुझे महान कलंक के समान रही है। यदि जनता के सामने अपनी तलवार से मेरा शीश काटकर महाराज आदित्य सेन के समीप भिजवा सके तो इससे अधिक निश्चल चरित्र इतिहास के पन्नों में ढूंढने पर भी मिल सकेगा, मुझे संदेह है।
0: इसका अर्थ है कि मैं अपना हृदय पिंड निकालकर फेंक दूं, अपने जीवन की अकेली वासना जिसके सहारे मैं आज तक जीता रहा हूं, आज कुचलकर देहाभिमान और आसक्ति से विरक्त हो जाऊं और अपने हाथों अपने मृत्यु की आज्ञा प्रदान करूं? जिन आशाओं के तिनके चुनकर मैंने अपने प्राण पखेरों के बसने के लिए स्नेह का नीड़ बसाया था, उसे न्याय की निष्ठुर दीप शिखा द्वारा झुलसा दूं, भस्म कर दूं?
1: सम्राट, यदि मेरे सर्वनाश से राष्ट्रव्यापी महासमर की अग्नि प्रज्वलित होने के पूर्व ही बुझाई जा सकती हो तो भुवन मोहिनी का शीश धड़ से विलग होने को प्रस्तुत है। महाराज आदित्य सेन की तुष्टि के लिए आपको मेरी मृत्यु का आदेश देना ही होगा।
0: और इसके साथ ही मुझे स्वयं के लिए अपनी चिता को अपने हाथों प्रज्वलित भी रखना होगा। प्रिय, विधि विधान के क्रूर निर्णय को स्वीकार करने से पूर्व एक बार जीवन की महान अतृप्ति की तुष्टि के लिए मृग जल का सहारा ही मिलता, क्या ऐसा संभव नहीं था?
1: संभव था प्रिय, किंतु इससे सम्राट के जीवन की महत्ता धूल में मिल जाती। इसलिए यदि जन्मांतर सत्य है, यदि वासना का अस्तित्व जीव को पुनर्जन्म के लिए बाध्य करता है, तो इस जीवन में नहीं। सम्राट, फिर कभी हमारा मिलन तो होगा ही, तभी जन्म जन्मांतर के वासना की तुष्टि के क्षण उपस्थित होंगे और मिलन की आशा की शुभ घड़ियां अंतिम मुक्ति की वरदायिनी सिद्ध होंगी।
0: यदि मैं आज सम्राट ना होता तो कितना अच्छा होता। आह, इस महत्ता ने मुझे साधारण मनुष्य के जीवन से भी वंचित कर दिया। जीवन का प्रत्येक क्षण अभिशापित, उत्तप्त और प्रेम के अभाव में बीत गया। सम्राट बनकर भी अपनी आकांक्षाओं को तुष्टि के जल से शीतल न कर सका और मिलन की छलना ने चिर वियोग के सम्मुख ला खड़ा कर दिया। अच्छा प्रिय, हमने जाने अनजाने जिस वृक्ष को पाला पोसा था, स्नेह का जल पिलाकर जिस तरह उसे पल्लवित और कुसुमित किया था, उसी वृक्ष को फल प्राप्त करने से पूर्व ही जड़ से काट कर नष्ट कर देने का पवित्र कर्तव्य मैं करूंगा। तुम मुझे सम्राट बनाकर साधारण मनुष्य नहीं रहने देना चाहती। भले ही उभय प्राणियों का जीवन मृत्यु की नीरव गोद में धराशायी हो जाए, मुझे स्वीकार है। आज उस मोहमयी मदिरा के प्रभाव का अंतिम क्षण महान जागरण का संदेश लेकर आया है। स्वागत है उस क्षण का। हम दोनों हृदय के सन्निकट रहकर भी एक दूसरे के न हो पाए, अब एक दूसरे के अंत का कारण बनेंगे। दुनिया की दृष्टि से ओझल होकर महान मिलन सागर में विलीन हो जाएंगे। जाओ, मेरे जीवन के स्नेह की प्रतिमा, आज तक मैं तुम्हारे रक्षक होने का अभिमान हृदय में भरता आया था, किंतु ये क्षण स्नेह के अंतिम मिलन के अंतिम क्षण है। अब तुम्हारा ये रक्षक विजयश्रवा तुम्हारे जीवन के भक्षक के रूप में तुम्हारे सामने उपस्थित होगा।
1: आपके चरणों को प्रणाम प्रियतम। जीवन भर के संचित अपराधों की क्षमा याचना का ये क्षण मूल्यवान है। इस पाप संताप में जीवन को मैं स्वयं जीवित रखने में असमर्थ हो चुकी थी, इसलिए मेरे शीश को अपनी तलवार के झटके से काटना, मैंने सब कुछ पा लिया प्रीतम। प्यार का प्रतिदान, विदा।
0: ठहरो प्रिय, तुम जानती हो वीर की तलवार एक नारी की गर्दन में शोभा नहीं देती। दूसरे, नारी हत्या जघन्य अपराध है।
1: सब कुछ है मेरी प्रीतम, किंतु अंतिम लालसा फिर भी बची है। मैं चाहती हूं कि पाप पुण्य के द्वंद से उठकर मेरे प्रियतम स्वयं मेरी गर्दन पर वार करें, ताकि मेरा लाल लहू प्रियतम के चरणों पर गिरे और मेरा अपवित्र जीवन पवित्र हो जाए। अब अंतिम बार मुझे निराश न करना मेरे देवता।
0: अच्छा प्रिय, तुम्हारे अंतिम आग्रह को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा।

0: महामंत्री।
1: आज्ञा सम्राट।
0: हमने ये दो पत्र तैयार करवा दिए हैं। प्रथम उत्तराधिकार पत्र है, जिसके अनुसार मेरा 5 वर्षीय राजकुमार अखिल भारत का सम्राट होगा, और द्वितीय पत्र महाराज आदित्य सेन के लिए है, जिसमें उनके प्रतिशोध पूर्ण भावना की पूर्ति का अंतिम आश्वासन भुवन मोहिनी का शीश भेजने का समाचार है। महामंत्री, कल प्रभात काल के पश्चात एक जनसाधारण और सामूहिक जनता की सभा का आयोजन किया जाए, जिसमें महाराज आदित्य सेन के वैर विग्रह पूर्ण पत्र के आधार पर धारा नगरी के सम्राट की ओर से दोनों राज परिवार के बीच स्नेह संबंध स्थापित रखने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाएगा, और महाराज आदित्य सेन की आंतरिक तुष्टि के लिए भुवन मोहिनी का रक्त से लथपथ शीश। आज तक मैंने गद्दी की सेवा निश्चल और न्यायपूर्ण हृदय से की है, किंतु अब मेरा मनुष्यत्व मुझसे विदा ले रहा है और उसके स्थान पर एक ऐसी निष्क्रियता प्रवेश कर रही है जो श्वासों के बचते हुए तार को किसी भी क्षण निश्चेष्ट कर देगी। इस राज सिंहासन को प्रणाम करता हूं, जिसके प्रति मेरे पूर्वज सच्चे कर्तव्यनिष्ठ और व्रती रहे हैं। मैंने इस परंपरा को स्थापित रखने का मात्र अकिंचन प्रयास किया है।
1: धारा नगरी के सम्मानीय नागरिक गण, आज इस अति विशेष जनसभा में स्वयं सम्राट विजय शोभा उपस्थित हैं, और उपस्थित हैं देवी भुवन मोहिनी। आपको ज्ञात है कि देवी भुवन मोहिनी की हत्या के षड्यंत्र के आरोप में सम्राट ने अपनी पत्नी चंद्रहासिनी और उनकी ममेरी बहन कुमारी विमला को मृत्युदंड दिया था। इससे कुपित होकर चंद्रहासिनी देवी के पिता इंद्रप्रस्थ नरेश महाराज आदित्य सेन ने हमारे राज पर आक्रमण करने की चेतावनी दे दी है। महाराज आदित्य सेन ने चेतावनी दी है कि या तो सम्राट विजय श्रवा देवी भुवन मोहिनी का विच्छेदित शीश भिजवाएं, या फिर उनका आक्रमण सहने के लिए तैयार रहें। प्रिय नागरिकों, हमारे जनप्रिय सम्राट विजय श्रवा इंद्रप्रस्थ नरेश की इस चेतावनी से चिंतित हो गए कि यदि भारत की इन दो शक्तिशाली राज्यों में आपस में युद्ध हुआ तो इसका लाभ हूण अवश्य उठाएंगे। इसीलिए हमारे सम्राट युद्ध को टालना चाहते थे, परंतु इसके पहले कि वो कोई निर्णय लेते, देवी भुवन मोहिनी ने स्वयं अपने आप को आत्मबलिदान के लिए प्रस्तुत कर दिया है। देवी भुवन मोहिनी लगातार राष्ट्रहित में अपने आप को समर्पित करती आई हैं।
2: नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भुवन मोहिनी को मत मारिए सम्राट।
3: हम भुवन मोहिनी का बलिदान नहीं चाहते।
4: ये बलिदान नहीं होना चाहिए।
3: हाँ, ये बलिदान नहीं होना चाहिए। मत मारिए महाराज, मत मारिए।
0: मेरे प्यारे देशवासियों, आप जो कह रहे हैं हम भी वही चाहते। ऐसा करते समय हमारी आत्मा फट रही है, हमारा हृदय चीत्कार कर रहा है, परंतु हम विवश हैं। हमारे और देवी भुवन मोहिनी के बीच क्या संबंध है आप भली भांति जानते हैं। यथार्थ है कि राज परिवार की प्रतिष्ठा और राष्ट्र के व्यापक हित में हमने सदैव भुवन मोहिनी को दुखी दिए हैं, सुख कभी नहीं। देवी भुवन मोहिनी ने भी कभी सुख के बारे में नहीं सोचा, कभी नारी मर्यादा तो कभी

0: राज
1: राज
0: परिवार की
1: परिवार की
0: मर्यादा,
1: मर्यादा,
0: इन
1: इन
0: मर्यादाओं के
1: मर्यादाओं के
0: व्यवहार में
1: व्यवहार में
0: उन्होंने
1: उन्होंने
0: सदा
1: सदा
0: अपने
1: अपने
0: आप
1: आप
0: को
1: को
0: व्यय
1: व्यय
0: ही
1: ही
0: किया
1: किया
0: है,
1: है,
0: अर्जित
1: अर्जित
0: कुछ
1: कुछ
0: नहीं
1: नहीं
0: किया।
1: किया।
0: देवी
1: देवी
0: भुवन
1: भुवन
0: मोहिनी,
1: मोहिनी,
0: आज भी
1: आज भी
0: चाहें,
1: चाहें,
0: अब भी
1: अब भी
0: चाहें,
1: चाहें,
0: तो
1: तो
0: मुझसे
1: मुझसे
0: लिए गए
1: लिए
0: वचन
1: गए
0: से
1: वचन से
0: मुझे मुक्त
1: मुझे
0: कर
1: मुक्त
0: सकती
1: कर
0: हैं।
1: सकती हैं।
0: हम कैसे
1: हम
0: भी
1: कैसे
0: सही
1: भी सही
0: भावी
1: भावी
0: परिस्थितियों से
1: परिस्थितियों से
0: निपटने में
1: निपटने
0: जुट
1: में जुट
0: जाएंगे,
1: जाएंगे,
0: अपने राष्ट्र
1: अपने
0: की
1: राष्ट्र की
0: एकजुटता को
1: एकजुटता
0: बनाए
1: को बनाए
0: रखेंगे।
1: रखेंगे।
0: भुवन
1: भुवन
0: मोहिनी,
1: मोहिनी,
0: एक बार
1: एक
0: फिर
1: बार
0: से
1: फिर से
0: मैं तुमसे
1: मैं तुमसे
0: प्रार्थना करता
1: प्रार्थना
0: हूं
1: करता हूं
0: कि
1: कि तुम
0: मेरे द्वारा
1: मेरे
0: दिए
1: द्वारा
0: गए
1: दिए
0: वचन
1: गए
0: से
1: वचन
0: मुझे
1: से
0: मुक्त
1: मुझे
0: करो।
1: मुक्त करो।
0: नहीं
1: नहीं
0: सम्राट,
1: सम्राट,
0: मैं
1: मैं
0: स्थित
1: स्थित
0: प्रज्ञ
1: प्रज्ञ
0: हूं
1: हूं
0: और
1: और
0: आपसे
1: आपसे
0: भी
1: भी
0: प्रार्थना
1: प्रार्थना
0: है
1: है
0: कि
1: कि
0: आप
1: आप
0: भी
1: भी
0: रहिए।
1: रहिए।
0: मुझे
1: मुझे
0: गर्व
1: गर्व
0: है
1: है
0: कि
1: कि
0: मेरे
1: मेरे
0: रक्त
1: रक्त
0: का
1: का
0: प्रत्येक
1: प्रत्येक
0: बिंदु
1: बिंदु
0: हिंसा
1: हिंसा
0: के
1: के
0: अपार
1: अपार
0: सागर
1: सागर
0: को
1: को
0: रोक
1: रोक
0: पाने
1: पाने
0: में
1: में
0: समर्थ
1: समर्थ
0: हो
1: हो
0: रहा
1: रहा
0: है।
1: है।
0: पूज्य
1: पूज्य
0: सम्राट,
1: सम्राट,
0: मेरे
1: मेरे
0: जीवन
1: जीवन
0: के
1: के
0: समस्त
1: समस्त
0: अपराधों
1: अपराधों
0: को
1: को
0: क्षमा
1: क्षमा
0: करें
1: करें
0: और
1: और
0: अपनी
1: अपनी
0: तीक्ष्ण
1: तीक्ष्ण
0: कटार
1: कटार
0: से
1: से
0: मेरा
1: मेरा
0: पतित
1: पतित
0: शीश
1: शीश
0: काट
1: काट
0: कर
1: कर
0: मुझे
1: मुझे
0: गौरवपूर्ण
1: गौरवपूर्ण
0: मृत्यु
1: मृत्यु
0: का
1: का
0: दान
1: दान
0: दें।
1: दें।
0: आज
1: आज
0: मैं
1: मैं
0: ये
1: ये
0: क्या
1: क्या
0: करने
1: करने
0: चला
1: चला
0: हूं?
1: हूं?
0: मेरे
1: मेरे
0: हाथ
1: हाथ
0: में
1: में
0: ये
1: ये
0: कटार
1: कटार
0: और
1: और
0: मेरे
1: मेरे
0: समक्ष
1: समक्ष
0: अपना
1: अपना
0: शीश
1: शीश
0: कटाने
1: कटाने
0: के
1: के
0: लिए
1: लिए
0: अवनत
1: अवनत
0: तुम
1: तुम
0: भुवन
1: भुवन
0: मोहिनी,
1: मोहिनी,
0: एक
1: एक
0: ही
1: ही
0: पल
1: पल
0: में
1: में
0: क्या
1: क्या
0: से
1: से
0: क्या
1: क्या
0: हो
1: हो
0: जाएगा?
1: जाएगा?
0: तुम्हारी
1: तुम्हारी
0: धड़कन,
1: धड़कन,
0: तुम्हारी
1: तुम्हारी
0: जिह्वा,
1: जिह्वा,
0: सब
1: सब
0: कुछ
1: कुछ
0: शांत
1: शांत
0: हो
1: हो
0: जाएगा।
1: जाएगा।
0: मेरे
1: मेरे
0: स्वामी,
1: स्वामी,
0: परीक्षा
1: परीक्षा
0: की
1: की
0: गहनतम
1: गहनतम
0: घड़ी
1: घड़ी
0: में
1: में
0: आपका
1: आपका
0: विचलन
1: विचलन
0: शोभा
1: शोभा
0: नहीं
1: नहीं
0: देता।
1: देता।
0: आपकी
1: आपकी
0: दुर्बलता
1: दुर्बलता
0: कहीं
1: कहीं
0: मुझे
1: मुझे
0: लज्जित
1: लज्जित
0: न
1: न
0: कर
1: कर
0: दे
1: दे
0: मेरे
1: मेरे
0: प्रिय,
1: प्रिय,
0: मैं
1: मैं
0: नहीं
1: नहीं
0: चाहती।
1: चाहती।
0: वार
1: वार
0: करिए
1: करिए
0: मेरे
1: मेरे
0: प्रभु,
1: प्रभु,
0: वार
1: वार
0: करिए।
1: करिए।
0: जिस
1: जिस
0: शरीर
1: शरीर
0: को
1: को
0: मैंने
1: मैंने
0: अपने
1: अपने
0: हृदय
1: हृदय
0: से
1: से
0: भी
1: भी
0: बढ़कर
1: बढ़कर
0: प्यार
1: प्यार
0: किया,
1: किया,
0: आज
1: आज
0: उसी
1: उसी
0: के
1: के
0: विनाश
1: विनाश
0: का
1: का
0: कठोर
1: कठोर
0: दायित्व
1: दायित्व
0: निभाने
1: निभाने
0: की
1: की
0: शक्ति
1: शक्ति
0: दो
1: दो
0: ईश्वर।
1: ईश्वर।
0: भुवन
1: भुवन
0: मोहिनी,
1: मोहिनी,
0: सावधान।
1: सावधान।

0: महामंत्री, पूर्व निश्चित सैनिकों को आदेश दीजिए कि इसी क्षण भुवन मोहिनी का मुंडरुंड लेकर महाराज आदित्य सेन की सेवाओं में उपस्थित हो।
1: आज्ञा सम्राट।

आज मेरी प्रियतमा नश्वर जीवन से सदा के लिए विदा ले चुकी है। अब मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं बचा। एक मानव सम्राट बनकर

कर्तव्य के लिए मुझे जिस तरह निर्मम बनना पड़ा, मानो मेरा मनुष्यत्व सदा सदा के लिए छिन गया हो। संज्ञा शून्य, भावनाहीन और ये नीरस जीवन लेकर मैं करूंगा ही क्या? मेरे अटके हुए ममता के धागे तो उसी समय टूट गए थे जब मेरी तलवार भुवन मोहिनी की गर्दन पर वार करने के लिए उठी थी। जीवित भुवन मोहिनी की आवश्यकता तो जीवित विजय श्रवा के लिए थी। जब भुवन मोहिनी ही नहीं रही, तब विजय श्रवा ही क्यों जीवित रहे? आह, भुवन मोहिनी के बिना पंख विहीन पक्षी की भांति हो गया हूं मैं। अब भुवन मोहिनी का चित्र मात्र एक वस्तु है जिसे मेरी आंखें स्वीकार कर सकती हैं। जब तक सांसों की डोर बनी है, भुवन मोहिनी मेरी आंखों के सामने तुम ही रहोगी, मात्र तुम। जैसे तुम निष्प्राण, कठोर, प्रस्तर, वैसा ही मैं भी हो रहा हूं, निष्प्राण, कठोर।

0: संग्रहालय से इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक भुवन मोहिनी की 13वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेखाकारों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शिता और पेशेवर उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से लेखाकार देश की वित्तीय व्यवस्था को सशक्त बनाते हैं, उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं और निवेशकों में विश्वास सृजित करते हैं। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025

0: आज से पूरे देश में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिवनी जिले में राज्य स्तरीय धान महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव जिले को विकास और किसान कल्याण की अनेक सौगातें देंगे। मुख्यमंत्री इसके बाद जबलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। इन लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। यह पिछले साल की तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। मौसम विभाग ने आज बालाघाट, डिंडौरी, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, सागर सहित अधिकांश जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 देशों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए बहनों का कार्यक्रम महिला सभा। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की है।
2: महिला सभा कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपके दोस्त ज्योति आपके साथ। करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, गर्मी की छुट्टियाँ अब समाप्त हो चुकी हैं, मतलब बच्चों की गर्मी की छुट्टी। पर सखियों, ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारी भी छुट्टियाँ चल रही थी, क्योंकि रूटीन ही कुछ ऐसा होता है कि स्कूल बच्चे जाते हैं पर तैयारी हमारी होती है। सखियों, छुट्टियों में अक्सर ही हम लोग बाहर प्राकृतिक स्थलों पर घूमने जाते हैं, क्योंकि चिलचिलाती गर्मी में हरे भरे वन और बर्फीले स्थान राहत देते हैं, जहां हम सुकून के कुछ दिन बिता सकते हैं। सखियों, चमत्कार शब्द की उत्पत्ति शायद इन्हीं स्थानों से हुई थी, क्योंकि यदि हम इन जगहों पर जाते हैं ना, तो हम खुद महसूस करते हैं कि मन एकदम शांत और प्रसन्न होने लगता है, क्योंकि हम रम जाते हैं तन और मन से अपनी प्रकृति की सुंदरता में। पर सखियों, क्या होगा यदि ये सुंदरता ना रहे, यदि ये वन ये पहाड़ ना रहें? पर ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो पर्यावरण बचा रहे हैं ना। हर साल हम पर्यावरण के ऊपर वनों, जंगल, वायु, पानी, इन सभी को बचाने के प्रोग्राम करते हैं, भाषण देते हैं, सोशल मीडिया और अन्य मीडिया पर कार्यक्रम करते हैं। पर सखियों, क्या ये सब करना ही काफ़ी होता है? इससे सब बच जाएगा या बच रहा है? जितना हम पर्यावरण और वन रक्षण की बातें करते हैं ना, जागरूकता फैलाते हैं ना, उतना ना तो संरक्षण हो रहा है, ना ही पेड़ पौधे वन बच रहे हैं, बल्कि शायद नष्ट ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम सभी का जवाब यूजुअली यही होता है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या ही है। तो सखियों, जवाब ये है कि जो कर सकते हैं हम ही कर सकते हैं। हम सभी मिलकर एक ताकत बन सकते हैं, पर शुरुआत अपने आप से ही, बल्कि अपने घर से ही होगी। सबसे पहले अपने घर में या घर के आसपास पेड़ पौधे लगाएं। सिर्फ लगाना ही काम नहीं होता, उनकी देखभाल भी करें। कागज़ का उपयोग बहुत ही सोच समझ कर करें। जहाँ भी उसका अनावश्यक प्रयोग लगे ना, वहाँ उसका विरोध करें, पर विरोध मर्यादित हो। पेड़ों की अनावश्यक कटाई का विरोध करें, क्योंकि सुख सुविधा से पहले हमें जीने के लिए सांसें चाहिए, और सांसों के लिए शुद्ध हवा चाहिए, और शुद्ध हवा के लिए एक स्वच्छ पर्यावरण चाहिए, जो कि हमें हरे भरे वन ही दे सकते हैं। पर्वतीय और वन स्थलों पर जाकर पॉलीथीन, प्लास्टिक का कचरा ना फैलाएं। ये और ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे हाथ में हैं, जिनसे बेशक हम अपने पर्यावरण, अपनी प्रकृति को बचाने में योगदान दे सकते हैं।

0: इसलिए ये ना कहें कि हम क्या कर सकते हैं। सखियों, हम एक ताकत बनकर, संकल्प लेकर बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: और सखियों, हमारी धरा सुरक्षित रहे, हमारे वन्य और हमारे जंगल, हमारे पहाड़ सुरक्षित रहे, इसे बचाने की मुहिम को लेकर ही हम मनाते हैं वन महोत्सव सप्ताह, जो कि 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। और सखियों, इस उत्सव की शुरुआत हुई थी सन 1950 में, उस समय केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर के एम मुंशी द्वारा की गई थी।
0: सखियों, सोचिए ना उस चित्रकार की कला के बारे में जिसने इतनी सुंदर प्रकृति को रचा है।

0: सखियों कहते हैं कि ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया। पर सखियों हम ये कहते हैं कि मानवता की सेवा और रक्षा करने के लिए उसने डॉक्टर्स को भी बनाया। सखियों 1 जुलाई को हम मनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। इस उपलक्ष्य में हमने अपने शहर के कुछ डॉक्टर्स के संदेश लिए हैं, तो अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं वो संदेश।
1: आप सभी को नमस्कार और डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर दीप्ति बुनकर रेडियोलॉजिस्ट हूँ। जब लोग डॉक्टर के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में अक्सर स्टेथोस्कोप या क्लिनिक की छवि आती है, लेकिन एक रेडियोलॉजिस्ट के रूप में हमारा काम थोड़ा अलग और बेहद संवेदनशील है। हम अक्सर पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं ताकि दूसरों के जीवन में उजाला ला सकें। चाहे रात का कोई भी वक्त हो, एक्सीडेंट का केस हो, स्ट्रोक या कोई गंभीर इमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर और आईसीयू में हमारा रोल सबसे पहले शुरू होता है। जब हर एक सेकंड कीमती होता है, तब हमारी त्वरित सीटी स्कैन और एक्सरे रिपोर्ट ही सर्जनों और इमरजेंसी डॉक्टरों को सही रास्ता दिखाती है। हम मेडिकल जगत के वो जासूस हैं जो शरीर के भीतर छिपे सच को तुरंत सामने लाते हैं। भले ही हर मरीज से सीधे तौर पर ना मिले, लेकिन आपातकाल की हर घड़ी में और हर सटीक डायग्नोसिस में हमारी प्रतिबद्धता शामिल होती है। आज मुझे अपने सभी चिकित्सकों और 24 घंटे सेवा देने वाले योद्धाओं के साथ खड़े होने पर बेहद गर्व है। मेरे सभी बेहतरीन सहकर्मियों को हैप्पी डॉक्टर्स डे। धन्यवाद।
2: डॉक्टर्स डे पर सभी शहरवासियों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर श्वेता सहाय, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के रूप में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। पिछले 20 सालों से इस संस्थान को मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। इस डॉक्टर्स डे पर मैं सभी शहरवासियों को यह संदेश देना

0: चाहती हूँ कि ये शहर हमारा अपना है, इसे स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में हम सबका सहयोग होना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकना, थूकना इत्यादि, इन सब चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि सफाई केवल सफाई कर्मी का कार्य नहीं है, वह हम हर एक नागरिक का कर्तव्य है। पिछले कई सालों से मैं अपनी सेवाएं इस क्षेत्र में देकर के यह समझ पाई हूँ कि स्वास्थ्य केवल बीमारियों की कमी नहीं होता है, स्वास्थ्य अर्थात मन एवं तन दोनों में एक प्रफुल्लित होने की का आभास, वही सही स्वास्थ्य होता है। इसीलिए सिर्फ बीमारी की कमी को आप स्वास्थ्य ना समझें, आप ये समझिए कि अपने आप को, अपने शरीर को एक अच्छी कंडीशन में रखना, नियमित व्यायाम करना, स्वच्छ एवं सादा आहार लेना, स्वच्छ और भरपूर पानी पीना, इन सब चीजों में ही असली स्वास्थ्य निहित है। हम इससे कई बीमारियों से बच सकते हैं और आप सभी को मेरी तरफ से अनेक अनेक स्वास्थ्य कामनाएं। धन्यवाद।
1: मेरा नाम डॉक्टर गौरव भारद्वाज है और मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं बचपन में जब छोटा था तो मेरी खुद एक बार सर्जरी हुई थी और उसके बाद मैं बहुत इंस्पायर हुआ डॉक्टर बनने के लिए। मुझे लगा कि डॉक्टर ने मुझे बहुत मदद की थी मेरे बीमारी से बाहर आने के लिए, और उसके बाद मैंने ये निश्चय कर लिया कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर ही बनूंगा। मुझे बार बार लगता था कि ना शायद मैं डॉक्टर ही बन सकता हूँ और जीवन में और कुछ नहीं बन सकता, और मैंने ये रास्ता पूरा किया। डॉक्टर बनने का सफ़र बहुत ही कठिन रहा, बहुत ही जूझना पड़ा। 10 साल 15 साल लगातार मेहनत, अलग अलग तरह के इम्तिहान, और उसके बाद वो मुकाम मैं हासिल कर पाया। मेरा उद्देश्य था मानवता की सेवा करना और उनको उनकी परेशानियों से मुक्त कराना। मैं काफ़ी हद तक उसमें सफल भी रहा उस रास्ते में, लेकिन मैंने खुद को भी खोजना शुरू किया और अपने बारे में जानना शुरू किया, और मुझे लगा कि मैं जितना अपने बारे में जान पाऊँगा शायद मैं उतनी ही अच्छा सब जनता की सेवा कर पाऊँगा। इस डॉक्टर्स डे पर मैं सभी मेरे डॉक्टर साथियों को और श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और जो लोग भी डॉक्टर बनने की राह में हैं उन सबको शुभकामनाएं कि वो इस राह में सफल रहें और एक अच्छे डॉक्टर बनके देश की और मानवता की सेवा करें।
2: प्रिय श्रोताओं और सभी डॉक्टर मित्रों को मेरा नमस्कार एवं डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम डॉक्टर कृति है, मैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूँ। बचपन से ही मेरा सपना डॉक्टर बनने का रहा है। मुझे विज्ञान विषय में विशेष रुचि रही है और मानव शरीर के बारे में जानने की इच्छा ने ही मेरा यह सपना पूरा किया। डॉक्टर बनने के लिए कठिन परिश्रम, अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं उन सभी श्रोताओं को संदेश देना चाहूँगी जो डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हैं कि यदि हम सच्ची लगन और मेहनत करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। डॉक्टर केवल एक प्रोफेशन नहीं है बल्कि मानवता की सेवा का एक महान माध्यम है। मेरी यही इच्छा है कि मैं भविष्य में भी अपना काम ईमानदारी और समर्पण के साथ करती रहूं। डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: मैं डॉक्टर अनुराग चौहान, गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय एवं जया रोग के अस्पताल समूह जनरल सर्जरी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं पिछले 25 साल से जया रोग के अस्पताल एवं गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ।
4: आज आप सभी लोगों को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे पर बधाई देता हूँ। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं हमेशा से डॉक्टर ही बनना चाहता, तो मेरा जवाब है हाँ। मैं हमेशा से ही लोगों की पीड़ा देखकर अपने आप को भी पीड़ित महसूस करता था, और मेरे

0: अंदर का एक व्यक्ति हमेशा ये चाहता था कि मैं किसी भी तरीके से लोगों को पीड़ा मुक्त कर सकूं। इस कारण मुझे हमेशा मेरे मन में एक ये लालसा थी कि मैं सफ़ेद कोट पहनूं और लोगों की भलाई के लिए कुछ कर सकूं। जब भी किसी मरीज को हम लोग देखते हैं कि वो ठीक होता है तो एक अंदर से प्रसन्नता महसूस होती है और सेटिस्फेक्शन महसूस होता है जो किसी भी और चीज़ से नहीं मिलती। हमेशा ये कहना चाहूँगा, चिकित्सा सद डॉक्टरों के प्रति सद्भावना और उनके विश्वास पे चलती है। और आप सभी को भी मैं आज डॉक्टर्स डे पे अपने चिकित्सक साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और हमेशा बोलना चाहूँगा कि हम लोगों को अब मरीजों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए और उनके लिए जो बन सकता है हमें करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि इसी भावना से मैं हमेशा आगे करता रहूँ। धन्यवाद।
1: नमस्कार, सलाम। मैं डॉक्टर नाजिया खान, आयुर्वेद चिकित्सक और पूर्व चिकित्सा अधिकारी। मैं पिछले 16 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हूं। सभी श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन और आप सभी को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी कष्ट, दुख, तकलीफ में गिरे इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाने की जो खुशी होती है ना, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मुझे इसी संतुष्टि के एहसास ने इस तरफ आकर्षित किया। हालांकि सफ़र आसान नहीं होता, ये सभी साथी लोग जानते हैं। खासकर छोटे शहर के ऑर्थोडॉक्स एरिया से निकली हुई एक लड़की, घर से बाहर निकलना, अंतहीन दिन और रातें, भारी भरकम किताबें, कड़ा अनुशासन और बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, वो इस सफ़र का हिस्सा हैं। लेकिन जब पहली बार हम वो वाइट एप्रन पहनते हैं ना, उस एक पल में जो गर्व और जिम्मेदारी का एहसास होता है, वो सब कुछ बदल देता है। यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद का उद्देश्य स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरत से विकार प्रशमन उसके बाद आता है। मतलब पहले स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, वो बीमार पड़े ही ना, बीमारी को दूर करना उसके बाद की बात है। और जिस सेवा भावना के उद्देश्य से मैं इस क्षेत्र में आई थी, वो हर दिन तब पूरा होता है जब कोई मरीज ठीक होकर मुस्कुराते हुए घर जाता है। हालांकि हर तबके तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना मेरा उद्देश्य है और उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक ज़िंदगी कम है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर को सिर्फ काबिल ही नहीं बल्कि एम्पैथेटिक भी होना ज़रूरी है, उसमें संवेदनशीलता होनी चाहिए, कम से कम सुने। वो सुनना हमारे पेशे में, हमारे फील्ड में बहुत ज़रूरी गुण है और पेशेंट के प्रति सहानुभूति बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं यही कहूँगी कि आखिरी में सबसे मेरा यही संदेश है कि सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। धन्यवाद।
2: नमस्कार ग्वालियर, मैं डॉक्टर नीतू प्रसाद, आयुर्वेदिक चिकित्सक। डॉक्टर डे के अवसर पर आकाशवाणी के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। डॉक्टर डे हम सभी बंगाल के डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में मनाते हैं। डॉक्टर विधान चंद्र राय ने अपना पूरा जीवन स्वास्थ्य सेवा में लगा दिया। उनके जीवन का लक्ष्य ही यही था कि सभी स्वस्थ रहें और ईश्वर ने इस विशिष्ट सेवा के लिए ही हम सभी डॉक्टर्स को बनाया है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और अस्वस्थ व्यक्ति के विकारों का को दूर करना ही चिकित्सा है। हम अपने वर्क प्लेस पर यही प्रार्थना करते हैं रोज कि सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें। कहा भी जाता है कि निरोगी काया ही जीवन में सबसे बड़ा सुख है। तो हम सभी आज इस अवसर पर ये प्रण लें कि हम अपना और अपनों का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे। अपने हेल्थ चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास जाएं। इससे हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, फिर भी हमें कुछ और होने वाली बीमारियां या किसी और कमी के बारे में पता लगता है तो हम उसका निराकरण कर पाते हैं। कहा भी जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पुनः आप सभी को डॉक्टर डे की शुभकामनाएं देती हूं। थैंक यू।
3: नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार, रेडियोलॉजिस्ट। डॉक्टर्स डे के इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। चिकित्सा केवल एक पेशा नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और विश्वास का माध्यम है। एक डॉक्टर

0: का उद्देश्य केवल रोग का उपचार करना ही नहीं बल्कि रोगी को आश्वस्त करना, उसे सही दिशा देना और उसके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना भी है। मैं रेडियोलॉजी के क्षेत्र से जुड़ा हूँ। चिकित्सा विज्ञान में अक्सर कहा जाता है कि सही उपचार की शुरुआत सही निदान से होती है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी आधुनिक तकनीकों ने रोगों की पहचान को अधिक सटीक और शीघ्र बनाया है, जिससे अनेक गंभीर बीमारियों का समय रहते पता लगाना संभव हुआ है। आज का चिकित्सा तंत्र एक टीम वर्क है, जिसमें चिकित्सक, नर्स, टेक्नीशियन और अन्य स्वास्थ्यकर्मी मिलकर रोगी की सेवा करते हैं। हम सभी का लक्ष्य एक ही है, रोगी को बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर जीवन प्रदान करना। डॉक्टर्स डे हमें महान चिकित्सक भारत रत्न डॉक्टर बीसी राय के योगदान की भी याद दिलाता है, जिन्होंने चिकित्सा सेवा को मानवता की सेवा का सर्वोत्तम माध्यम माना। आइए इस अवसर पर हम सभी स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, नियमित स्वास्थ्य जांच कराने और चिकित्सा कर्मियों के प्रति सम्मान एवं विश्वास बनाए रखने का संकल्प लें। आप सभी को डॉक्टर्स डे की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: सखियों, अभी आप सुन रही थी चिकित्सा दिवस पर डॉक्टर्स से प्राप्त संदेश। सखियों, चुनौतियों की यदि बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये दौर चुनौतियों का दौर कहला सकता है। कहते हैं ना कि ये वक्त है बदलाव का, विकास का। तो सखियों, जब हम बदलाव में विकासशीलता से विकसित अवस्था में प्रवेश करते हैं तो समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। और सखियों, मुझे लगता है कि इस समय बड़ी बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती है पेरेंटिंग की। सखियों, यदि पहले के समय की बात की जाए तो कम साधन में 3-4 बच्चे पल जाते थे। खुद हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि हमने तो इतने इतने बच्चे पाल लिए, तुम लोग एक या दो बच्चों को पालने में परेशान हो रहे हो। सखियों, सच भी है, हम लोग हर रोज़ एक नए पेरेंटिंग के चैलेंज को लेकर चलते हैं। सखियों, वर्तमान में बच्चों की परवरिश आसान की जगह चुनौतीपूर्ण बन गई है और इसकी कोई एक वजह देना ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी कई वजह हैं। पहली वजह है परिवारों का बिखरना। सखियों, आज के समय में करियर और नौकरी के लिए अक्सर बच्चे अपना घर छोड़कर दूसरे शहर और दूसरे देश में जाके बस जाते हैं, मतलब परिवार और समाज से दूर, बस काम करते हैं और रिश्तों के नाम पर सिर्फ दोस्त होते हैं। तो सखियों, ऐसे में तो बच्चों के पालन पोषण पर फर्क पड़ता ही है। एक भरे परिवार में बच्चा जो अपने दादा दादी, बुआ चाचा, नाना नानी, मामा मौसी से सीखता है, वो रिश्तों को जानता है, वो समझता है, वो इतने रिश्तों में पलकर बड़ा होता है कि फिर वो और लोगों को देखकर हिचकता नहीं है। उसे सबके साथ में रहना आता है, उसे सामाजिकता आती है, उसे शेयर करना आता है। पर सखियों, अकेले पल रहे बच्चों को ये रिश्ते समझ नहीं आते, इसलिए क्योंकि परिवार में वो कुछ समय के लिए ही मेहमान बनकर आते हैं, वार त्यौहार या किसी कार्यक्रम में। ऐसे में बच्चा बाहरी दुनिया से खुलकर तालमेल नहीं बना पाता। दूसरा, आजकल सोशल मीडिया का दौर है भाई, मम्मी पापा बच्चे सभी मोबाइल में व्यस्त हैं, कम समय मिलता है, और बच्चों को तो इसके अलावा और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिल जाते हैं तो वो उसमें व्यस्त रहते हैं। ऐसे में कम्युनिकेशन इतना कम हो जाता है पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में कि बच्चों की एक अलग दुनिया बनती जाती है। ऐसे में बच्चे के अभिभावक सोचते हैं कि हम क्या करें, हम बच्चों के पेरेंट्स बने या बच्चों के दोस्त बने। ऐसे समय में बच्चों और माता पिता के बीच जब बातचीत नहीं हो पाती तो दुनिया बन जाती है, और ये सबसे बड़ी चुनौती होती है बच्चों की परवरिश की, जिसे हमें ही पार पाना है। अपने रूटीन वर्क और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के समय को मैनेज करके, बच्चों के दोस्त बनकर और समय पड़ने पर उनके माता पिता बनकर भी सभी कुछ बैलेंस करके चलना होगा, तभी तो हम बेहतर पेरेंटिंग की मिसाल बन पाएंगे।

0: सखियों, हमारे घर में कोई कार्यक्रम हो या हम कहीं घूमने जाएं, यात्रा पर जाएं या फिर हम शॉपिंग पर जाएं, पर इन सभी में सखियों सफलता तभी मिलती है जब हम इनकी प्लानिंग करते हैं और उसका बजट बनाते हैं, क्योंकि बिना बजट बनाए शॉपिंग करना या यात्रा करना या कोई कार्यक्रम करना, इसका पूरा मज़ा ही ख़राब हो जाता है। क्योंकि यदि हम पहले बजट बना लेते हैं ना सखियों, तो हमें पता रहता है कि कहाँ पर कितना खर्च करना है, और इससे हमारा पैसा अनावश्यक खर्च नहीं होता और हमारी बचत भी हो जाती है और हम आर्थिक तनाव से बच जाते हैं। इसलिए सखियों, जब भी कहीं घूमने जाएं या कोई कार्यक्रम हो या आप शॉपिंग के लिए जाएं, तो बजट ज़रूर बना कर जाएं, ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपकी यात्रा सुखद हो, आपके कार्यक्रम भी खुशी खुशी संपन्न हो और आपकी शॉपिंग का मज़ा भी दुगना हो जाए। सखियों, घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि अपनी सखी ज्योति को दें अनुमति कार्यक्रम महिला सभा संपन्न करने की। आप सभी का दिन शुभ रहे। नमस्कार।
1: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
2: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: इस समय आप है हमारे साथ।
4: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
5: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
6: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
5: तो सुनते रहिए मालवा की शान
7: आकाशवाणी इंदौर।
6: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
8: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
9: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
10: क्या?
9: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
10: वो कैसे?
9: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
10: पर सुनेंगे कैसे?
9: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं देवकी नंद केवट के गाए हुए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की है। पहले आप सुनेंगे दादरा और उसके बाद लोक भजन।

अभी आप सुन रहे थे देवकीनंद केवट के स्वर में कुछ लोकगीत। इसके साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। अब लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार स्वाति पराशर, इनके स्वर में कुछ भक्ति रचनाएं हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हमारे ग्वालियर केंद्र का योगदान है।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे स्वाति बाराशर के गाए हुए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद।
1: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: इस समय आप है हमारे साथ।
3: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
4: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
5: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान
6: आकाशवाणी इंदौर।
5: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
7: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
8: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
9: क्या?
8: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
9: वो कैसे?
8: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
9: पर सुनेंगे कैसे?
8: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
10: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत प्यासा सावन फिल्म से, आवाजें लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की हैं। गीतकार संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और अब हम आपको सुनवाते हैं चश्मे बद्दूर फिल्म का गीत। आवाजें येशुदास और हेमंती शुक्ला की हैं, बोल इंदु जैन के और धुन राजकमल की।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के 11 वर्ष पूरा होने पर इसका असर जीवन के हर क्षेत्र में दिख रहा है। डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से सरकारी सहायता पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों तक पहुंच रही है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और व्यापार में भी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि AI, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिवनी जिले में राज्य स्तरीय धान महोत्सव में शामिल होंगे। इस दौरान वे 494 करोड़ रुपए लागत के 629 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। कोदो कुटकी उत्पादक करीब 4 किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से करीब 3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि अंतरित की जाएगी। किसानों को ये राशि 1000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से दी जा रही है। महोत्सव स्थल पर कृषि यंत्रों, मिलेट्स उत्पादों और स्व सहायता समूहों के उत्पादों की विकास प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG रामजी अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया है। सरकार ने इसके लिए 95,600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रवेश प्रक्रिया ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सत्र 2026-27 में अब तक 5,48,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। इनमें से 2,93,000 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त कर लिया है। पिछले वर्ष की तुलना के प्रवेश में 42.03% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज 3 महत्वपूर्ण दिवसों पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस पर कहा कि सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के निर्माण में इनकी अहम भूमिका है। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों के समर्पण को असंख्य परिवारों के लिए आशा और नवजीवन का आधार बताया। वहीं राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस पर उन्होंने कहा कि डाक कर्मचारियों की कर्म निष्ठा ने डाक व्यवस्था को जनता के विश्वास का सशक्त माध्यम बनाया है। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज जम्मू में तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण और RFID कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शुक्रवार को पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी। बात मौसम की। प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बालाघाट और डिंडोरी में आज अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देवास, हरदा, बैतूल, पांडुर्णा और छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अनुमान है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर सहित कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। अब बात खेल की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे शुरू होगा। मुकाबले पर बारिश का साया है। करीब 80% बारिश की संभावना जताई गई है। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज गंवाने के बाद श्रेयस अय्यर की टीम जीत के साथ नई शुरुआत करेगी। युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर भी चर्चा तेज है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी कलेक्टर ने जिले की समस्त रेत खदानों में मानसून अवधि के दौरान खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। आगरमालवा के अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर एक दूध डेयरी संचालक पर 1.5 लाख रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया और लोक निर्माण विभाग मंत्री और नर्मदापुरम जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान केवल 100 दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि जन भागीदारी से लगातार चलने वाला जन अभियान है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि VBG रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
2: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित देशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है।

0: श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
1: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
3: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
0: प्रधानमंत्री

0: व्याप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
1: India's engagement.
2: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
1: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर GST ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। GST से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन GRAMJI अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, मौसम बदल रहा है, कहीं बादलों की आवाजाही है, कहीं बारिश का इंतजार, तो कहीं रिमझिम सी फुहार। ऐसे सुहाने से मौसम में आपकी कुछ चिट्ठियां चलकर हम तक पहुंची हैं और जिनमें लिखे हैं आपके फरमाइशी गीत, ये गीत हम पहुंचाएंगे आप तक। ये खत है जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट का। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश। चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल, पार्वती मोटवानी, राजेश, रेशम, मुकेश, भावना, सोमेश और यशराज। और पिंडरा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। आप सबने सुनना चाहा है कुदरत फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की है। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार आर डी बर्मन।

फिर वही दिल लाया हूँ। कार्यक्रम का अगला गीत हमने इस फिल्म से लिया है। गायिका हैं आशा भोसले, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार ओपी नैयर। फरमाइश आप सबकी है। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। सारनी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि, पंजाब राव और संदीप पाटिल। शाजापुर से एमएम राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को पसंद करते हैं। मुंगेली से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी, योगिता और नितिन, साथ में है वंशिका दिवाकर। मोटक्का माफी जिला खंडवा से इसी गीत को सुनना चाहा है। जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। गठिया रोग एवं आर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी क्लिनिक शाहपुरा भोपाल द्वारा अनुबंधित सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण 5 जुलाई 2026 दिन रविवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है, गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस विषय के संबंध में श्रोता अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु 5 जुलाई रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 2660901 और दूसरा नंबर है 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड 0755। दिन और समय एक बार फिर सुन लें, 5 जुलाई रविवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। सूचना समाप्त हुई और अब आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं। हिमालय की गोद में, ये फिल्म का नाम है, आवाज़ लता मंगेशकर की है, शब्द रचना इंदिवर की और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। अनुरोध आप सबका है। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, धरसीमा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना, दुर्गापारा, संतोषी नगर, रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, रानू, खुशी, प्रवीण और सीएल यादव, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा, भिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया, जानवी, तृप्तेश और इनके परिवार के सभी सदस्य, सह्याद्री परिसर भदभदा रोड भोपाल से इसी गीत को पसंद करते हैं, योगेश्वर सिंह भारतीय, डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, भैरव प्रताप सिंह भारतीय, लोकेंद्र प्रताप सिंह, प्रेमाबाई, दुर्गा और अमिता भारतीय।

हरियाली और रास्ता, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आवाज़ें लता मंगेशकर और मुकेश की हैं, गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। पसंद आप सबकी है। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजदीप और राशि। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले। सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। और आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। गठिया रोग एवं आर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी क्लिनिक शाहपुरा भोपाल द्वारा अनुबंधित सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण 5 जुलाई 2026 दिन रविवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस विषय के संबंध में श्रोता अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु 5 जुलाई रविवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इन फ़ोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 077 0755, दूसरा नंबर 2660902। दिन और समय एक बार फिर सुन लें, 5 जुलाई दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच हमारे फ़ोन नंबर हैं 2660901 और 2660902, भोपाल का एसटीडी कोड 0755। सूचना समाप्त हुई और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म का नाम है द ट्रेन, आवाज़ लता मंगेशकर की है। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत आरडी बर्मन का है। पसंद आप सबकी है। प्रमिलागंज आलोड जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। और सिंहपुर बड़ा से राजेश नीमा, संगीता, भावना और प्राची नीमा।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के 11 वर्ष पूरा होने पर इसका असर जीवन के हर क्षेत्र में दिख रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिवनी जिले में राज्य स्तरीय धान महोत्सव में शामिल होंगे। इस दौरान वे 494 करोड़ रुपए लागत के 629 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG रामजी अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया। प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रवेश प्रक्रिया ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सत्र 2026-27 में अब तक 5,48,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। इनमें से 2,93,000 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त कर लिया है। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज जम्मू में तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण और RFID कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रदेश में मॉनसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बालाघाट और डिंडोरी में आज अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। मुकाबले पर बारिश का साया है, करीब 80% बारिश की संभावना जताई गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 5:33, 6:30 और रात 8:15।

रात 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में, चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम। आप सुनेंगे रात 9:30 पर, इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। केकड़ा ये नाटक आप सुनेंगे रात 10 बजे, प्रस्तुत करता है दानिश इकबाल। और राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे अमित मलिक का वायलिन वादन राग जोग। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर गजराज सिंह वर्मा के साथ की गई भेंटवार्ता, जैविक खेती से आर्थिक लाभ और स्वस्थ पर्यावरण। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, वेब्स ओटीटी और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की संध्याकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार युवा साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा रेडियो प्रोग्राम विवाणी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राज। दोस्तों, आज महीने की पहली तारीख है, 1 जुलाई। 1 जुलाई का नाम सुनते ही हमारे जहन में कितना कुछ याद आ जाता है ना, जैसे स्कूल का पहला दिन, या फिर नौकरी का पहला दिन, या फिर कहें तो कॉलेज का पहला दिन। दोस्तों, आज 1 जुलाई है और बरसात की हल्की फुहारें, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और नई उम्मीदों के साथ एक बार फिर स्कूलों की रौनक लौट आई है। कहीं बच्चे नई यूनिफॉर्म पहनकर उत्साहित हैं, तो कोई अपने नए बैग और रंग बिरंगे किताबों को बड़े प्यार से सजा रहा है स्कूल जाने के लिए। लेकिन दोस्तों, आज का यह दिन नए सत्र की शुरुआत तो होता ही होता है। ये दिन हम सभी को अपने बचपन की गलियों में भी ले जाता है। आज हम याद करते हैं उन सुनहरे दिनों को जब हम जिंदगी बहुत ज़्यादा आसान भी थी और हम छोटे थे, हमारे पैर छोटे थे, पर हमारे हौसलों के जो हाथ थे, कंधे थे, वो हमारे उम्मीद से भी ज़्यादा, खुशी से भी ज़्यादा बड़े थे। यूं ये या फिर यूं कह लें कि हमारे माता पिता आखिर वही तो होते हैं जो हम सबसे पहले हम सभी को हमारी ज़िंदगी की या फिर स्कूल की पहली दहलीज पर हमें चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई को हम कई चीज़ों में याद करते हैं। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे होंगे इंदौर में या फिर प्रदेश के किसी शहर में, तो जो महीने की 1 तारीख होती है ना, वो कितना

ना कुछ हमारे जहन में याददाश्त बना देती है। तो 1 जुलाई आज वैसा ही दिन है, तो आप याद कीजिए कि आपका दिन 1 जुलाई के लिए किस लिए खास था, और हमें फिर हमारे पत्र पे लिखकर भी बताइएगा। बहरहाल आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के हमारे जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं उनको भी जान लेते हैं। तो साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है? और दूसरा प्रश्न हमारा है, पौधे अपना भोजन किस प्रकार या फिर किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूं साथियों, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो साथियों, इन दोनों प्रश्नों को आप अंत तक खोज के रखिएगा और सही उत्तर का पता भी लगाइएगा, और नहीं लगा पाते हैं तो मैं आपको अंत तक इन दोनों प्रश्नों के उत्तर बता ही दूंगा। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं कार्यक्रम का यह पहला मस्ती भरा गीत।

दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अभियान की जो केवल पेड़ लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य, हमारे स्वास्थ्य और हमारी आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा हुआ एक अहम विषय है। हम बात कर रहे हैं साथियों वन महोत्सव सप्ताह की। आप सभी ने वन महोत्सव सप्ताह का नाम तो सुना ही होगा। हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य पूरे देश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह हमें प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य, अपने जो भी रूल्स होते हैं उन सभी को याद दिलाता है और हम सभी को एहसास भी कराता है कि हम जो भारत के नागरिक हैं, हमारा जो मनुष्य के प्रति एक कर्तव्य है, हम वृक्ष लगाकर और अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर अपने जीवन और अपने देश के प्रति अपने काम को सार्थक बनाएं। तो दोस्तों, अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए, देखभाल भी करिए और दूसरों को भी प्रेरित करिए। दोस्तों, पेड़ केवल हमें ऑक्सीजन नहीं देते बल्कि ये वर्षा चक्र को संतुलित रखते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं, जैव विविधता की रक्षा करते हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं साथियों। और जब प्रदूषण बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग और जंगलों की कटाई पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुके हैं आज के दौर में, तब वन महोत्सव का महत्व हमारे जीवन में और भी ज़्यादा, या फिर यूँ कह लें कि वर्तमान में और अधिक हमारे जीवन में बढ़ जाता है साथियों। साथियों, जरा सोचिए, यदि पेड़ ना होती तो क्या होता? न शुद्ध हवा मिलेगी, न पक्षियों की चहचहाट सुनाई देगी, न ठंडी हमें छांव मिल पाएगी। और सोचिए, समय से वर्षा भी ना हो तो फिर हमारा जीवन कैसा व्यस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए कहा भी गया साथियों कि एक पेड़ 100 सुखों की जड़। आप सभी सुना ही होगा ये मुहावरा। तो युवा साथियों, हम सभी की भूमिका बन जाती है कि इस अभियान में सबसे महत्वपूर्ण हम अपना योगदान दें। और यदि हर वर्ष युवा अपने कम से कम एक वृक्षारोपण भी करता है अपने जन्मदिवस पर या अपने किसी विशेष त्यौहार पर, तो हम सभी के लिए एक अधिक महत्वपूर्ण और एक प्रसन्नता का विषय बन जाता है कि हम हमारे जन्मदिवस पर या किसी प्रसन्नता के दिन पर एक वृक्षारोपण करते हैं और फिर साल भर उसके देखभाल भी करते रहते हैं, जो कि हमारे गांव में, शहर में, क्षेत्र में हरियाली है तो देता ही देता है, उसी के साथ मन को और हमारे भीतर हमारे आत्म मन को भी शांति प्रदान करता है। तो याद रखिए दोस्तों, पौधा लगाना पहला कदम है लेकिन उसे वृक्ष बनाना हमारी वास्तविक जिम्मेदारी है। वन महोत्सव के दौरान स्कूलों, कॉलेजों, सामाजिक संस्थाओं और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जागरूकता रैलियां, पर्यावरण संरक्षण अभियान और पौधों के वितरण जैसे अनेक कार्यक्रम शहर भर में आयोजित किए जाते हैं। इन अभियानों में युवाओं की भागीदारी न केवल वृक्षारोपण संरक्षण में योगदान देती है बल्कि साथियों समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी मजबूत बनाती है। आप अपने घर, विद्यालय, कार्यालय या फिर आसपास की खाली जमीन पर नीम, पीपल, बरगद, अमलतास, गुलमोहर, अर्जुन, जामुन, आम या फिर अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगा सकते हैं। स्थानीय प्रजातियों के वृक्ष पर्यावरण के लिए अधिक लाभकारी होते हैं और आसानी से विकसित भी हो जाते हैं। आइए इस वन महोत्सव सप्ताह पर हम सभी एक छोटा सा संकल्प लें कि मैं हर वर्ष कम से कम एक पौधा या फिर एक वृक्ष अवश्य लगाऊंगा, उसकी देखभाल जरूर करूंगा या फिर करूंगी। दूसरों को भी वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करेंगे। और याद रखिए दोस्तों, आज लगाया गया एक छोटा सा वृक्ष भी अपने आने वाले वर्षों में हमारे हजारों लोगों की जो पीढ़ी होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी, उन सभी को सुविधा प्रदान करता है, स्वच्छ हवा, छाया और जीवन देता है। प्रकृति की रक्षा करना केवल सरकार या फिर प्रशासन का ही दायित्व नहीं साथियों, ये हम हर आम और खास नागरिक का एक विशेष कर्तव्य बनता है। और साथ ही आप सभी को पता है कि हमारे आकाशवाणी केंद्र के जो हमारा पूरा प्रमाइसिस है, उन सभी में भी आम के पेड़, जाम के पेड़, जामुन के पेड़, इमली के पेड़, इतने सारे मतलब फलों के पेड़ हैं, फूलों के पेड़ भी हैं कि जब हम यहाँ पर आकाशवाणी के केंद्र पर आते हैं अपनी ड्यूटी के लिए, तो हम भी पर्यावरण के इन वृक्षों को देखकर, छोटे छोटे चिड़ियाओं की चहचहाट सुनकर भी हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो आप भी सोचिए, अगर आपके पास भी पेड़ पौधे होंगे आपके घर के पास, आपकी छत पर, तो कितना कुछ सुकून भरा और शांति भरा माहौल होगा। उसी के साथ आप सभी को खुशहाली भी मिलेगी और मन को सुकून भी मिलेगा। तो इस वन सप्ताह महोत्सव पर एक कर्तव्य और एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि कम से कम इस साल एक वृक्ष लगाएं और साल भर उसकी देखभाल करें, उसकी निगरानी भी करें। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर साथियों।

दोस्तों, अब समय है हमारे आज के खास सेगमेंट एक ही फिल्म से में का। आप सभी को पता है साथियों कि प्रत्येक बुधवार हम आप सभी के लिए एक विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत लेकर आते हैं एक ही फिल्म से, जिसमें हम उस फिल्म पर चर्चा करते हैं, उसकी कहानी के बारे में, उसके संगीत के बारे में और उसके अभिनय के कई सारे पहलुओं के बारे में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2000 में रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म की जिसमें एक्शन है, रोमांस है, दर्द है, देशभक्ति है और सबसे बढ़कर है इंसानियत का संदेश। फिल्म का नाम है साथियों बादल। बादल इस फिल्म का निर्देशन किया है राज कंवर ने, निर्माता है सलीम अख्तर, कहानी राज कंवर की है, पटकथा सुतानु गुप्ता और रॉबिन भट्ट ने लिखी है, जबकि संवाद संतोष सरूच के हैं। फिल्म का संगीत दिया है अनु मलिक ने। मुख्य भूमिकाओं में है बॉबी देओल, जिनका किरदार बॉबी देओल ने एक किरदार निभाया जिसका नाम है बादल। रानी मुखर्जी है रानी के किरदार में, वहीं आशुतोष राणा, जयसिंह राणा, अमरीश पुरी, रणजीत सिंह और साथ ही आशीष विद्यार्थी, आलोक नाथ, मयूर कांगो, नीना कुलकर्णी और अन्य कलाकारों ने भी इस फिल्म में अपनी दमदार अभिनय से और कुशलता से इस फिल्म को यादगार बनाया साथियों। तो दोस्तों, ये एक ऐसी एक्शन फिल्म है जिसमें कहानी ये है कि इस एक युवक के बारे में कि जिसका बचपन नफरत की आग में जल गया है, जिसकी जिंदगी बदले की राह पर निकल पड़ी है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां मासूम बादल अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ खुशहाल जीवन जी रहा है। लेकिन एक दिन भ्रष्ट और निर्दयी पुलिस अधिकारी जय सिंह राणा इस शक में पूरे गांव पर हमला कर देता है कि वहां एक आतंकवादी छिपा हुआ है। गांव को आग के हवाले कर दिया जाता है और बादल की आंखों के सामने उसका पूरा परिवार मार दिया जाता है। इस नरसंहार से बचकर बादल को आतंकवादी जीत राम अपने साथ ले जाते हैं। वर्षों बाद वही मासूम बच्चा एक खतरनाक आतंकवादी बन जाता है, जिसके जीवन का एक ही उद्देश्य है अपने परिवार के हत्यारे जय सिंह राणा से बदला लेना।

दोस्तों, गीत से पहले हम बात कर रहे थे बादल फिल्म के बारे में। बस में गुंडों से रक्षा रानी की रक्षा करने वाला युवक बादल धीरे धीरे रानी के दिल में बस जाता है और अपना अपनी जगह भी बना लेता है। लेकिन बादल अपने दर्द और अपने मिशन के कारण उससे दूरी बनाए रखता है। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब साथियों, जब बादल की मुलाकात होती है ईमानदार और संवेदनशील पुलिस अधिकारी रणजीत सिंह से। रणजीत अपराधियों को केवल सजा देने में नहीं बल्कि उन्हें सुधारने में विश्वास रखते हैं। वे बादल को अपने घर में जगह देते हैं और धीरे धीरे पूरा परिवार उसे अपना खोया हुआ बेटा मानने लगता है। रणजीत की बेटियां, उनका परिवार और रानी का निस्वार्थ प्रेम, ये सब बादल के भीतर दब चुकी इंसानियत को फिर से जगाने लगते हैं। पहली बार उसे एहसास होता है कि जीवन केवल बदले का नाम बिल्कुल नहीं है, बल्कि रिश्ते, विश्वास और प्रेम का भी प्रतीक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती साथियों। बादल को पता चलता है कि जिस जयसिंह राणा से वह बदला लेना चाहता है, वही व्यक्ति लालच में आतंकवादियों को हथियार बेच रहा है। वो विदेशी एजेंसी ISI के इशारे पर देश में आतंकवाद फैलाने का षड्यंत्र भी रच रहा है। साथियों, यहीं से फिल्म व्यक्तिगत बदले की कहानी से निकलकर राष्ट्र हित की लड़ाई बन जाती है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के नेता सत्यप्रकाश शिंदे की हत्या की साजिश रची जाती है। जयसिंह बादल को मजबूर करता है कि वो इस हत्या को अंजाम दे, क्योंकि उसने रणजीत सिंह की बेटी सोनी को बंधक बना लिया है। लेकिन बादल अब बदल चुका है साथियों। वो देश के खिलाफ नहीं बल्कि देश के दुश्मनों के खिलाफ खड़ा होता है। वह मंत्री की जान बचाता है, सोनी को सुरक्षित निकालता है और अंततः जयसिंह राणा का सम्मान भी सामना भी करता है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है और आखिरकार बादल अपने परिवार के हत्यारे को खत्म कर देता है। इसके बाद ईमानदार पुलिस अधिकारी रणजीत सिंह के सामने वो स्वयं आत्मसमर्पण कर देता है। और दोस्तों, यही इस फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण संदेश छुपा हुआ है। न्याय बदले से बड़ा होता है। अंततः कानून का सम्मान ही सच्ची जीत है।

दोस्तों, बादल केवल एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि कई गंभीर सवाल भी उठाती है। क्या एक मासूम बच्चा परिस्थितियों के कारण आतंकवाद की राह पर चल पड़ता है? ये आप सभी के लिए एक प्रश्न है। क्या समाज का प्यार किसी भटके हुए इंसान को वापस सही रास्ते पर ला सकता है? और क्या नफरत का अंत केवल प्रेम और विश्वास से ही संभव है? फिल्म इन सभी सवालों का जवाब अपने किरदारों के माध्यम से देती है। अगर अभिनय की बात करें साथियों, तो बॉबी देओल ने एक दर्द भरे, गुस्सेल लेकिन संवेदनशील युवक की भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। रानी मुखर्जी ने अपनी चुलबुली अदाओं से फिल्म में भावनात्मक संतुलन बनाए रखा। वहीं आशुतोष राणा ने जयसिंह राणा के रूप में ऐसा खलनायक प्रस्तुत किया है जिसे दर्शक आज भी याद करते हैं और उनकी जुबान पर उनका नाम बरबस आ ही जाता है। और अगर साथियों अमरीश पुरी ने उनकी बात करें तो उनका ईमानदार, संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी रणजीत सिंह के किरदार को अपनी गरिमामयी अभिनय शैली से उन्होंने अमर बना दिया है। वहीं अनु मलिक का संगीत भी फिल्म की भावनाओं को और गहराई देता है। रोमांटिक गीतों से लेकर जोशीले बैकग्राउंड स्कोर तक संगीत की कहानी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है साथियों। तो दोस्तों, बादल हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितने भी अंधेरी राह

क्यों ना निकल जाए। यदि उसे प्रेम, अपनापन और सही मार्गदर्शन मिल जाता है साथियों, तो वो अपने रोशनी की ओर और अपने सही जीवन की ओर लौट आता है। साथ ही ये फिल्म ये भी याद दिलाती है कि आतंकवाद किसी समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाज और देश के दोनों के लिए विनाश का एक मार्ग है। फिल्म में भारत ने लगभग साथियों 15.38 करोड़, वर्ल्ड वाइड स्तर पर करीब 22.8 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया था। उस साल की ये फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली और हिट रहने वाली फिल्म थी। तो दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के इस खास सेगमेंट को यहीं विराम देते हैं और सुनते हैं इसी फिल्म का ये अंतिम गीत।

दोस्तों, हर साल 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, यानी नेशनल डॉक्टर्स डे। ये दिन उन डॉक्टर्स के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक सुनहरा अवसर है जो दिन रात हमारी सेहत के लिए हमारी रक्षा करते हैं। साथियों, आज का दिन हमें भारत के महान चिकित्सक, शिक्षाविद और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में उनका असाधारण योगदान को सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाने की परंपरा शुरू हुई। साथियों, दोस्तों, डॉक्टर केवल बीमारी का इलाज नहीं करते बल्कि मरीज के मन में उम्मीद और विश्वास की एक ज्योति जगा देते हैं। एक डॉक्टर के लिए मरीज समान होता है। कोई भी मरीज हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, चाहे दिन हो या रात हो, त्यौहार हो या छुट्टी, उनकी पहली प्राथमिकता होती है किसी की जान बचाना। साथियों, कोविड-19 महामारी के दौरान कठिन दौर में हमें ये सिखाया कि डॉक्टर केवल वास्तव में समाज के सच्चे योद्धा होते हैं। जब पूरी दुनिया घरों में सुरक्षित रहने की कोशिश कर रही थी, तब डॉक्टर्स, नर्सें, स्वास्थ्य कर्मी उस अस्पताल में डटे रहे। उन्होंने अपने परिवार से दूर रहकर लाखों लोगों का जीवन बचाया। उनका यह समर्पण हमेशा याद रखा जाएगा। साथियों, युवा साथियों, स्वस्थ जीवन का निर्माण केवल डॉक्टर की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। यह हम सभी का भी एक मौलिक कर्तव्य है। यदि हम संतुलित भोजन करें, नियमित व्यायाम करें और समय पर टीकाकरण करवाएं, स्वच्छ पानी पिएं और स्वच्छता बनाए रखें और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर आपके आसपास या परिवार या फिर कहीं भी डॉक्टर्स हैं या आप उनसे मिलते हैं, तो आप उन्हें आज के दिन धन्यवाद जरूर जाहिर करें, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करें। और उनका समर्पण अनगिनत परिवारों की मुस्कान से जुड़ा हुआ एक अहम विषय है। तो आइए दोस्तों, इस राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर हमें संकल्प लें कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे, डॉक्टर्स का सम्मान करेंगे और समाज में स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी फैलाने में अपना योगदान भी देंगे। आइए चलते चलते इस गीत को भी सुन लेते हैं।

0: दोस्तों हम भी आपसे यही कहेंगे कि अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। फिलहाल हमारा युवाणी कार्यक्रम यही आखिरी नहीं है, हम कल फिर पुनः आप सभी के लिए हाजिर होंगे नई उमंग, नई जानकारी और रोचक तथ्यों के साथ। फिलहाल अब हमें दीजिए इजाजत, हमें हो चला है आप सभी से विदा लेने का। हालांकि आप सभी को आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर भी दे देते हैं साथियों। आज का हमारा पहला प्रश्न था कि भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है, तो उसका सही उत्तर है बरगद। और आज का हमारा दूसरा प्रश्न था पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो उसका सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। उम्मीद है आज का युवाणी कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। अब दीजिए अनुमति अपने साथी राज को। नमस्कार।
1: अभी आपने सुना युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी, ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आगाज हम कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है महाराज।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और लीजिए अब सुनिए बरखा फिल्म का ये गीत जिसके बोल राजेंद्र कृष्ण ने लिखे हैं, चित्रगुप्त का संगीत है और आवाज़ है लता मंगेशकर की।

राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गीत अभी आपने सुना, और राजेंद्र कृष्ण का ही लिखा हुआ एक और गीत हम आपको सुनवाते हैं जिसका संगीत आर.डी. बर्मन ने दिया है। आवाज़ एक बार फिर से लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम है

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: इसी के साथ फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
3: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
3: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
3: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
3: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं, और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
2: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
3: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ। श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए, हिंट है ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
2: जी,
3: मूल्यवान भी है,

0: रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
1: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
0: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है। तो विमलेश जी, आप जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
1: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
0: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं। ये क्या बात हुई?
1: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
0: तो ये बात है। शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं।
1: जी,
0: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
1: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
0: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ, तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
1: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
0: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते हैं। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए। इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं, वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
1: जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोदकर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
0: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
1: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
0: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
1: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है।
0: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं, तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं, लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है।
1: जी,
0: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
1: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
0: जी, तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
0: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक

0: केक पाठ पर आधारित है जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
1: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें।
5: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
5: आह, क्या बात है
6: मैम।
5: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
5: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
5: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहां कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियां होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
5: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
5: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
5: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
5: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
5: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
6: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
5: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
3: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
5: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम,
6: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
5: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
6: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
5: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में

0: इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
1: सॉइल इरोजन
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही हैं।
2: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
1: हाँ, जी मैम। यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
3: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
4: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
2: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
2: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
2: ओह।
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
1: जी मैम।
2: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
1: बहुत अच्छी लगी।
2: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
1: धन्यवाद
5: मैम। साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
2: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
6: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई। नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बानगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूं कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है? इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ।
2: कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
3: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
2: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
3: अरे वाह, ये
2: इस समय
3: है?
2: कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
3: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
2: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है बोलो।
3: मैं बोलूं? अच्छा अच्छा, देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी जहाँ खेती

0: करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
1: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
2: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो
1: अच्छा। और मुखिया जी क्या फाके करे, मैं कहता हूँ भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से।
3: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
1: मुखिया जी, मुखिया जी!
4: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
5: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि
4: ओ, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
5: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
4: तो भरने दो।
5: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
4: अरे तो जाने दो।
5: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
4: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
5: लेकिन मुखिया जी,
4: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
5: जी मगर
4: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
6: मुखिया जी,
4: अब क्या है?
6: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
4: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
2: मुखिया जी, मुखिया जी,
4: चैन नहीं लेने देंगे, अब क्या है
2: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
4: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
2: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
4: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो, इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
2: जैसी आपकी मर्जी।
4: अरे ये तो सचमुच चला गया, कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? हाँ, छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर मेरे इस मकान की 3री मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा है। ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा। मैं वो पेड़,

0: बांगुई, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। लीजिए कार्यक्रम संबंधी एक आवश्यक सूचना सुनिए। श्रोताओं, इस गुरुवार यानी कल 2 जुलाई 2026 को सुबह 10:35 से लेकर 11 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है HIV/AIDS का संक्रमण और उससे बचाव के उपाय। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर अंकेश गुप्ता ICU विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम को आप FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं, साथ ही मोबाइल ऐप NewsOn AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट कीजिए। कल दिनांक 2 जुलाई 2026 को सुबह 10:32 से लेकर 11:02 तक हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। जी हाँ, 2710223 और 2710224। इंदौर शहर का STD कोड है 0731। प्रसारण समय होगा कल सुबह 10:32 से लेकर 11:02 तक विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप NewsOn AIR पर भी इसे सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल।

इसी के साथ सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। कलाकार हैं स्नेहलता भटोरे और साथी, इनसे सुनिए निमाड़ी लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत, कलाकार थी स्नेहलता भटोरे और साथी इनसे आपने सुने निमाड़ी लोकगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब से थोड़ी देर बाद यानी कि ठीक 7 बजे हम आपको सुनवाएंगे हिंदी समाचार और 7:10 पर हम आपको सुनवाएंगे प्रादेशिक समाचार। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे और प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सभी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और 9,80,000 का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरे के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति

0: की समीक्षा की गई। डॉ साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यह यात्रा 3 जुलाई से नुनवान पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश बिहार उत्तराखंड ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले शीर्ष कार्यक्रमों की जानकारी।

अब से कुछ देर बाद यानी 7:20 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। इसमें आप सुनेंगे जननी सुरक्षा योजना और डॉक्टर्स डे पर की गई आज की बात, सफेद मूसली की खेती पर भेंटवार्ता आपको सुनवाएंगे भोला वाकतरिया से। साथ ही इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे घरेलू व्यंजन और लोक संगीत। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत हम लेकर आएंगे 9:15 पर। दिल ने फिर याद किया ये कार्यक्रम होगा 8:15 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे 9:30 पर। कार्यक्रम चर्चा का विषय है। 10:00 हम आपको सुनवाएंगे नाटक पथरीले पल। इसके निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता होंगे संजीव मालवीय। 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे वायलिन वादन। कलाकार होंगे पंडित कमल कामले। इनसे सुनिएगा राग बागेश्री। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक आवश्यक सूचना। श्रोताओं, इस गुरुवार यानी कल 2 जुलाई 2026 को सुबह 10:32 से लेकर 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है HIV एड्स का संक्रमण और उससे बचाव के उपाय। आप श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर अंकेश गुप्ता ICU विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट कीजिए। कल यानी गुरुवार को दिनांक 2 जुलाई 2026 को सुबह 10:32 से लेकर 11:02 तक आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फ़ोन नंबर एक बार फिर हम आपको बताते हैं 2710223 और

1024। जी हाँ, 2710223 और 2710224। इंदौर शहर का एसटीडी कोड है 0731। 0731 ये एसटीडी कोड है। इंदौर शहर से बाहर के जो श्रोता हमें कॉल करें, कृपया एसटीडी कोड 0731 अवश्य लगाएं। तो फ़ोन करना न भूलिएगा। कल गुरुवार को यानी दिनांक 2 जुलाई 2026 को सुबह 10:32 से लेकर 11:02 तक विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का यानी हेलो डॉक्टर का विषय होगा HIV/AIDS का संक्रमण और उससे बचाव के उपाय। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया शासन और नागरिक सशक्तिकरण की परिवर्तनकारी पहल। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG राम जी अधिनियम लागू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिवनी में धान महोत्सव में सैकड़ों करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। और प्रदेश में मानसून सक्रिय, उज्जैन बालाघाट सहित 7 जिलों में झमाझम बारिश, बालाघाट डिंडोरी में कल अति भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरा होने पर इसे शासन और नागरिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में परिवर्तनकारी पहल बताया। उन्होंने कहा कि इसने शासन को अधिक पारदर्शी, कुशल और नागरिक केंद्रित बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने नवाचार की संस्कृति को गांव और छोटे शहरों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि इससे AI, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे तकनीकों में भी तेजी से विकास हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरा होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी की पहल से शुरू हुई देश की बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश में 81% डिजिटल भुगतान UPI के माध्यम से हो रहा है। 2,18,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में भारत नेट सेवा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि AI क्षेत्र के लिए 45,000 से अधिक GPU स्थापित किए गए हैं और देश में 2,23,000 से अधिक स्टार्टअप शुरू हुए हैं। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG राम जी अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया है। सरकार ने इसके लिए 95,600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने आज द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाली 6-लेन सड़क सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 6,969 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानपुर कबराई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है, जिसकी लागत 7,145 करोड़ रुपए है।

0: इससे कानपुर कबरई का सफर 3.5 घंटे से घटकर 1.5 घंटे रह जाएगा। ये परियोजना भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है और सागर भोपाल तक कनेक्टिविटी मजबूत करेगी।
1: प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर हमीरपुर महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि यह समारोह विद्यार्थियों के वर्षों के समर्पण और परिश्रम की सुखद परिणति है। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से समाज का ऋण चुकाने और वंचित वर्ग के सशक्तिकरण में योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना युवाओं की ऊर्जा और प्रतिबद्धता से ही साकार होगी।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज सिवनी जिले में आयोजित धान महोत्सव कार्यक्रम में करीब 145 करोड़ रुपए की लागत के 43 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। डॉ. यादव ने इस मौके पर करीब 350 करोड़ की लागत से 586 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कोदो कुटकी उत्पादक किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से करीब 3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि अंतरित की। ये राशि 1,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से दी गई है। इस मौके पर डॉ. मोहन यादव ने कहा,
3: मध्य प्रदेश में पहली बार कोदो कुटकी खरीदने का अभियान भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। जब मैं कोदो कुटकी की बात कर रहा हूँ, इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचल के सभी श्रमिक भाई बहनों के लिए ग्राम पंचायत विभाग के माध्यम से, हमारे मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी के माध्यम से 16,000 से अधिक श्रमिक भाई बहनों के लिए 365 रुपए की राशि अंतरित की जा रही।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़वानी जिले के तलून में खाटू श्याम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और 21 कुंडीय महायज्ञ कार्यक्रम को मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बड़वानी और निमाड़ की धरती संतों और लोक परंपराओं से समृद्ध रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मंदिर सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का प्रतीक बनेगा। राजस्थान के दौसा जिले में कल रात दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। मरने वालों में प्रदेश के कई यात्री शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने राजस्थान सरकार से संपर्क बनाए रखते हुए प्रभावित यात्रियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की बात कही। प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर, सशक्त और रोजगार उन्मुखी बनाना जरूरी है। मंत्री ने जल गंगा संवर्धन अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि PM जनमन के तहत प्रदेश में 1,44,000 से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं और प्रदेश इस मामले में देश में प्रथम स्थान पर है। मंत्री ने पंचायतों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश भी दिए। विदिशा जिले में हृदय रोग से पीड़ित 2.5 माह की मासूम अवनी को PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से अहमदाबाद भेजा गया। अवनी का उपचार आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क होगा। टीम ने बच्ची को उसके माता पिता सहित सुरक्षित भोपाल एयरपोर्ट पहुंचाया, जहां से उसे अहमदाबाद रवाना किया गया। PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी जीवन रक्षक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के तहत राज्य के गंभीर रूप से बीमार या दुर्घटना मरीजों को बेहतर और उच्च स्तरीय इलाज के लिए बड़े अस्पतालों तक हवाई मार्ग से पहुंचाया जाता है। बात खेल की। मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी के खिलाड़ी मोहम्मद कोनेन दाद का चयन भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम में हुआ है। टीम 5 से 18 जुलाई तक बेल्जियम दौरे पर रहेगी। मोहम्मद कोनेन दाद फॉरवर्ड खिलाड़ी के रूप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे।

भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन आईसीसी की टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने करीब एक साल से नंबर वन पर काबिज अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ा है। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड नंबर वन बल्लेबाज बने हैं, जबकि इंग्लैंड के जो रूट तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड के डेरल मिचेल पहले और शुभमन गिल दूसरे स्थान पर हैं। बात मौसम की, प्रदेश में मॉनसून एक्टिव है। आज उज्जैन, बालाघाट, कटनी, सीहोर, उमरिया, धार और मंडला समेत 7 जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल और सागर संभाग को मॉनसून पूरी तरह कवर कर चुका है, जबकि उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में दस्तक बाकी है। मौसम विभाग ने कल के लिए बालाघाट और डिंडोरी में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दादा ईश्वरदास रोहाणी की स्मृति में गौरव शिखर सम्मान का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यहां मुख्य अतिथि रहे। खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत पॉलीथीन लाइए चाय पीजिए अभियान शुरू किया है। बस स्टैंड स्थित सार्वजनिक शौचालय परिसर में पॉलीथीन जमा करने वालों को निःशुल्क चाय दी जा रही है। डॉक्टर्स डे पर भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सक कल्याण पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं आगरमालवा में इस मौके पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आम, जामुन और नीम जैसे औषधीय पौधे रोपित किए गए। राजगढ़ में कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने मानसून सत्र के दौरान रेत उत्खनन पर रोक लगाई। 1 अक्टूबर तक जिले की समस्त रेत खदानों में खनन कार्य पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। बैतूल जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत करीब 1,65,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। और शिवपुरी शहर के मनियर क्षेत्र में अवैध कॉलोनी निर्माण पर प्रशासन ने कार्यवाही की। राजस्व टीम ने JCB से अवैध रूप से बनाई गई सड़कों को हटाया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनवा वाली अपनी सगली बहन होन न साथ तेज अपना सपला भाई होन के भारती की राम राम। बहन होन आज डॉक्टर दिवस भी है। बहन भगवान ने अपना के जिंदगी दी है तो उन्हीं जिंदगी के बचाने वालों डॉक्टर ही हो गए हैं। डॉक्टर के सम्मान देने सारू हर बरस 1 जुलाई के डॉक्टर दिवस मनावे है। कसी भी परिस्थिति होवे डॉक्टर अपनी सेवा देने वाला वालों की लाइन में पहला लगने वालों योद्धा होवे है। ये अपनो जीवन अपना मरीज का स्वास्थ्य सारू समर्पित करे है। वी अपनो टेम मरीज का इलाज में लगावे है। भारत में पहलो डॉक्टर दिवस 1991 में मनायो गयो थो। अपना देश का प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र राय को जन्म 1 जुलाई के हुओ थो और उनाज 1 जुलाई के उनको निधन भी हुओ थो। एका सारू योदन राष्ट्र का स्वास्थ्य का क्षेत्र माए उनको योगदान की याद माए मनायो जावे है। वी एक प्रख्यात चिकित्सक होने का साथ साथ वी एक स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद भी था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बखत उनने महात्मा गांधी को साथ दियो ने उनके भारत रत्न से भी सम्मानित करियो थो। डॉक्टर दिवस तो आज है ही साथे साथ बेणोन आज अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस भी है। आज का दिन फल को महत्व पोषण मूल्य ने अपना स्वास्थ्य माए फल की कई भूमिका होवे इखे समझाने ने मनक के फल खाने सारू प्रोत्साहित करने का उद्देश्य से आज का दिन फल दिवस मनावे है। इखे मनाने को योज मतलब रेवे कि मनक के प्राकृतिक ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने सारू प्रेरित करनो। फल का पोषण ने स्वास्थ्य लाभ का बारा में जागरूकता के बढ़ानो। छोरा छोरी होन के जंक फूड की बजाय फल खाने सारू आकर्षित करनो। फल की खेती ने किसान भाई ने जैव विविधता का महत्व के उजागर करनो। बेंड अपन फल की बात करा तो इमें विटामिन मिनरल्स फाइबर घनो होवे है जो पाचन तंत्र के मजबूत करे है ने रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ावे है। कदी रोज दन फल खावा तो शक्कर की बीमारी मोटापो हृदय रोग जैसी बीमारी को खतरो कम होवे है। भले ही वी नाना नानी होवे या अपना बड़ा बूढ़ा मनक या अपने बेण होन सगला सारू फल खानो घनो जरूरी होवे है। बेण होन आज का दिन अपना खाना माए कम से कम 1-2 फल खे खाना। बच्चा होन के फल खाने का मजेदार ने रोचक तरीका सिखावा। आज जो अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस है नी वी स्वादिष्ट ने पौष्टिक फल का प्रति सम्मान जताने को दन है। जबकि यो अपना के प्रकृति स्वास्थ्य ने जीवन शैली का भी संबंध के समझाने को भी अवसर देवे है। तो बेणहोन क्यों नहीं आज दन से अपन अपना और या प्रेरणा लेवा कि अपनी जिंदगी में फल खाना ने रोज दन अपन जो मौसम हो नहीं ओका अनुरूप फल खाने को मतलब फल खावांगा भले ही कहीं भी होवे। साथ आज महाराष्ट्र में कृषि दिन मनावे है। हर बरस 1 जुलाई के इखे मनायो जावे है। यो दिन राज्य में हरित क्रांति का जन्म बसंत राव नायक की याद में मनायो जावे है। ने देखो नी हर कार्यक्रम की शुरुआत अपना गणेश जी के मनाने से हुए तो क्यों नहीं अपन भी गणेश जी के मनावा। अने सुना बेन ममता शर्मा को गायो यो लोकगीत।

0: बेणुन अभी अपन ने बेण ममता शर्मा को गायो यो लोकगीत सुनियो ने देखो ने मीठा नीम की बात करा तो मीठो नीम चिखे अपन अपनी भाषा में कड़ी पत्तो भी केवा यो औषधीय गुण को खजानो होवे है। साथेज इमें आयरन ने विटामिन घनो होवे है। इखे रोज दन अगर उपयोग में लेवा तो पाचन में सुधार भी करे है ने साथेज बाल का गिरना के भी यो रोके है। यो बाल सारू तो वरदान होवे है ने साथे सफेद बाल होने से भी अपना बचावे है। तो इका सारू अपना के जरूरी होवे है कि अपन इको तेल बनाई ने रखा या फिर इको लेप बनाई ने अपना बाल में लगावा। तेल बनाने सारू कहीं नहीं करना है, या तो तुम सरसों को तेल ले लो एक कटोरी, या फिर चाहो तो तिल्ली का तेल में भी इका तेल के बनाई सको हो। तो तिल्ली या सरसों का तेल एक कटोरी ली ने ओके गरम करी लेवा और उमें फिर अपन कम से कम 12 से 13 कड़ी पत्ता ना की देवा। चावा तो अपनो जो मेथी दाना हुए वे कलौंजी और साथे गुड़हल को जो फूल होवे नहीं वो भी इमें नाकी ने, और जब थोड़ा ये गर्म हो जाए अच्छा उबली जाए उसका बाद एक ठंडो करी ने शीशी में भरी लेवा और एक लगावा। तो देखा कि अपना बाल झड़ना बंद हो जावेगा। साथेज कदी माथो दुखे तो मीठा नीम का फूल के पीसी लेवा ने इखे माथा में लगावा तो माथो दुखनो ठीक हो जावेगो। मुँह से में कदी बास आईरी है तो मीठा नीम के 2-3 पत्ती के चबई ने खावा, मुँह की बास दूर हो जावेगी। कब्ज हो जावे तो 10 से 12 मीठा नीम का पत्ता को रस निकाली लेवा ने उतरोज शेद मिलाई ने उखे छाटी लेवा। देखांगा 2-4 दिन में कब्जे जो है वो दूर हो जाएगी। 10 से 15 मीठा नीम का पत्ता को रस 2-3 दिन पीने से पेट का जो कीड़ा होवे नहीं वे भी खत्म हो जावे है। तो यह तो हुई गई मीठा नीम की बात ने आप सुनी लेवा या भेंट वार्ता जिको विषय है सफ़ेद मूसली की खेती। इका बारा में अपना के जानकारी दे रिया है भोला वाकतरिया ने, इनका से बातचीत करी रही है तृप्ति। तो सुना या भेंट वार्ता।
1: किसान भाइनों समय समय पर अपन अपनी चौपाल से नया नया किसान भाई ने बुलावा बात करा उनका से कि उनका खेत नमा आजकल कई चली रहे न। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात छे कि युवा जो वर्ग छे हमारा भारत को वो भी किसानी में अपनो दिलचस्पी ले रहे और किसानी का नया नया तरीका से खेती करी कर न देश की न अपनी खुद की भी अच्छी प्रगति करी।

0: राज तो असाज एक उन्नत कृषक भोला वाकतरिया अपना साथ जुड़ेल छे जो ग्राम उन्हेल उज्जैन से छे। भोला भाई आपको बहुत बहुत स्वागत छे। राम राम।
1: राम राम मैडम और सभी किसान भाइयों को भी मेरा नमस्कार और आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये आज मंच आमंत्रित किया।
0: नहीं आपने इतनी मेहनत करी ना आपकी मेहनत काई किनी फसल पर करी रहा है हमारा किसान मेहनत का आप ये बताओ।
1: आजकल किसान जो हम पारंपरिक तरीके से जो खेती करते आ रहे हैं मानसून में हम सोयाबीन लगाते हैं मक्का अरहर लगाते पर आजकल देखा जा रहा है कि इनकी मार्केट वैल्यू फिक्स नहीं रह पा रही है नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है किसान घाटे में चला जाता है। तो हमें कुछ हट के कुछ नई फसल लगानी होगी जिसकी लागत कम हो और मंडी का जो भाव है वो बहुत अच्छा मिले। तो मैं इस बार सफेद मूसली का मैंने लगाई है और अच्छा। सफेद मूसली एक औषधीय फसल है।
0: हाँ तो अच्छा बड़ी अच्छा काम कर रहे हो आप ना। कितना एकड़ में लगाई एक ही बुआई से लेकर ना एक ही जो बाजार में बेचने जाओ वहां तक की काई प्रक्रिया है हमारा किसान भाई ने के जरा बताओ।
1: जी बिल्कुल ये सफेद मूसली एक औषधीय और ये अभी मानसूनी फसल है ये इसको जून जुलाई में लगाते हैं। वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे सफेद मूसली कंद वर्गीय है इसकी जो बीज होती है वो बीज के साथ साथ इसकी जो जड़ें रहती है वो सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। तो इसके पहले हमें जो रबी की फसल हमने जब कटाई करी थी उसके बाद जायद में गर्मी में अच्छे से खेत की गहरी जुताई कर देवे।
0: अच्छा।
1: गहरी जुताई से इसका ये फायदा रहेगा कि जो हानिकारक जीवाणु जो रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जो मिट्टी की जो एयर कंडीशनल जो रहते हवा का जो प्रवाह होता है वो अंदर अच्छे से हो और फिर वाटर होल्ड कैपेसिटी अच्छे से हो जाए जल धारण क्षमता बढ़ जाए।
0: अच्छा।
1: इसीलिए गहरी जुताई आवश्यक मानी जाती है इसमें।
0: बड़े अच्छा काम करो।
1: उसके पश्चात हमें इसमें खेत तैयारी में गरड़ बनाते हैं। उसके पहले है कि हम उसको खाद डालें तो इसमें आप गोबर की खाद का उपयोग कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट हुआ केचुए की खाद हुआ इस प्रकार के हम कोई से भी खाद ले पर वो ये ध्यान रखे कि वो अच्छे से पकी हुई हो।
0: ना आपने आपका खेत में क्या की खाद डाली?
1: जी मैंने मेरे खेत में घर की गोबर की खाद डाली जो कि एक साल पुरानी पकी हुई थी। उसके साथ ही मैं केचुए की खाद भी तैयार करता हूँ खुद घर पर ही करता हूँ तो उसका भी मैंने उपयोग किया है दोनों का जिससे मिट्टी भुरभुरी हो और हल्की हो जाए जिससे उसकी जल धारण क्षमता अच्छी बने और उर्वरता अच्छी बने।
0: अच्छा तो अब खेत तैयार कर लियो फिर काई करो जाप?
1: जी इस खेत तैयार के बाद हम इसे आते लगाने के लिए हम इसमें बेड बनाते हैं। बेड या किसी कई क्षेत्र में इसे गरड़ के नाम से भी जानते हैं। गरड़ बनाने के लिए किसान भाई आप जो सीड ड्रिल होती है आलू बोने की जिसे आलू प्लांटर बोलते हैं उसकी सहायता से आप गरड़ बना सकते हैं या फिर कोई अन्य मशीनरी हो उसकी सहायता से भी आप गरड़ बना सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखें कि दो गरड़ के बीच की दूरी 20 से 24 इंच होनी चाहिए।
0: अच्छा।
1: और उसकी ऊंचाई 8 से 10 इंच हो ताकि वो अपना कंद अच्छे से जम सके।
0: अच्छा अच्छा न फिर तुम बीज को चयन कैसे करो भाई आप?
1: जी बीज का चयन हम अनुभवी किसान से लेना चाहिए जो इससे 8 से 10 वर्ष से इसकी लगातार खेती कर रहा हो या फिर कोई कृषि विभाग जो है जो हर जिले में तो कृषि विज्ञान केंद्र है तो हम वहां से संपर्क करके इसका बीज ले सकते हैं। इसके कई वेराइटी वाले बीज है जैसे जवाहर सफेद मूसली हुआ जवाहर सफेद मूसली राजविजय सफेद मूसली हुआ इनकी ये अच्छी है जो ट्रॉपिकल अपने इंडिया का जो मालवा क्षेत्र है इसमें अच्छा इसका उत्पादन अच्छा होता है तो हमें इस विश्वास पात्र जगह से बीज लेना चाहिए।
0: अच्छा आपने कहा कि वैरायटी लगाई आपका खेत?
1: जी हमने विजया सफेद मूसली 415 के नाम से होती है वो मैंने लगाई एक अनुभवी किसान से ली थी और उसके लगाने के साथ साथ आप एक बात का ध्यान रखें कि उसके जो कंद के गुच्छे आते हैं वो पूरे के पूरे ना लगाए।
0: अच्छा।
1: उसको आप थर्माकोल कटर जो होता है बहुत शार्प कटर होता है उसकी सहायता से आप उसकी कटिंग कर ले ताकि आपको एक गुच्छे से 3 से 4 बीज मिल जाए।
0: अच्छा,
1: उसके कंद मिल जाए। बस ध्यान ये रखे कि उसका जो सिर जो होता है मूसली का जो हेड उसमें जो जर्मिनेशन के जो उसके हेयर होते हैं वो उसमें डैमेज नहीं होने चाहिए।
0: अच्छा,
1: अगर वो निकल जाते हैं तो फिर आपको जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा तो उसका चीज का ध्यान रखे आप।
0: बुआई का समय विशेष ध्यान रखा तो फायदा ज्यादा होगा।
1: जी जी बिल्कुल क्योंकि यही एक समय है जिसमें आप पूरे सीजन की जो फसल है वो डिपेंड करेगी जर्मिनेशन की।
0: नौका बाद में कई पानी की न कई व्यवस्था रखो जाओ?
1: जी पानी के जैसे तो हम ये अभी बारिश में लगाएंगे तो पानी इसमें बहुत ही कम लगेगा बस अभी जब लगाते हैं तब अभी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो इस चीज का ध्यान रखें कि उसमें थोड़ी देर सुबह और थोड़ी देर शाम को आप पानी दें। पानी देने के लिए आप रेन पाइप या फिर मिनी स्प्रिंकलर जो आते हैं इन्हीं का चुनाव करें।
0: अच्छा।
1: इनकी जो वाटर की जो बूंद होती है पानी की वो बहुत बारीक होती है जिससे कि मिट्टी का कटाव नहीं होगा। अगर आप गरड़ में अगर खुले बाढ़ विधि से या बड़े फव्वारे के द्वारा अगर पानी देते हैं तो उसमें मिट्टी का कटाव होने की संभावना रहती है जिससे कि मूसली का कहीं ना कहीं नुकसान होता है।
0: अच्छा बड़े अच्छे ध्यान रखा जाए आप। अना जब पौधा उगी गयो अपना तैयार हुई गयो फिर वो काम कीड़ा लगने को डर रहे तो फिर ओका कैसे संभालो जाए?
1: आपने बात बहुत सही कही कीड़ा लगने की पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक औषधीय फसल है जो कि खुद कीड़ों से लड़ती है।
0: अच्छा
1: बस आप ये चुनाव करें मिट्टी जो आप लगा रहे हो खेत में उसमें जल भरा होना हो। अच्छा। अगर जल भराव नहीं होगा तो फफूंद भी नहीं आएगी, उसके बाद भी अगर कीड़े तो है आते ही, तो आप इसमें नीम ऑयल का उपयोग कर ले।
0: अच्छा।
1: या फिर जो काव यूरिन जो रहता है उसका उपयोग करें, और कीड़े के लिए हम पहले से इसकी प्रिवेंशन कर लेते हैं, जब हम लगाते हैं खेत में तब इसका बीज उपचार कर ले। DOC अर्थात वेस्ट डिकम्पोजर जो आता है, 20 रुपए की डिब्बी आती है, बहुत छोटी रहती है, लेकिन कम से कम 500 लीटर पानी में हम उसको मिला के उसमें मूसली को अच्छे से 5 मिनट भिगोए, उसके बाद फिर हम जर्मिने सोइंग के लिए ले जाए, तो पहले बीज उपचार कर ले ताकि कोई फंगस ना लगे।
0: बड़ा अच्छा काम करो जी। अना फसल आई जाए तो फिर पतो कसो चलच की पकी गई कि अपन कटाई कर सके?
1: जी बिल्कुल, ये फसल 4 से 5 माह की होती है। इसमें जब 4 से 5 माह में आप देखेंगे तो इसके पत्ते जो हैं वो बिल्कुल अपने आप गिर जाएंगे, तो हमें दिवाली के बाद हम इसको निकाल सकते हैं। निकालने के लिए किसान भाई हाथ के द्वारा भी निकाल सकते हैं, उसके पश्चात आप मशीनरी का उपयोग भी कर सकते हैं, ट्रैक्टर की सहायता से निकाल सकते हैं। अगर ट्रैक्टर की सहायता से आप निकालते हैं तो इसमें ये ध्यान रखें, ट्रैक्टर के जो टायर होते हैं वो बहुत पतले होने चाहिए, तकरीबन 8 इंच या 10 इंच के ही होने चाहिए, ताकि जो हमारी फसल हो उसका कोई नुकसान ना बिगड़े।
0: अच्छा अच्छा। अना फसल अब ले ली तो मतलब कहाँ पर बेचा, अना ले कसा जावा कि नहीं, मतलब कि जड़ काम की हो कि पत्ती की, पूरे पौधे काम को है?
1: जी जी बिल्कुल, इसकी सफेद मूसली की जड़ और बीज दोनों काम की होते हैं। अगर हम जड़ को निकालने के बाद, ये गीला माल होता है जो कि मंडी में नहीं बिकता है, इसको हमें धोकर अच्छे से इसको छिलका निकाल के फिर इसको सुखा के मंडी में ले जाना पड़ता है, इसकी प्रक्रिया काफी विस्तृत होती है। हम जब खेत से निकालते हैं तो इसकी जो मिट्टी रहती है वो आप जितनी हो सके सामान्य रूप से इतनी निकालने के बाद इसको पाल विधि से, जैसे कि मूसली को इकट्ठा कर ले अच्छे से जमा एक जगह पे, जगह का चुनाव करते टाइम ये ध्यान रखें वहाँ पर छाँव ना हो, अगर छाँव में हम मूसली को इकट्ठा करके पाल लगाएंगे तो फंगस आ जाएगी, इसलिए कड़क सूखी जगह पे हम, या फिर घर की छत हुई या फिर जो पक्की जगह जो रहती है हमारे खेत के पास जो मेड़ वगैरह रहती है अच्छी मुरम वाली, वहाँ पे इसको डाले। बस ये ध्यान रखें कि सफेद मूसली जब इकट्ठा कर दे उसकी ऊंचाई 1 से 1.5 फीट नहीं होनी चाहिए।
0: अच्छा।
1: बस ये विशेष बारीकी की ध्यान है, ये अनुभव वाले जो किसान रहते हैं उन्हीं से मिलती है, बाकी ये इसने प्रैक्टिस जो करते 10-15 साल तभी ये पता चलता है कि जो बारीक क्वालिटी जो मिलती है वो यहीं की जो होती है। इसके पश्चात पाल में आप डाले और पाल में 10 से 12 दिन तक ढकी रहने दे, बिल्कुल एयर टाइट। इसके पश्चात आप जब 12 दिन बाद आप उसकी पाल को ओपन करोगे, खोलोगे, तो आप देखेंगे कि सफेद मूसली का छिलका बिल्कुल आसानी से निकल जाए, जैसे अपन पेन का ढक्कन निकालते हैं।
0: अच्छा।
1: बिल्कुल ऐसे ही निकल जाए, कुछ भी मेहनत नहीं लगेगी। उसके बाद आप छिलका निकलने के बाद तुरंत आप इसको पानी में डाल दे और 1-2 पानी से अच्छे से इसको 1-2 मिनट तक अच्छे से हाथ से धोए, किसी मशीनरी से नहीं धोए। अगर आप मशीन से धोते हैं तो इसमें जो उसका जो रहता है सफेद मूसली का जो क्वालिटी रहती है वो डैमेज हो जाती है और उसका जो घिसाव भी हो जाता है, तकरीबन 30% तक मूसली मशीन से घिसा जाती है। इसीलिए पाल विधि का चुनाव करें जिससे मूसली का नुकसान भी ना हो और सफेदनेस अच्छे, क्योंकि व्हाइटनेस जितनी ज्यादा रहेगी मंडी का भाव किसान को उतना ही अच्छा मिलेगा।
0: बड़ी अच्छी बात बताई आपने। ना आप कह रहे थे कि अनुभवी किसान, तो आपको अनुभव भी कई कम उम्र छे लेकिन अनुभव अच्छे छे आपको, जो आपने इतना अच्छा तरीका से इन बात के बताया कि धौली मूसली का निकाला कसा। अने एक बाजार कहाँ मिलेगा, अपना किसान कैसे एक बाजार तक पहुंचे?
1: जी बाजार के लिए एक औषधीय फसल है, अब इसको औषधीय बाजार या ड्राई फ्रूट में भी इसका उपयोग होता है। तो आप हमारा मालवा जो क्षेत्र है इसमें आप नीमच मंडी औषधि की मंडी है वहां पे आप इसको बेच सकते हो। अगर आप मालवा क्षेत्र से दूर है या MP से बाहर, आप दिल्ली का सदर मार्केट में भी इसकी सेलिंग हो जाएगी या फिर लखनऊ में भी इसका बाजार है। ये 3 सबसे बड़े बाजार है जहाँ पर इसको हम मंडी में आसानी से बेच सकते हैं और काफी अच्छा हमें भाव मिलता है सफेद मूसली का।
0: तो कितना कहीं मुनाफा हो जाता है हमारा किसान भाई ने का अंदाजा से?
1: जी इसका मुनाफा हर साल मंडी के भाव पे डिपेंड करता है, क्योंकि सफेद मूसली 1 बीघे से तकरीबन 10 से 12 क्विंटल निकलती है, ये एवरेज है, क्योंकि मौसम ने साथ दिया, कैसी बारिश हुई, कीट व्याधि कैसे क्या लगे, हमारी खेत की मिट्टी कैसे क्या, इसी हिसाब से 10 से 12 क्विंटल गीला माल निकलता है। अगर हम इसको धो के छिलका निकाल के सुखाएंगे तो ये 2 से 2.5 क्विंटल बच जाए, तकरीबन 80% तक माल इसका सूख जाएगा। लेकिन जो 80% सूखने के बाद 20% बचा है उसका भाव अभी के हिसाब से 1,60,000।
0: अच्छा अच्छा।
1: पर क्विंटल, इसीलिए से कहा गया सफेद सोना,
0: सफेद
1: व्हाइट गोल्ड, इसीलिए कहा गया।
0: बिल्कुल सही बात छे। तो अरु कई आप हमारा किसान महीने के चलते चलते कहना चाहोगे, कई अपना जो विचार छे देना चाहोगे जेका से कि वो अच्छी उन्नत कृषि करी सके?
1: जी मैं किसान साथियों को यही कहना चाहता हूँ कि आप खेती में बहुत अनुभवी हैं, जो परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं उसमें नवाचार का उपयोग करें, क्योंकि नवाचार आज के समय के अनुसार बहुत जरूरी है। किसान है अब देश की रीढ़ की हड्डी है, तो उन्हें भी कुछ नई फसल साथ में लगाना चाहिए, परंपरागत तरीके से मिश्रित खेती जिसे बोलते हैं।
0: अच्छा।
1: वो करना चाहिए, मैंने भी 1 बीघे में लगाई है और इसका काफी अच्छा मुनाफा है, लागत बहुत कम है, बस मजदूर और बीज के लगता है, दवाई ना के बराबर लगती है, पानी भी बारिश में मिल जाता है और मंडी

0: भाव भी बहुत अच्छा मिलता है।
1: तो बोला भाई आपने इतनी अच्छी बात हमारा किसान भाई ने का बताई कि नवाचार अपनाई का ना नई नई फसल ना उगाई का कम लागत में अधिक मुनाफा हमारा किसान भाई
0: जी
1: ले सकच। तो आप हमारी चौपाल पाया ने इतनी अच्छी जानकारी दी। भोला भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी
1: राम राम।
0: धन्यवाद। राम राम।
2: बेनवन अभी अपन ने सफेद मूसली की खेती एका बारा में जानकारी सुनी। जानकारी दी रहा था भोला वाकतरिया ने, उनका से बातचीत करी थी तृप्ति ने। देखो नी कृषि उपज मंडी समिति सहयोगिता गण से मंडी का भाव भी आ गया है, तो अपना किसान भाई भाई बहनों उनके भाव बता देवा। डालर चना जी के आवक रही 3,141 क्विंटल, भाव रहो 5,500 से 8,965 ने, मॉडल भाव रहो 7,100 रुपया। मिर्ची जी के आवक रही 11 क्विंटल, भाव रहो 10,101 से 15,200 ने, मॉडल भाव रहो 15,700। उड़द जी की आवक रही 1 क्विंटल, भाव रहो 8,000, एका तीनों ही भाव 8,000 रहा। चना जी की आवक रही 138 क्विंटल, भाव रहो 3,100 से 7,300 और मॉडल भाव रहो 3,100। सोयाबीन जी की आवक रही 825 क्विंटल, भाव रहे 4,000 से 6,850 ने, मॉडल भाव रहे 6,760 रुपये। गऊ जी की आवक रही 1,631 क्विंटल, भाव रहे 2,332 से 3,131 ने, मॉडल भाव रहे 2,500। सरसों जी की आवक रही 1 क्विंटल, भाव रहे 5,000, एका मॉडल भाव और अधिकतम भाव भी यही रहो। तिल्ली जी के आवकरी 1 क्विंटल, भाव रहो 6,490, एका भी मॉडल भाव और अधिकतम भाव यही रहा। मक्का जी के आवकरी 1 क्विंटल, भाव रहो 1,881, मॉडल भाव भी यही रहो और अधिकतम भाव भी यही रहो। बटला जी की आवकरी 8 क्विंटल, भाव रहो 1,710, अधिकतम भाव रहो 2,954 ने, मॉडल भाव रहो 1,710। धनिया जी की आवकरी 1 क्विंटल, भाव रहो 9,200, मॉडल भाव और अधिकतम भाव भी यही रहो। तुअर की दाल जी की आवकरी 36 क्विंटल, भाव रहो 5,595, अधिकतम भाव रहो 6,500 और मॉडल भाव भी यही रहो। मूंग जी की आवकरी 62 क्विंटल, भाव रहो 4,800 से 7,460 ने, मॉडल भाव भी यही रहो। राजमा जी की आवकरी 28 क्विंटल, भाव रहो 4,860 से 10,705 ने, मॉडल भाव भी 10,507 रहो। मैं अब सुनी लेवा बेन उषा राय कुमार को गायो यो लोकगीत।

0: बेन अभी अपन ने बेन उषा रायकवार को गायो यो लोकगीत सुनियो ने अब सुना कि अपनी जो बेन होने वो चावल से कसे अपना मुंडा पेन अपना जो बाल है उमे निखार ले सके है तो इका बारा में जानकारी दे रही है मनीषा कुकरेजा। तो सुना चावल से कसे लाए निखार।
1: सभी बहनों को मनीषा कुकरेजा का नमस्कार। आज की हमारी वार्ता का विषय है चावल से सौंदर्य को कैसे निखारे। बहने हम सभी सुंदर दिखना चाहते हैं और सभी बहनें चाहती हैं उनका रंग साफ और निखरता हुआ दिखे। चावल चावल चावल में कई प्रकार के गुण एवं विटामिन्स होते हैं जो हमारी त्वचा को ही नहीं एवं बालों को भी खूबसूरत और जमा बनाते हैं। चावल में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग गुण भी पाए जाते हैं जिसे इस्तेमाल करने से हमारे चेहरे पर झाइयाँ और झुर्रियाँ नहीं आती। ये हमारे मुहासे और डार्क सर्कल्स दूर करने में भी लाभदायक है। आइए आज हम जानते हैं बहने रोजमर्रा के जीवन में रसोई में काम करते हुए अपनी त्वचा एवं बालों को कैसे सुंदर बनाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिन बहनों की रूखी त्वचा है वह चावल का उपटन किस तरह बनाए। 2 चम्मच चावल और 6 बादाम मिक्सर में डालकर पाउडर बना लें और एक डब्बी में भरकर रख लें। जब चेहरे पर लगाएं 1 चम्मच पाउडर में 2 चम्मच दूध डालकर लगाएं। 20 मिनट बाद चेहरा ठंडे पानी से धो लें। अब बात करते हैं तेलीय त्वचा। आजकल प्राय बहनों के चेहरे पर कील मुहासे हो जाते हैं जिससे उनके चेहरे पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं। इसके लिए 2 चम्मच चावल 2 लौंग और 1 टुकड़ा दालचीनी को मिलाकर मिक्सर में पीस लें और पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर में 2 चम्मच गुलाब जल मिलाकर लगाएं। 20 मिनट बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। इससे मुहासों की वजह से होने वाले दाग धब्बे उतर जाएंगे और चेहरा चमक उठेगा। अब बात करते हैं सामान्य त्वचा के लिए। 2 चम्मच चावल में 1/2 चम्मच नमक 1/2 चम्मच शक्कर डालकर पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर में 2 चम्मच दही डालकर लगाएं। इसी पाउडर में शहद और नींबू डालकर लगाने से चेहरे की झाइयाँ भी उतर जाती हैं। तो अपने लिए समय नहीं मिलता वह बने हुए चावलों का इस्तेमाल भी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कर सकती हैं। बने हुए चावल को चम्मच से फेंट कर दही मिलाकर लगाएं तो भी उनकी त्वचा चमक उठेगी। हम त्वचा के साथ साथ बालों की सुंदरता कैसे चावल के पानी से बढ़ाएं जानते हैं। चावल का पानी बालों में इस्तेमाल करने से बाल रेशमी मुलायम घने लंबे मजबूत बन जाते हैं। अब जानते हैं चावल के पानी बनाने की विधि। 2 चम्मच चावल 1 गिलास पानी इसे साथ में 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। छानकर पानी निथार लें। इस पानी को बालों की जड़ों में एवं लंबाई पर लगाएं। 1 घंटे बाद बाल शैम्पू या पानी से धो लें। जिनके बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं या झड़ रहे हैं वह इसमें 1 चम्मच मेथी दाना और 10-15 कड़ी पत्ते डालकर चावल का पानी बनाएं। इससे बाल असमय सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे एवं काले घने और लंबे हो जाएंगे। आज बहनें बालों की किसी न किसी समस्या का सामना कर रही हैं जैसे बालों का रूखापन सफ़ेद होना बार बार उलझ जाना झड़ना और 2 मुहे बाल होना। चावल का पानी लगाकर बहनें बालों की सभी समस्याओं से छुटकारा कुछ ही दिनों में पा सकती हैं। आइए बहनों आज से ही हम चावल से घरेलू सौंदर्य उपचार करें जो कि किफायती भी है और आसानी से उपलब्ध भी है। धन्यवाद।
0: बहनों अभी अपन ने चावल से कसे निखार लाए एक बारे में जानकारी सुनी। जानकारी दे रही थी मनीषा कुकरेजा ने। आज अपन बनावांगा खमण। खमण बनाने सारू अपने बेण होन के कई करनो है। 1 तपेली लेनी है जिमें 1 कप बेसन नाकनो है। बेसन का साथ ही 2 से 3 चम्मच दही थोड़ी सी नाम मात्र हल्दी, ओमेज अपना किए थोड़ो सो नींबू को रस ने, जैसे अपन ने एक कप बेसन लियो है और कभी दो कप बेसन लियो है तो अपना के चार से पाँच चम्मच दही का नाकना है, नींबू को रस भी अपना के दो चम्मच नाकना है और ओमे एक चम्मच थोड़ी सी शक्कर, साथ ही उमें नमक नाकिन है ओके अच्छे से उन्हें मिश्रण के हिलाई लेना है। उसका बाद अपना के एमें धीरे धीरे करीने पानी नाकनो है, असुनी कि एकदम से पानी नाकी दियो, एकदम से नाकांगा तो उमें डल्ला हन पड़ी जाएगा, एका सारू धीरे धीरे पानी नाकिन है अपना के एक को गाढ़ो घोल बनानो है और गाढ़ो घोल बनाईने अपना के 10 मिनट सारू एक है ढाकिने रखी देना है। अब कई करनो है, एक कढ़ाई में अपना के दो कप पानी नाकिने गैस पे राखी देनो है, जब पानी उबलने लगे तो ओका ऊपर अपना के तेल लगाईने एक थाली ऐसी रखनी है कि वो थोड़ा सो कढ़ाई का अंदर तक चली जावे, या फिर तुम्हारे पास खमन बनाने को वो पाठ होवे तो वो भी अपन उपयोग में ली सका हाँ। अब जब पानी उबली गए हो तो अपना के थाली अपन ने ऊपर रखी देवी और ये जो बेसन को अपन ने घोल बनाए थो एमें अपना के कई करनो है, इनो पाउडर इनो जो पैकेट आए नहीं इनो को वो नाकिने ऊपर से थोड़ा सो पानी नाकी देनो है और एक ही दिशा में उसके अपना के चलाते जानो है, जब वो अच्छी तरह से अपनों घुली जावेगो तो तुरंत ही ओके अपना के थाली में नाकी देनो है, जब थाली में नाकी देगा ओका बाद एका ऊपर अपन एक और थाली ढाकी के एक 20 मिनट सारू एक पकावांगा। तब तक बेनोन अपन कई करा एको पानी बने लेवा, तो पानी बनाने सारू एक अपना के कढ़ाई लेनी है ओमें थोड़ा सो तेल नाकनो है और लंबी लंबी हरी मिर्ची काटी के रखी लेनी है और मीठो नीम और थोड़ो सो रई डाली ने एको बघार अपना के करना है और उसमें अपना के शक्कर और पानी नाकी ने बघार तैयार हुई गो। अब 20 मिनट हुई गया है तो अपने देखना खमन अपना तैयार हुई गया, उनके अपन चाकू से जैसा आकार में चाह वैसा काटी के और यो पानी को मिश्रणों का ऊपर नाकी देंगा। बस थोड़ी देर बाद अपनो जो खमन है वे खाने सारू तैयार है। तो भैया बहनों यो बनेगा अपना खमन, ने घड़ी की सुई कह रही है कि कार्यक्रम को भी वक्त हुई चलियो है, तो अपना बहन भैया उनसे ला विदा ने केवा राम राम।

अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम आपको सुनवाएंगे सुर्खियों में। कृपया कुछ पलों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के कार्यान्वयन से ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 1 जुलाई 2026 यानी आज से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो रहा है। ये अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और गाँव के सतत विकास को नई मजबूती देगा। पुराने मनरेगा से किस तरह यह अलग है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और 2047 के विकसित भारत के लिए क्या इसकी भूमिका होने वाली है, इन्हीं सब विषयों पर आज हम सुर्खियों में कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार मनोज जी, धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि आज से जो एक नया अधिनियम अस्तित्व में आ रहा है वह किस रूप में पुराने का स्थान लेगा और नया बदलाव कहाँ कहाँ किस स्तर पर दिखेगा।
3: सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं उसके हिसाब से जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी उसमें बदलाव की जरूरत थी। वो योजना 2006 में लागू की गई थी और आज हम लोग 2026 में हैं
2: जी,
3: तो लगभग 19-20 साल का समय बीत चुका है और इन दो दशकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काफी कुछ बदलाव हुआ है। आमतौर पर मनरेगा को रोजगार मुहैया कराने की एक योजना बताई गई, लेकिन क्या रोजगार मुहैया कराना ही काफी है या हमें उससे आगे भी बढ़ना है। आप ये ध्यान में रखिए कि जब आप कहते हैं कि 1,00,000 करोड़ रुपए, 95,000 करोड़ रुपए, 80,000 करोड़ रुपए आप किसी योजना के तहत खर्च करते हैं, तो क्या केवल ये आप सुनिश्चित करें कि 100 दिन के लिए किसी परिवार में किसी व्यक्ति को रोजगार मिल जाए, या फिर जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसका किस तरीके से आउटपुट आता है, यानी कि उसका असर किस तरीके से दिखता है। तो ये जो नई योजना VBG रामजी है इसका मूल मकसद ये है कि रोजगार के साथ साथ लंबे समय के लिए जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुनियादी जरूरतें हैं उसको पूरी की जाए। अब अगर मैं इसमें कहूँ कि जो प्रमुख बदलाव हैं, तो पांच अगर मैं प्रमुख बदलाव की बात करूँ तो सबसे पहला जो बड़ा बदलाव यह है कि जो गारंटी थी वो पहले 100 दिन की थी, अब वो 125 दिनों की है
2: जी।
3: दूसरा क्या है कि ग्रामीण स्तर की योजना, जैसे एक गांव की जरूरत क्या है, अब देखिए देश में 6,00,000-7,00,000 जितने भी गांव हैं हमारे, हर गांव की अपनी एक भौगोलिक परिस्थिति है, उन भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से वहां पर बुनियादी सुविधाएं किस तरीके से विकसित की जानी है, उसकी मैपिंग कैसे की जाए, वो मैपिंग करने के बाद उस आधार पर उनके लिए जिसे कहा जाए कि ग्राम विशेष के लिए क्या कुछ संभव हो सकता है, ये इसका दूसरा मकसद है। तीसरे की बात करूं तो तकनीक इसमें बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे अगर आप तीन चीजों पर ध्यान रखिए कि एक है कि सैटेलाइट के जरिए एक गांव की एक छवि आपके सामने आ गई, उस छवि के जरिए ये पता चल गया कि इस गांव की बुनियादी जरूरतें क्या हैं, इसमें क्या कुछ कमी है और इसमें और जो है उसमें किस तरीके से सुधार की जरूरत है। मसलन आप सड़क देख लीजिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, आपने सड़क बनवा दी, क्या सड़क बनने के बाद उसमें और ज्यादा बदलाव की जरूरत है, उसमें रखरखाव में किस तरीके से सुधार की जरूरत है, वहां पर कितने हमें रोजगार मुहैया कराने की जरूरत होगी, उन सड़क बनने से आसपास के इलाकों में किस तरीके से बदलाव हुआ, ये सारी चीजें आपके पास एक सैटेलाइट इमेज के जरिए जो है आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा उसी तरफ आप देखें कि GIS मैपिंग में भी वही चीज होता है कि आपको पता चल जाएगा कि उस क्षेत्र विशेष में क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। तो ये जो तकनीक के जरिए है, तकनीक के जरिए आप ग्राम विशेष की जरूरतों को पूरा करने में आप कामयाब हो पाएंगे, ये तीसरा बड़ा बदलाव है। मैं दो और बदलाव की बात कर दूं उसके बाद आपसे अगला प्रश्न लेता हूं। दूसरा यह है कि जो हमारी परिसंपत्ति बने, जो असेट क्रिएशन हो, वो एक लंबे समय के लिए हो, ऐसा ना हो कि आपने एक जैसे एक घर बना दिया और आपने गांव खत्म कर लिया, बल्कि एक सड़क बने, वहां पर बांध बने, वहां पर जो है जो कुछ भी सुविधाएं बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई उसका और ज्यादा विस्तार हो, तो जिसको हम लोग कहते हैं कि ड्यूरेबल असेट का, स्थाई जो परिसंपत्ति है उसका निर्माण हो, और पांचवी जो बात है कि बहुत सारी योजनाएं हैं ग्रामीण स्तर पर, हम देखते हैं कि वो अलग अलग टुकड़ों में चलाई जाती हैं। उसका असर क्या होता है कि आपने सड़क बनाने के लिए एक योजना बनाई, ग्राम उद्योग के लिए आपने एक अलग योजना बनाई, तो दोनों के बीच में कोई समन्वय है कि नहीं कि जहां पर ग्राम उद्योग विकसित हो रहा है वहां पर सड़क का पूरी तरह से निर्माण हुआ है कि नहीं। तो ये जो कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स इसको कहते हैं कि यानी कि सभी योजनाएं एक दूसरे के साथ हाथ मिला करके काम करें। ये पांच खास बातें हैं जो वीवी जी राम जी को एक नए स्वरूप देती हैं और जो कि आज से लागू हो।
2: यहाँ पर आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि तकनीक के माध्यम से केंद्रित होकर काम बेहतर तरीके से होगा। यहाँ पर अहम सवाल ये है कि तकनीक के माध्यम से नियंत्रण ऊपर से नीचे की ओर होगा या गांवों की जो आवश्यकता है उन्हें ध्यान में रखकर ग्राम पंचायत या जो स्थानीय अधिकारी या स्थानीय जो हमारे लोक निकाय हैं उनके माध्यम से वो काम चयनित होंगे।
3: इसके लिए आप अगर 2015 में जब नीति आयोग का गठन किया गया था उसके गठन के समय में एक बड़ी खास बात कही गई थी। उसके गठन में कहा गया था कि हम जो योजनाएं बनाते हैं दिल्ली से बनाते हैं और गांव पे जाकर के थोप देते हैं, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, उसकी जगह पे हमको बॉटम अप अप्रोच करना है, यानी कि निचले स्तर का जो ग्राम पंचायत की व्यवस्था है या जो स्थानीय अधिकारी हैं वो बताएं कि हमारी जरूरत क्या है। अब यहाँ पर आपके पास तकनीक मददगार है, आपने सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए आपने पता करने की कोशिश की, आपने जियो स्पेशल के जरिए पता करने की कोशिश की। एक और महत्वपूर्ण बात लैंड रिकॉर्ड, आप जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपको सड़क बनानी है, आपको जमीन की जरूरत है, अब वो जमीन का खसरा और वो सब जो हम लोग ग्रामीण परिवेश में जिसका काफी महत्व होता है वो हमारे पास किस तरीके से उपलब्ध है। तो आज भी अगर हम कहें कि अगर वो केवल कागजों में है और उसका पूरा रजिस्टर है तो दिल्ली में बैठे हुए किसी व्यक्ति के लिए एक योजना बनाना हो तो उस रिकॉर्ड के जरिए संभव नहीं हो पाएगा। तो वहां पर आपके पास एक तकनीक के जरिए जो आपका डिजिटाइज रिकॉर्ड है वो मदद करेगा। तो ये जो पूरी व्यवस्था है आप इसमें ये समझ लीजिए कि जो निचले स्तर पे जो कुछ भी काम चल रहा है, जो अधिकारी हैं, जो निकाय हैं, स्थानीय निकाय हैं, उनका इनपुट्स भी है और उस इनपुट को तकनीक के साथ जोड़ करके आप एक विस्तृत जिसको कहते हैं ना DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप तैयार करते हैं और फिर उस गांव के लिए जो है वो गांव के समूह के लिए जो है वो आप कुछ काम करते हैं।
2: यहाँ पर आपने पहले ही जानकारी दी कि 100 दिन से बढ़ के 125 दिन हो गया, इससे जो मजदूर हैं या गांव में रहने वाले जो लोग हैं जो इस काम के लिए सामान्यतः अपने आप को उपलब्ध कराते हैं उनकी माली हालत में क्या बदलाव आएगा?
3: दो तीन चीजें हैं। एक तो आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मिनिमम वेज न्यूनतम जो मजदूरी है जिसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की गई है उसके मुताबिक मनरेगा में जो मिनिमम वेज था न्यूनतम मजदूरी थी वो 298.80 रुपए थी, अब वो 327.40 रुपए हैं। अब ये जो बढ़ोतरी आप देख रहे हैं लगभग 25-30 रुपए का और राज्य भर अगर स्तर पे आप देखें तो जैसे मैं कुछ राज्यों का एक जिक्र करूंगा आपके सामने तो जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम मजदूरी है वो लगभग 380 रुपए का, 379 रुपए है अगर बिल्कुल मैं सटीक आंकड़े लेकर के चलूं। बिहार की बात करूं तो 300 रुपए का है, फिर पंजाब की बात करूं तो वहां 300 रुपए का है, तेलंगाना की बात करूं तो 305 रुपए का है, कर्नाटका की बात करूं तो 382 रुपए का है, तमिलनाडु में 345 रुपए है, आंध्र प्रदेश में 375 है। तो आप अगर उच्चतम दर देखेंगे मजदूरी की तो वो 450 रुपए का बनता है और न्यूनतम जो है वो 300 रुपए का बनता है और औसत जैसा मैंने आपको बताया 327 रुपए के करीब में बनता है। तो जब मजदूरी बढ़ती है उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उसका असर देखने को मिलता है क्योंकि आज के दिन में अगर हमारी 65% आबादी, 2/3 आबादी गांव में रहती है, 50% के करीब श्रम शक्ति गांव में रहती है, अगर इनके पास इनके हाथ में अतिरिक्त संसाधन आते हैं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। और
2: कई बार होता है कि योजनाएं नहीं है ये कहकर उन्हें काम नहीं दिया जाता और कागज पर वो दिखता रहता है कि काम चल रहा है, उससे निपटने के लिए यानी जो एक बैठा हुआ वहां उपलब्ध मजदूर है उसे काम नहीं मिल रहा, दिन उसके बढ़ गए लेकिन उसे अंततः भुगतान मिला या नहीं मिला वो समझ नहीं पाया, वहां चेक एंड बैलेंस किस रूप में हो?
3: यही पे तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका है कि आप कहते हो कि हमें सड़क की जरूरत यहाँ पे है कि नहीं, हमारे लिए यहाँ पे विद्यालय के भवन बनाने की जरूरत है कि नहीं, अब आपने कहा कि यहाँ पे जरूरत नहीं है फिर भी वहां पर जो निर्माण कार्य के एवज में पैसे का भुगतान किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो गलत होता है और उसमें आपके संसाधनों का दुरुपयोग होता है। अब यहाँ पर तकनीक के जरिए, जियोस्पेटिकल के जरिए और आपके सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए आपको पता है कि इस इलाके में इस तरह के काम की जरूरत है। आपका डुप्लीकेशन जो है, दोहरावपन जो होता था कि एक ही काम को आप बार बार करें, जब भवन बन गया तो आप दोबारा भवन नहीं बनाएंगे ना, आप किसी दूसरी जगह पे बनाएंगे। तो चेक एंड बैलेंस करने में आज के दिन में आपकी सबसे बड़ी भूमिका आपकी तकनीक की है। और जहां पर आपके उपग्रह मौजूद हैं जो कि बिल्कुल छोटे से छोटे तस्वीर भी जो है वो आपके सामने रख सकते हैं, तो वो काफी मददगार होगा। दूसरा, जो पैसे का भुगतान है, जो मजदूरी का भुगतान है, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए होता है। तो डीबीटी के जरिए ट्रांसफर होने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो लाभार्थी है उसी के खाते में वो पैसा जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई उसके बाद से लेकर के 2014 से लेकर के आज हम 2026 में 53-54 करोड़ जो हमारे खाते बन चुके हैं, खाते खुल चुके हैं, अब उन खातों में इस पैसे का भुगतान होगा। तो यानी कि जो बिचौलिया होता था वो उसकी स्थिति नहीं रहेगी और लाभार्थी को मिलेगा। तो एक तरफ आपने ये सुनिश्चित किया कि वाकई में वहां पर निर्माण कार्य की जरूरत है, वाकई में वहां पर काम की जरूरत है, उसी हिसाब से आपने मजदूरी दी। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप किसी एक जगह पर बैठे और आपने कहा नहीं जी यहाँ पर हमें 100 लोगों की जरूरत है, लेकिन तकनीक हमें यह बता रहा है कि नहीं यहाँ पर तो 50 आदमी से काम हो सकता है क्योंकि उतना बड़ा दायरा नहीं है। तो आपके लिए एक चेक एंड बैलेंस हो गया। दूसरा ये हो गया कि काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कितने समय में पूरा हुआ, उसके ऊपर आप नजर रखेंगे। तीसरा ये हुआ कि जो काम हो गया है दोबारा क्या उसी की बात, क्या कोई वही प्रस्ताव तो नहीं आया, तो वो भी आपके लिए जानना संभव होगा। और चौथी बात है कि पैसा उसी को मिले जिसने काम किया है, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए वो संभव होगा, जो जैम ट्रिनिटी हम लोग कहते हैं, जनधन आधार और मोबाइल के जरिए। तो ये मेरे हिसाब से कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जो कि इस योजना को और बेहतर बनाएंगे।
4: यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल उभर के आता है कि जो मजदूर हैं, पुराना उनका कार्ड बना हुआ है, अब नई व्यवस्था में नया कार्ड उनका बनेगा, तो ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है उसमें उनके लिए क्या प्रावधान है?
3: मुझे लगता है कि अब के समय में उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपने पुराने कार्ड को देखें, पुराने कार्ड में कई बार ये भी बात आती थी कि एक ही जगह पर दोहराव की स्थिति हो गई, KYC वो नहीं होता था। अब KYC के लिए आपके पास आधार एक बड़ा माध्यम है, आधार के जरिए आप उसकी पहचान भी कर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है नए कार्ड को बनने में या नई व्यवस्था को पूरी तरह से अमल करने में। और देखिए, ये कानून तो पिछले वर्ष पारित हुआ था, अब जा करके उस को अमल किया गया है, तो इतना विश्वास किया जा सकता है कि ये जो बीच का समय था, इस बीच के समय में वो बुनियादी व्यवस्था बेहतर की गई है। और एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में अगर VVG राम जी के लिए लगभग 95,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, तो मनरेगा के लिए भी 30,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, ताकि जो पुराने कोई भी मामले हैं वहाँ पर भुगतान में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर जिसने उस पर काम किया है या जो अभी तक काम कर रहे हैं या जहाँ पर अभी इसको लागू पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है, उसके लिए भी एक, जिसको कहते हैं ना, ट्रांजिशनरी अरेंजमेंट जो है, जो परिवर्तन की जो बात है, वो उपलब्ध है। और मुझे उम्मीद है कि शायद वो इसको लागू करने में उसको दिक्कत नहीं होगी।
4: कुल मिलाकर यदि हम एक दो पंक्ति में समझना चाहें कि यह बदलाव किस रूप में नए भारत के निर्माण में सहायक होगा, उसे कम से कम शब्दों में किस तरह हम व्याख्यायित कर सकते हैं?
3: ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बदलते स्वरूप के हिसाब से नई योजना का खाका है, और मुझे लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए समय के हिसाब से। अगर आप बदलाव नहीं करते हैं तो आप काफी पीछे रह जाते हैं।
4: हम पीछे ना रहें और प्रगति के पथ पर लगातार बढ़ते रहें, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और आप सभी श्रोताओं की ओर से शिशिर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जी धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन से ग्रामीण

0: भारत के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए वंदना तिवारी का नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के गाए इस गीत के साथ। इस गीत को अनजान ने लिखा और इसकी धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाई है। फिल्म का नाम है बदलते।

चंबल की कसम लीजिए, आप सुनिए इस फिल्म का ये दो गाना। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, खयाम ने संगीतबद्ध किया और आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

आकाशवाणी इंदौर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। लीजिए अब सुनिए फारूक कैसर का लिखा हुआ ये गीत, जिसे बप्पी लहरी ने संगीत दिया, आवाज़ लता मंगेशकर ने दी और फिल्म का नाम है लहू के दो रंग।

श्रोताओं, गीत हम आपको और भी सुनवाएंगे, लेकिन पहले कार्यक्रम संबंधी एक सूचना आपको दे दें। कल दिनांक 2 जुलाई 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है एचआईवी एड्स का संक्रमण और उससे बचाव के उपाय। इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर अंकेश गुप्ता आईसीयू विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट कीजिए। कल सुबह 10:32 से लेकर 11:02 तक हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर शहर का STD कोड है 0731। प्रसारण समय कल सुबह 10:32 से लेकर 11:02 तक। इस कार्यक्रम को विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में हरजाई फिल्म का ये गीत। बोल निदा फाजली के हैं और धुन बनाई है RD बर्मन ने।

0: इसी के साथ दिल ने फिर याद किया, कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अनुमति दीजिए वंदना तिवारी को, नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। थोड़ी देर में हम आपको सुनवाएंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
2: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
3: VBG रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में VBG रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, VBG रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों

0: गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले तीन वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जनभागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की तीन दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फारूखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रूपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा वीथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए

0: पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight.

0: Motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a three-day visit to India to take part in 16th India-Japan annual summit tomorrow. In men's cricket, India to take on host England in first T20 international, a five-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत। चित्रगीत के आरंभ में लीजिए सुनिए शकील बदायूनी का लिखा हुआ ये गीत, जिसे नौशाद ने संगीत दिया। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। फिल्म का नाम है मेरे महबूब।

0: असद भोपाली का लिखा हुआ गीत लीजिए, आप सुनिए। इसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है पारस मणि।
1: वो जब याद आए

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रगीत। लीजिए सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ ये गीत, जिसे हमने लिया है बरसात की रात फिल्म से। इसे संगीत रोशन ने दिया था और आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

चित्रगीत कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गीत, जिसे मदन मोहन ने संगीत दिया, आवाज़ लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम अदालत।

0: चिंता का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, चर्चा का विषय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें हम बात करेंगे एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जिनमें एक हैं प्रसून शर्मा जो एआई एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: और श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं एआई एंड टेक एक्सपर्ट उत्पल चक्रवर्ती जी। उत्पल जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार जी।
1: उत्पल जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि 2015 से लेकर के आज तक की इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और किस तरह ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो भी हमने कार्य किए हैं, उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: जो ये टाइम फ्रेम जो है, इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत एडवांसमेंट किया है, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम हो, या हम लोग ये भी देखे है कोरोना के टाइम पे अपना कोइन जो है, ये जो नया अभी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एडवांसमेंट हुआ है, जो कि खाली देश के अंदर ही नहीं, ये विदेशों में भी ये एक मॉडल बन के आया है बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इवन की डेवलप कंट्रीज के लिए। क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है और इतना वर्सेटाइल है कि अभी हम लोग कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे एआई हो, चाहे क्वांटम हो, या कोई भी डेटा इकोसिस्टम हो, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसके। तो ये जो ग्राउंड वर्क किया गया है ये 12 साल में मतलब रिमार्केबल मतलब उपलब्धि है।
1: प्रसून जी, अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे जानना चाहूं तो डिजिटल इंडिया की जब शुरुआत हुई 2015 में, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा। तो आपके हिसाब से इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी सोच क्या रही और कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो इस बदलाव के भागीदार बने?
2: डिजिटल इंडिया के ये 11 वर्षों को ऐसा देखता हूं कि लाइन में लगने वाली अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्षों में। और उसके तीन महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां या माइलस्टोन मैं कहूंगा, पहला डिजिटल पहचान जो हमारा आधार है, दूसरा हमारा डिजिटल भुगतान जो यूपीआई है, तीसरा जो सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आप पासपोर्ट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल सर्विसेज, उसका डिजिटल। ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनारियो हमने क्रिएट किया है।
1: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
4: डिजिटल इंडिया के चार पिलर्स की पहचान की थी, डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए, दूसरा डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे, तीसरा डेटा सबकी पहुंच में होना है, और चौथा डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
1: और हर स्तंभ की अपनी एक विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
2: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था और वो जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली। जब हमें डिजिटल पहचान मिली, उसी के बेस पे अब हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी है अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
1: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं सहमत हूँ सुन जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है, ये मॉडल कोई भी जगह नहीं है, इतना यूपीआई जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खड़ा हुआ है। और आज खाली यूपीआई नहीं, फ्यूचरिस्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर ऐसा जो कि कंट्री को एंटायर पॉपुलेशन को सर्विस देने जैसा अगर कुछ बनाना है कल को, तो वो कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम

0: देखा कि हम लोग कितना जल्दी, मतलब ये जो कोविन एप्लीकेशन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए, और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया, और ये भी एक बहुत बड़े मॉडल के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया।
1: प्रसून जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, गांव गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक, तो असली चुनौती सिर्फ कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा। हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी, जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पर जो सरकार की भूमिका रही, उसे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़कर किस चीज को किया?
2: सरकार ने इसकी नींव रखी, जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती हैं, वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया, उसके ऊपर चाहे वो सरकारी सुविधाएं हो या हमारे तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो फ्यूचरिस्टिक रहा है, और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है। ना सिर्फ कनेक्टिविटी, कंप्यूट एप्लीकेशंस भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके, और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर जो कि स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू हो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
1: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, सीएससी की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज हमारे जीवन को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया?
2: जी बिल्कुल, ना सिर्फ आसान बना दिया है, अब हम उसमें एक लीडिंग एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया से अब एआई इंडिया मिशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एआई से हमें समय कम लगेगा, हमारे काम जल्दी होंगे, और जो रूटीन काम थे जैसे पेपर वर्क वाले, और वो काफी हद तक कम हो जाएंगे, उसमें जो भी खर्चा था या समय था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ना सिर्फ भारतीयों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए। ये पहले अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ 2 ही डिजिटल इकोनॉमी थी पूरे ग्लोब में। पहला था यूएस ओरिएंटेड, जिसको हम गैफैम बोलते हैं, गूगल एप्पल वो प्रोवाइड करते थे। तीसरा चाइना सपोर्टेड था, जिसमें बायदू अलीबाबा आते हैं। दूसरा और तीसरा अब हमारा है, भारत का जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, जिसमें जो मेन कोर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का जो कोर है वो है टू बेनिफिट कॉमन मैन। हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एम नहीं है। इसके बेस पे ना सिर्फ हम भारत के कॉमन सिटीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिजिटल, फाइनेंशियल और अदर एस्पेक्ट में, हम ग्लोबली भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस को, कि कॉमन सिटीजन्स को हम इंक्लूड कर सके बाकी सारी सर्विसेज।
1: इसमें एक चीज अगर ये हम जोड़े कि जैसे कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं था, लोग घबराते थे कि टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करें या ना करें, इससे हमारा नुकसान ना हो, लेकिन अभी बीते एक दशक की हम बात करते हैं भारत सरकार के जो डिजिटल प्रयास हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी का असर है कि आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा हम एडॉप्ट कर रहे हैं? आपने एआई का जिक्र किया था, बहुत ही तेजी से काम करने में बहुत सहायता हमारी ये पहुंचाता है, आज आम आदमी भी एआई को बड़ी तेजी से एडॉप्ट कर रहा है।
2: अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं और अगर आप क्यूआर कोड पे पेमेंट करते हैं और वो उस पर एक वॉइस कमांड आता है कि जिसमें आपका 200 रुपए का भुगतान हुआ, वो भी एआई है। वो भी हमारे गांव में अभी जाने अनजाने में लोग यूज कर रहे हैं, वो भी एआई का एक एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर आप किसानों के लिए कुछ एप्लीकेशन है जिसमें वो मतलब अपने एआई बॉट से बातचीत करके पता कर सकते हैं कि भी किस तरीके का खाद डालना है, किस तरीके के बीज और कहां से लेना है। तो भारतीय सरकार ने ना सिर्फ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है उनको अनेबल भी किया, और इसमें जो नॉलेज एस्पेक्ट था, जैसे भारत ही एक सबसे विभिन्न तरीके से जीपीयू प्रोवाइड करा जो सबसे सस्ता है पूरे विश्व में, वो एमएसएमई और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो एआई कोश है उसमें जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के जो एलएलएम्स या उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अनेबलमेंट भी है और सॉल्यूशन एक्सेस भी है, नॉलेज शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे, वो जो भी बेस्ट चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उनको भारत यहाँ ला रहा है।
1: उत्पल जी, स्वास्थ्य और न्याय की अगर हम बात करते हैं तो ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्ट्स जैसी पहल आज हमारे सामने बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों ने आम लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डाला, आप कैसे देखते हैं इसे?
0: ये तो बहुत ही अच्छी चीजें है, बिकॉज हम अगर इंडिया का बात

0: तो हमारा जो दूर दराज का एरिया है जिधर के मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग, वो स्टार्ट हुआ टेलीमेडिसिन से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा भी स्टार्टअप्स और ऐसा भी इनिशिएटिव्स है जो कि डिजिटली उधर से डायग्नोसिस कर सकता है कुछ कुछ डिजीजेस का, और वो रिमोटली डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारा एक स्टार्टअप को जिसको कि यूनाइटेड नेशंस एआई फॉर गुड में जिसको अवार्ड भी किया गया है, जो कि प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन को वो लोग डिटेक्ट कर सकता है एक छोटा सा डिवाइस, अफोर्डेबल डिवाइस से, और वो गांव का दूर दराज एरिया में लेके जा सकता है और उसको ये कर सकता है। और इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि वो बैकबोन अगर नहीं होते तो हम लोग ये बाकी जितना भी चीज है ये करने तो बहुत ऐसा कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट किया और मैक्सिमम जो काम किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया या प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी ने किया। लेकिन इंडिया का जो मॉडल है ये एक यूनिक मॉडल है। इसमें क्या किया, जो बेस लाइन है और जो बेस है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए कि इसको एक्सेस करें। तो इसीलिए आप अगर देखोगे आज ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम लोग आधार का सर्विस यूज कर सकते, तो इट इज ए ओपन प्लेटफॉर्म। हम कोई भी एपीआई कॉल करके आधार से ऑथेंटिकेट, जो कि सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ऐसा कोई भी हमारा अगर कुछ भी जरूरत है, पेमेंट्स काम है, अगर ई कॉमर्स साइट करना चाहता हो या कोई भी चीज ऐसा करना चाहता हो, अगर पेमेंट इको सिस्टम चाहिए तो मेरे पास यूपीआई है, मैं इजिली इंटीग्रेट करके कर सकता हूँ। तो ये मॉडल जो है इट्स ए यूनिक मॉडल कि गवर्नमेंट ने आपको पूरा का पूरा बेसलाइन प्रोवाइड किया, इको सिस्टम प्रोवाइड किया, ऑन टॉप ऑफ द इको सिस्टम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। एंड वही एआई का अभी कुसुम जी ने बात किया कि एआई कोशा में जो सब्सिडाइज रेट में जीपीयू दे रहे थे, एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट।
1: उत्पल जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो आज कितना आसान हो गया है कि माई गॉव जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?
0: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है सरकार के पास रहना चाहिए, तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन, वो कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता है वो दूर में चला जाता है, क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है। लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके। और ये जितना भी है माई गॉव आप देख रहे हो, बाकी जितना भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ भी है उसको सरकार के पास तक के लेके जाना। तो मैं समझता हूँ ये जो दीज आर ओनली चैनल्स, आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, एंड दैट्स द रियल डेमोक्रेसी।
1: प्रसून जी, उमंग, जीएसटीएन, पोषण ट्रैकर और पीएम गति शक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है?
2: काफी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए इसमें काफी सर्विसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और एनेबलमेंट चाहिए थी, हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं, हमारे स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुका है, इवन जो आपको सर्टिफिकेशन, उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है, और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो वो डिजिटल माध्यम से ही होता है। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं, हम दुनिया की टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबलमेंट हुआ है, ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए हैं ग्लोबल इकोसिस्टम में, ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में, अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विसेज जिसमें आप आजकल डीप टेक, जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए, जैसे 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू, और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और एमएसएमई को।
1: जी उत्पल जी, जनधन, आधार और मोबाइल यानी कि जैम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है, तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
0: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आइडेंटिटी जब हो जाएगा तभी मिडिल मैन कोई नहीं रहेगा बीच में। और इसीलिए क्या हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है, जितना कुछ है, डायरेक्टली सिटीजन तक के पहुंच रहा है। तो ये तो डायरेक्ट चैनल एस्टैब्लिश तभी हो पाया जब हम लोग आइडेंटिटी किया। सेकेंड थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग इकोसिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस हमारा RBI का एंड हमारा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है, ये इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं कि बहुत ही इजी हो गया है, वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर। तो और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत कुछ जो गड़बड़ी हो रहा था, वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है, अभी वो इजीली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है। क्योंकि क्या है, जो फाइनेंशियल इको सिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया, उससे बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे जो कुछ भी करप्शन ये सब है वो सब हट गए। तो ये जितना भी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहला है जो कि सिटीजन को मतलब मिडिल में रखते, सेंटर स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है। और आई थिंक इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है, जो कि अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है, तो मैं भी सहमत हूँ उनसे।
1: अब प्रसून जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमिकॉन की हम बात करते हैं। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
3: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर, इस डिजाइन को इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है, और उसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर की चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है। ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। सेमीकंडक्टर है तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए। तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया, और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है। टीजी सेमी में प्रोडक्शन चालू हो गया, पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई, और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है, और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 20 चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
1: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं, और इसका कहीं ना कहीं एक पहलू रोजगार भी है। तो आईटी, एआई, सेमीकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं, उन पर आपके क्या विचार हैं?
2: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, एआई सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल इंटेलिजेंस और सोवर्निटी प्रोवाइड करेंगे। और आपने बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमीकॉन जैसे, इसका मूल है कि चिप, अगर आप देखिए मोबाइल, कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है, उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट, वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, अब हम खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने, वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे, और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टेक्स सोवरेनिटी की, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में अगर आप देखिए, तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूशन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन एक सॉल्यूशन बनाया जो यूज हुआ, वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप चैलेंजेस है आईडेक्स के थ्रू, वो भी इस इकोसिस्टम के थ्रू अनेबल हो रहे हैं। उनको ट्रायल्स के लिए फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, और वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई करते हैं, अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन होती है, और अगर आपका वो सॉल्यूशन चल रहा है तो आपका प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है। तो ये सारा एक एम्पावरमेंट की तरफ जो पूरा इकोसिस्टम गया है, वो एक सराहनीय कदम है, ना सिर्फ भारत के लिए, अब हमारी टेक बाहर के देशों में भी उसकी डिमांड हो रही है। अगर आप देखिए डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट में हमारे ड्रोन्स, हमारे सर्वेलेंस की मांग काफी बढ़ रही है, हमारे स्पेस टेक की बहुत ज्यादा डिमांड
1: हो रही है। कर रहे हैं हम
2: जी, और अभी जब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में थे तो काफी एमओयू साइन हुए स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के जरिए, तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत को एज

0: डीप टेक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेयर के रूप में स्थापित करने के।
1: उत्पल जी, अगर भारत की संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो एक समय था जब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं। तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता हमने प्राप्त की है, इसके पीछे आप किन चीजों को मानते हैं, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बदलाव हुए जो ये सफलता हमारे देश को अर्जित हुई?
2: ये पॉलिसीज में है, पॉलिसीज में सुधार हुआ है। उसके बाद स्टार्टअप और बाकी कंपनीज को वो जो एनकरेजमेंट एंडोर्समेंट जो मिलते हैं उसके वजह से भी हुआ है। तो आप देखिए, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर दिए हैं, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, एआई में ऑलरेडी हो रहा है। हम लोग सोवरेन एआई का बात कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद का हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल्स रहे। एटलीस्ट हमारा क्रिटिकल सेक्टर जो है, चाहे डिफेंस हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ कुछ सेक्टर्स हो, हेल्थ केयर कुछ सेक्टर्स हो, तो ये सब में सोवरेन एआई का आ गया है। और जो भी सोवरेनिटी का बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अभी क्वांटम आ रहा है, अभी क्वांटम के लिए भी बहुत जगह पे क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम चिप्स जो है वो बनाने का काम चालू हो गया। हमारा जो क्वांटम इंडियन क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन है, उसके तहत हम लोग क्वांटम हब्स बनाए हैं, जिसमें कि अलग अलग तरीके का क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है। क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है या क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है, ये नेक्स्ट फ्रंटियर है, मतलब और ये एआई के साथ कॉन्वर्ज होगा, मतलब एआई के साथ एक साथ होके एक हम लोगों को नई दुनिया देखने को मिलेगा। क्योंकि क्वांटम वो स्पीड लेके आएगा, वो पैरालिज्म लेके आएगा, उतना सिक्योरिटी लेके आएगा, जो कि आज हम लोग सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई भी जगह सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो ये क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, ये जितना कुछ भी चीज है, ये पूरा सब कुछ ये इकोसिस्टम के ऊपर ही बनेगा। और मैं इसके लिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज जो चेंजेस हुआ है, ये बाकी सब कुछ बाई प्रोडक्ट है पॉलिसीज। आप जो भी पॉलिसी चेंजेस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसको बढ़ावा मिलेगा।
1: अभी मैंने प्रसून जी से बात की थी सेमीकॉन पर, तो आपको क्या लगता है कि सेमीकॉन की जो संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ती जा रही हैं?
2: सेमीकंडक्टर पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं बाहर के कंपनीज को ऑलवेज, क्योंकि क्या हो गया, अभी एआई के लिए भी हम लोग को जीपीयू चाहिए। अभी जीपीयू अगर जो देखा जाए तो दो तीन कंपनी है जो कि बाहर का कंपनी है, उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहे हैं, लेकिन हम लोग को खुद का जीपीयू चाहिए। हम लोगों को वो माइक्रो चिप्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नैनो लेवल पे जो भी अभी काम हो रहा है, वो सब वो फैब्रिकेशन का जरूरत है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो एआई तो शायद हमारा खुद का हो जाएगा, हमारा बाकी भी चीज शायद खुद का हो जाएगा, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो रन करता है, जो जीपीयू पे रन करता है, वो फिर भी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन एक इंडिया में आया है और इसको आगे लेके जाए और इसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस के तक के जाए, तो सो दैट कि हम लोग किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंडेंट ना रहे।
1: जी, अब प्रसून जी, जैसे भी डिजिटल व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र होता है तो तमाम चीजें हमारे सामने आती है, किस तरह से हम अपने काम को करेंगे, जो सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर हमारे लिए, खासतौर पे जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर किस तरह की चीजें आपको लगती हैं कि और ऐड की जा सकती है या फिर उन पर हम काम कर रहे हैं?
0: तो ये डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट, आई थिंक काफी इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, खासकर अवेयरनेस रिलेटेड कि कैसे इसको यूज किया जाए। जैसे अगर आप देखिए, सरल भाषा में हमें एड्स या वॉइस एड्स आते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना है या ऐसे में वो आ रहे हैं, पर उसको आगे और सुदृढ़ करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे इनिशिएटिव हुआ कि जो बैंक्स भी आपको ट्रांजेक्शन्स या एसएमएस या वॉइस बेसिस भेजते हैं, क्या वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भेज सकते हैं क्या, बंगाली, मराठी, गुजराती? क्योंकि जो भी ये हैकर्स हैं, मोस्टली वो इंग्लिश या जो प्रेवलेंट लैंग्वेजेस हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में वो अटैक कर सकते हैं, पर हमारे पास एक इनहेरिट स्ट्रेंथ है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, हम उसको अगर यूज करने लगे तो वो हमारी सोवर्निटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज हुआ भी है हमारे कुछ इकोसिस्टम में, रीजनल लैंग्वेजेस को डिजिटल कम्युनिकेशन में और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें भारत सरकार काफी इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे हमने भी एक आईआईटीज के थ्रू एमएसएमईज को अवेयर करने के लिए कि इनको कैसे यूज किया जा सकता है और बेसिक साइबर सिक्योरिटी के क्या प्रैक्टिसेस हैं वो ली जा सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। पर उसमें मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आके उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए अवेयरनेस में, ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, यूजर प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को भी आना चाहिए इसके आगे और कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
1: आपने एमएसएमई का जिक्र किया, तो जब एमएसएमई की हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि छोटे कारोबारियों को ज्यादा मौके देने की बात होती है, इसमें ओएनडीसी जैसी पहल या फिर जीईएम जिसे हम जेम भी बोलते हैं उस तरह की पहल। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि सभी को अब आज के समय में पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं और बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं?
0: जी बिल्कुल, और ये सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। अगर आप देखिए, पहले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया, वहां पे उन प्रोडक्ट्स के जो एमएसएमईज हैं उनको अनेबल किया, अब उनके प्रोडक्ट्स को वो डिजिटल कैटलॉग्स में ओएनडीसी पे ला रहे हैं। फिर अगर आप देखिए, हमारी सरकार ने मल्टीपल एफटीए साइन कर रहे हैं, अब ओएनडीसी के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जो एक्सपोर्ट के लिए उनको चीजें चाहिए जैसे वहां की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी चेक्स चाहिए, उनके रीजनल भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि चाहे वो हमारे फार्मर्स हो या हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो, वो समझ सके और उनके ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक सके। तो ये अगर आप देखिए, सारे लेयर्स पे अनेबलमेंट सरकार कर रही है। पहले उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ला रही है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले कर रही है, फिर बाहर के मुल्कों के साथ एफटीए कर रही है, और उसके थ्रू उनको एक नई मार्केट का एक्सेस दे रही है।
1: इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का दिन पहले जुलाई का दिन है और आज से कुछ साल पहले जीएसटी हमारे देश में आज के दिन ही पेश किया गया था। इसी से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि जीएसटी जैसी पहल जो पूरी तरह से डिजिटल थी, या उसके साथ में जो टैक्सेशन की जितनी भी चीजें थी, इस तरह से उनको डिजिटल किया गया कि कारोबार करना हमारे देश में आसान हो जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी हो, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सके और आसानी से अपनी चीजों को फैला सके और उससे अपनी अर्निंग कर सके।
0: जी, टैक्सेशन और खासकर एमएसएमईज को ये कंप्लायंस के बर्डन से काफी हद तक मुक्त किया गया है, काफी हद तक उन चैलेंजेस को हटाया गया, बट अभी भी काफी चैलेंजेस हैं, पर आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम, एंड सरकार आई थिंक ओपन है डिस्कशंस या इम्प्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए, और वो मल्टीपल फोरम्स में एंगेज हो रही है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, और चाहे वो जैसे आप पॉलिसी एडवोकेसी वाले लोग हो, क्योंकि अगर हमारे एमएसएमई के जो प्रोडक्ट्स हमें बाहर बेचने हैं, एफटीए के थ्रू बेचने हैं, तो उसमें भी कुछ ट्वीकिंग चाहिए होंगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो आई थिंक काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, कुछ होना बाकी है, पर उसके लिए सरकार इंगेज है ग्राउंड लेवल पे।
1: उत्पल जी, माई भारत जो हमारी पहल है वो युवाओं को, और एग्री स्टैक जो किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, इनको आप इस तरह से देखते हैं कि लोगों के पास अब नए अवसर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और ये एक तरह से व्यापक अभियान का रूप ले चुके हैं?
2: हाँ जी जरूर, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका जो अल्टरनेटिव्स है, हम लोगों को अल्टरनेटिव्स ढूंढना पड़ेगा, और वो हमारे जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है कि हमारा जो स्किल्ड, अगर आपके पास स्किल है तो आपको खाली जॉब का जरूरत नहीं है, आप जॉब के सिवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग हो, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, बाकी जो कुछ भी आप कर सकते हैं स्किल। सो मेरे ख्याल से जो स्किल के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि ऑलरेडी वो हो रहा है ये सब पहल के माध्यम से, तो क्या होगा, हमारा जो जॉब के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जॉब सीकर्स से जॉब प्रोड्यूसर्स ज्यादा बन जाएंगे, और क्या करेंगे, हमारा स्किल को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे कि बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑनलाइन जॉब्स है, बहुत कुछ ये है जो कि हम लोग देख रहे। तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है, और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है स्किल, क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है, और ये खाली इंडिया का नहीं है, पूरा दुनिया में ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है एक सिस्टम से। नाउ कमिंग टू हेल्थ केयर, जो आपने बात किया उसमें भी बहुत कुछ चीजें हमारा हो रहा है जो कि एक मॉडल होके निकलेगा। इंडिया ये अभी अलग तरीके से कर रहा है, बिकॉज मैं क्या देखता हूँ, इंडिया का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल देखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है कोई भी कंट्री के साथ, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ।
1: श्रोताओं, चर्चा का विषय में आज बस इतना ही। हमने आज बात की डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें चर्चा की गई एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हमारे साथ खास मेहमान आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
4: चर्चा का विषय है।
5: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए सुनिए नाटक पथरीले पल। प्रतिभागी कलाकार हैं कल्याणी महाजन, दिलीप लोकरे, श्रद्धा भाटिया, आराध्य भाटिया, अंजुश्री मुखर्जी, नरहरी पटेल, रवि सोनी, संजीव मालवी, उषा उदय चोरघड़े। इस नाटक के निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता हैं संजीव मालवी।
6: क्या हुआ? क्या हुआ अहिल्या? अहिल्या मेरी बच्ची, क्या हुआ?
7: लगता है फिर वही डरावना सपना देखा है इसने।
6: ऐसा कैसा सपना है जो 10-12 दिन में फिर से दिख जाता है? एक बार अच्छे डॉक्टर को दिखा क्यों नहीं देते?
7: अहिल्या की माँ, इतने दिनों से और क्या कर रहा हूँ, शहर के सारे अच्छे डॉक्टर से लेकर दूसरे इलाज करने वालों को भी दिखा चुका हूँ मैं। कितनी सुस्त हो गई अपनी बच्ची,
6: पत्थर की तरह हो गई है, ना बोलती है ना सुनती है, बस सुनसान आंखों से देखती रहती है। कभी कभी तो देर तक पलके भी नहीं झपकती है। मुझे डर लगता है। अब उम्र हो गई है, लड़का ढूंढो और हाथ पीले करो।
7: अहिल्या की माँ, वो मेरी बेटी है, कोई गाय बकरी नहीं है। बिना उसकी राह जाने कैसे शादी कर सकते हैं, और वो भी इस हालत में।
8: चीखों की ये आवाजें अहिल्या की पलकों पर अटक जाती हैं। वो देखती हैं एक टक आसमान पर, धूप फिर भी उतनी ही तीखी है, जला देने वाली।
9: हाँ, क्या कह रही थी मौसी? रात को फिर चीख सुनाई दी थी,
6: अब क्या करे सविता?
9: अरे मौसी, वो ऊपरी हवा का चक्कर है, ऊपरी हवा का। अरे वो झुमरू बाबा आए हैं, सब ठीक कर देते हैं।
6: नारे नारे सविता, ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगी। कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी।
9: हाँ, मैं तो अपना समझ कर कहने आई थी, वरना मैं क्यों आती? बस अहिल्या ठीक हो जाए मौसी, तो जल्दी से ब्याह कर दो। अब ऐसे में तो कोई ब्याह करेगा नहीं ना। अच्छा चलूं मौसी, थोड़ा काम है।
6: आना सविता।
8: वो चीख अहिल्या की है, रात के अंधेरे की चीख से जाग जाता है मोहल्ला। सुबह जब पूछते हैं तो वो कोई जवाब नहीं देती है। वो लड़की जो कभी चुप नहीं बैठती थी, अब चुप है। क्यों पता नहीं, बस याद आता है तो उसका बोलता बचपन। बचपन
10: बाबूजी, हम कहाँ जा रहे हैं?
11: हम वहीं जा रहे हैं बेटे, घूमने।
10: जब सुबह सोने का वक्त होता है तभी घूमने क्यों जाते हैं बाबूजी?
11: सुबह ही घूमने का वक्त है, सुबह सवेरे ताजी हवा हमारे फेफड़ों में जाती है।
10: हवा तो हर जगह होती है, यहाँ ताजी है तो और घर पर भी ताजी होगी। जब मैं सोऊंगी तभी तो ताजी हवा फेफड़ों में जाएगी ना। फिर क्यों घूमे?
11: क्योंकि शरीर का व्यायाम हो जाता है, ये हरियाली में वास्तविक ताजा हवा मिलती है बेटी।
10: हरियाली क्यों है बाबूजी?
11: अरे वाह, क्या सवाल किया है।
10: यह रात को बैठकर हवा बनाती है, ये सुबह हमें ताजा हवा देती है।
11: अरे नहीं पगली नहीं, सुबह कोई प्रदूषण नहीं होता है, इसीलिए इसे ताजी हवा कहते हैं। ठंडी ठंडी हवा बह रही है। चलो बगीचे में चलो, कितनी हरियाली है।
10: बगीचे में ही हरियाली क्यों होती है, हमारे घर भी तो हरे रंग का है।
11: ये पेड़ों की हरियाली है बेटी, जहाँ अहिल्या झूल सकती है। चल बाकी सवाल बाद में। अब झूलो झूलो, चलो चलो आओ इधर।
10: बस एक और सवाल। सवाल बाबूजी।
11: पूछो पूछो मेरी बिटिया।
10: ये पेड़ हरे क्यों होते हैं?
11: हरे क्योंकि उनका रंग हरा है।

0: इसलिए ना चलो चलो चलो चलो चलो चलो।
1: हाँ, पर हरा रंग क्या है?
0: अरे फिर बाद में बताएंगे, चलो झूलो अभी झूलो।
1: बताओ ना बाबूजी।
0: बताएंगे बेटी, पहले झूलो। आओ इधर।
1: बताओ ना बाबूजी, बाबूजी बताओ ना प्लीज।
0: बताते हैं बेटे, बताते हैं, पहले झूलो तो सही। आओ इधर हमारे पास।
1: प्लीज ना बाबूजी,
0: अरे प्लीज आप झूलो तो।
2: है कोई जवाब आपके पास? कभी कभी ऐसे सवाल भी कि आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए।
1: रघु खेलने नहीं चलेगा?
3: नहीं, काम कर रहा हूँ।
1: क्या काम कर रहा है?
3: कपड़ों को पानी में गला रहा हूँ।
1: कपड़ों को भी पानी में क्यों गला रहा है?
3: ताकि गंदे कपड़े धोए जा सके। पानी में गीले होने से साबुन भी ठीक से लग जाता है।
1: ठीक से क्यों लग जाता है?
3: क्योंकि पानी गीला होता है।
1: पानी गीला क्यों होता है?
3: पानी गीला क्यों होता है? भाग जाए यहाँ से, वरना सारे कपड़ों के साथ तुझे भी धो दूंगा।
1: मैं बताऊँ? मैं बताऊँ?
3: मत बता, तो फिर कुछ पूछेगी।
1: नहीं नहीं नहीं, बस थोड़ी मेहनत चाहिए रहेगी।
3: हाँ बोल अब।
1: पानी इसलिए गीला होता है ताकि तुझ पर डाला जा सके।
3: तुझ पर पानी?
2: बचपन की अठखेलियों के दिन हवा में बह गए, लेकिन अहिल्या की चुलबुली हरकतें अब भी जारी थी।
4: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला। निम्मी!
5: अरे मेरी जान निम्मी, क्यों बुला रही थी मुझे क्लास में से? बता।
3: अहिल्या मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ, कल तू घर क्यों नहीं आई?
5: क्या बताऊँ निम्मी, तुझे तो पता है ना घर का सारा जिम्मा मेरे ऊपर ही तो होता है।
3: झूठी!
5: नहीं समझी। और अरे वो जानती है ना, वो मन्नो, अरे वही मन्नो अपना, उसका ढोलू पोलू सा गुलाब जामुन सा भाई।
3: अच्छा, वो गब्बू कशा?
5: हाँ, वही जो पट्टे वाला पजामा पहनता है।
3: तू भी ना।
5: कल तो मैंने उससे कह ही दिया, ए ढोलू ये पट्टे वाला पजामा मत पहना कर, पूरा जोकर लगता है तू।
3: वो तो ठीक है, पर तू ये बता रही थी कि तू घर क्यों नहीं आई।
5: ओ हाँ यार, तू ना बीच बीच में डिस्टर्ब कर देती है यार।
3: अच्छा
5: हाँ, अब सुन, सेल से मैंने तेरी किताबें निकाली तो मेरी नोटबुक भी गिर गई, उसमें से 5 का नोट भी। तुझे तो पता है ना यार, छुट्टे पैसों की कितनी किल्लत है आजकल। सॉरी सॉरी सॉरी।
3: तू बोलती चली जा।
5: नहीं नहीं यार, सॉरी ना, मैं बता रही थी ना यार, पर मैं क्या बता रही थी निम्मी। हाँ, सर से किताबें निकाल कर मैं जैसे ही मुड़ी, मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई यार।
4: क्यों? सामने रघु खड़ा था क्या?
5: यार तुझे कैसे मालूम?
3: 1 घंटे तक घर ना आने के बहाने गिना रही थी, तो क्या मुझे समझ में नहीं आएगी? जो अहिल्या बिना बुलाए घर आ जाती थी, वो इस संडे बुलाने पर भी नहीं आई। क्यों? है ना सही? अब मुझे बता जल्दी से, क्या बोला?
5: कुछ नहीं, बहुत खराब है मुआ। माँ बाबूजी से ही बात करता रहा पूरे समय।
3: अच्छा,
5: पुलिस में नौकरी क्या लग गई है ना, अपने आप को बड़ा DIG समझने लगा है। देख लेना, एक दिन इतना पानी डालूंगी ना, सब भूल जाएगा अपनी पुलिस गिरी। हाँ
3: ओए होए होए होए, इतना चाहती है उसे?
5: चाहती हूँ? पागल
3: है?
5: बिल्कुल नहीं।
3: सच्ची?
5: मैं क्यों चाहूँ उसे?
3: अच्छा,
5: पकड़ो कहीं का।
3: इधर देख,
5: तो मार खाएगी ना निम्मी।
2: पलकों के पीछे कोई दृश्य ठहरा हुआ है जो बयां नहीं हो पाता है। प्रश्न अभी भी हैं उसके जहन में अनेक, और अब भी जवाब नहीं है हमारे पास।
5: बाबूजी, मेरा ये नाम किसने रखा था?
0: नाम?
5: हाँ,
0: तेरी दादी ने।
5: इतना घिसा पिटा नाम।
0: अरे बेटी, दादी मानस पढ़ा करती थी ना, उनका प्रिय प्रसंग वही था। वो तो हमेशा अहिल्या स्तुति गाती रहती थी। हाँ, और वैसे भी अहिल्या ऋषि कन्या थी, युगों से सभी की प्रेरणा पुंज। तू भी तो वही है, पूरे घर की, मोहल्ले की, कॉलेज की प्रेरणा पुंज।
5: जानती हूँ बाबूजी, गौतम ऋषि ने श्राप दिया था।
0: तुझे शायद पूरी कहानी पता नहीं है। वो गौतम ऋषि की पत्नी थी, इंद्र ने छल से उसका सत्य धारण किया था।
5: लेकिन लेकिन लेकिन श्राप किसे मिला?
6: अहिल्या,

0: इंद्र तो देवता थे, वो पाप करे तो लीला और सामान्य स्त्री करे तो श्राप। गौतम ऋषि तो सर्वज्ञ थे ना बाबूजी, एक निर्दोष नारी को पत्थर की बनाने से पहले सत्य तो परख लेते। यदि वे सत्य परख ही नहीं सकते थे तो उनमें और सामान्य आदमी में फर्क ही क्या है बताइए।
1: लेकिन लेकिन उसी अहिल्या को भगवान राम का आशीर्वाद मिला।
0: तो राम ही क्यों, अहिल्या के भगवान तो उसके पति गौतम ऋषि हुए ना। एक देवता का राजा पाप करे और दूसरे देवता श्रापित का विमोचन। एक बात बताइए बाबूजी, किस देवता ने नारी को पूर्ण सम्मान दिया है आज तक, बताइए बताइए। हर युग में प्रताड़ना सिर्फ नारी को ही मिली है, सीता हो, पार्वती हो, मीरा हो या राधा हो।
2: अरे मुझ पर गुस्सा क्यों रही हो, मैं तो तेरी बात मानता हूँ ना। अच्छा ऐसा करते हैं, तेरा नाम बदलकर झांसी की रानी रख देते हैं। अब तो कुछ निवेदी है।
0: नहीं बाबूजी, मुझे गुस्सा आप पर नहीं आ रहा है, मुझे इस समाज पर गुस्सा आता है।
2: अच्छा,
0: एक तरफ तो कन्या से पाँव नहीं छुआते और दूसरी तरफ जिंदा जला देते हैं। मुझे चिढ़ होती है ऐसे झूठे सिद्धांतों से।
2: पर हम तो सारी बातें मानते ही है ना, पर ऐसा क्या हुआ जो तू नाराज हो रही है?
0: आज क्लास में बहस छिड़ गई थी, बस तभी से चिड़ सी हो रही है। हाँ,
2: क्या बहस थी?
0: सत्यवादी हरीशचंद को लेकर। मैंने एक प्रश्न किया।
2: अच्छा,
0: कि राजा हरीशचंद तो सत्यवादी थे तो अपनी स्त्री से कफन मांगकर उसे अर्धनग्न करने की बजाय खुद के वस्त्र दे देते, लेकिन तारामती का सत्य पता है किसी को? कोई पहचान नहीं, पहचान है तो बस सत्यवादी राजा हरीशचंद।
2: अब न तो कोई क्लास है न बहस करने वाली बेटी, वैसे भी बचपन से तेरे सवालों का जवाब कौन दे पाया?
0: बाबूजी आप बिना।
3: ये फालतू की बातें खत्म हो गई हो तो किचन में आ जा, जरा काम करवा दे।
2: वैसे एक बात बताऊं, औरत की बड़ी दुश्मन दूसरी औरत ही होती है। जल्दी जा, नहीं तो तेरे साथ मुझे भी डांट पड़ेगी।
0: जाती हूँ बाबूजी। आई माँ।
4: अहिल्या के प्रश्न धूमकेतु की तरह आकाश में चक्कर लगाते हैं। अहिल्या के सवालों को अनदेखा करना सरल नहीं है, पर आज तो अहिल्या खुद सवाल बन गई है। उसका चुलबुलापन, उसकी बेबाकी, सब चुप हो गए थे। शांति, डरावनी शांति।
5: क्या हो गया अहिल्या तुझको? क्या मुझसे कुछ गलती हो गई? मैं डांटती थी ना तुझे, क्या कहूं बेटा, मजबूरी समझती हूँ। हम औरतों की अपनी ही बेवसी से नफरत है मुझको भी, पर तुझे मैं ऐसे नहीं देख सकती। बोल बेटी बोल।
2: अहिल्या तू चुप क्यों है? बोल ना, सवाल कर मुझसे, पूछ हजार प्रश्न, नहीं दूंगा जवाब, पर तेरे प्रश्नों के इंतजार में मैं बेचैन हो रहा हूँ। कैसा बाप हूँ, बिना श्राप के अपनी बिटिया को पत्थर की तरह बना दिया मैंने। झगड़ मुझसे, राम शिव कृष्ण सबकी बातें पूछ मुझसे, पूछ ये पेड़ का रंग हरा क्यों है, पूछ आकाश नीला क्यों है, पूछ मुझसे पूछ शक्कर मीठी क्यों है, पूछ है।
5: चुप हो जा, रोने से पत्थर नहीं पिघलते।
4: जब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं तब झुंझलाहट होती है, एक अजीब सी बेचैनी अंदर ही अंदर खोड़ देती है दम आपका।
6: कौन?
7: मौसी मैं हूँ।
6: मैं पहचानी नहीं।
7: अरे मौसी मैं रघु।
6: रघु? अरे कितना बदल गया है, ये पुलिस की ड्रेस क्या हो गया अब तू?
7: अरे अरे मौसी मौसी मुझे अंदर तो आने दो।
6: आजा बेटा, रुक तेरे लिए पानी लाती हूँ।
7: अरे पानी,
6: इधर बैठ, इधर
7: पानी, बैठ। पानी पानी पानी मैं पी लूंगा मौसी, आप बैठो यहीं। और हाँ बाबूजी कहाँ हैं?

0: और वो अहिल्या की बच्ची कहाँ है?
1: तू कहाँ था इतने दिन? हर रोज याद करती थी मैं तुझे।
0: याद करती थी? अरे तो वो अहिल्या के पास मेरा एड्रेस था ना। मौसी वास्तव में एक खास ट्रेनिंग के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा। कल ही दिल्ली से लौटा और बस आज यहाँ आ गया।
1: तू बाहर क्या गया? यहाँ तो सब कुछ उजड़ गया।
0: जी
2: कौन? अच्छा रघु, कहाँ थे इतने दिनों? कोई खबर नहीं दी? मैं बहुत चिंता में था।
1: चिंता में नहीं, हम तो जैसे जीते जी मर ही गए।
2: रघु अभी आया है, थोड़ा आराम तो कर ले। दोसे
3: रघु के आने से माँ और बाबूजी के प्राण वापस लौट आए। उन्हें लगा कि अब अहिल्या का पत्थरपन दूर हो जाएगा।
0: मौसी कितनी बार फोन किए होंगे मैंने, न लैंडलाइन पर कोई जवाब, न किसी के मोबाइल पर।
1: परेशान हो गए थे हम, हर कोई फोन करता था, क्या हुआ, क्यों हुआ, आप क्या करोगे, ये कर दो, वो कर दो। बेटा बाबूजी ने तो बाहर घूमने जाना भी बंद कर दिया।
0: लेकिन मौसी ऐसा करने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थोड़ा ही निकलेगा। बाबूजी कम से कम मुझे एक बार इन्फॉर्म तो करते आप।
2: रघु सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ती थी। तुम्हारा नंबर तलाश किया तो लगातार नॉट अवेलेबल बताता था। किससे तलाश करूं, कैसे तलाश करूं, फिर अहिल्या की देखभाल, कितने डॉक्टर्स को दिखाया, हार गया था मैं।
0: बाबूजी मुझे तो ट्रेनिंग में कुछ भी अलाउड नहीं था, न फोन, न मोबाइल, न इंटरनेट। जिस दिन ट्रेनिंग खत्म हुई उस दिन तलाश की तो अहिल्या का मोबाइल बंद मिला। दोस्तों ने यहाँ के हाल बताए, बस मैं सीधा इधर ही आ गया हूँ।
1: मैंने तो कितनी बार इनसे कहा था पर मेरी सुनते कहाँ हैं?
2: कितनी बार तुम्हारे सामने लगाया था ना, लगाया था कि नहीं, बस अपना राग अलाप के रहोगी, कभी भरोसा तो करो।
1: हाँ हाँ, मुझे कुछ समझते कहाँ हो।
2: नहीं नहीं, दूसरों की बात तुम कहाँ समझो।
0: अरे बाबूजी, बाबूजी, मौसी मेरा ख्याल है कि हम कुछ और बात कर ले।
2: वही तो मैं बता रहा था, पर ये है ना।
1: फिर मुझे दोष दिया, तुम तो हमेशा ही।
2: मैंने कोई
0: बाबूजी।
3: रघु निराश नहीं था, हैरान था अहिल्या की हालत से। उसने रहस्य को जानने की कोशिश शुरू की।
0: बाबूजी जिस दिन वो घटना हुई थी अहिल्या भी साथ में थी।
2: हमें भी यही शंका हुई कि कहीं उसके साथ तो कुछ नहीं हुआ हो जो उस घटना में हुआ था। वो किसी एक कागज के टुकड़े को ढूंढ रही थी। सुनो अहिल्या की माँ, हाँ, यहाँ आओ।
1: हाँ,
2: उस दिन अहिल्या ने तुमसे बात की थी ना?
1: हाँ,
2: उस दिन वो घटना हुई थी।
1: हाँ, लगभग 20-30 मिनट बात चली थी हमारी। बाबूजी कागज ढूंढ रहे थे, मैंने तो कहा भी सुबह दे देंगे, पर तुम तो जानते हो टाइम की कितनी पक्की है। हमें वो कागज मिले तो खुश हो गई थी।
0: जी ये तो मुझे मालूम है कि उसने 3-4 लोगों के घर पर पूछताछ की थी कि क्या वो घर पहुंच गई।
2: तो क्या अहिल्या ने वो देख लिया था?
1: वो अपराधी सब खुले आम घूम रहे हैं, लोगों के जुलूस आंदोलन कुछ नहीं बिगाड़ सके उनका।
2: चुप रहो तुम, वो बाहुबली है, सब कुछ कर सकते हैं।
1: ले लो जान मेरी, मार डालो मुझे, पर मेरी मेरी बच्ची को ऐसा बना दिया
0: सी?
1: उनको कोई नहीं पकड़ेगा, कोई नहीं पकड़ेगा। क्या
2: कौन करेगा, सब बिके हुए हैं सब।
0: अभी कुछ है जिन्हें खरीदने की हिम्मत किसी में नहीं है। मैं आपका रघु आपको विश्वास दिलाता हूं कि उन पलों के एक एक लम्हों का हिसाब मैं चुकाऊंगा।
4: जयहिंद सर, जयहिंद सर।
0: इंस्पेक्टर शैलेंद्र।
4: जी सर, जी सर।
0: आपके एरिया में हुई थी ये घटना?
4: जी सर, नो सर, यस सर, यस सर। मैं उस समय ड्यूटी पर नहीं था सर। अगले दिन ड्यूटी पर आया तब खबर मिली, अखबारों के पन्ने रंगे हुए थे सर। जी सर, जी हाँ।
0: तो तुमने अपराधी को पकड़ा क्यों नहीं?
4: नो सर, यस सर, एक तो कोई ठोस सबूत नहीं था और दूसरा वो इतना बाहुबली है कि उसके खिलाफ कोई गवाही देना नहीं चाहता। मैं तो उन्हें पकड़

0: आया था सर, पर उन्होंने अग्रिम जमानत ले ली थी सर। मेरे हाथ में कुछ नहीं था सर।
1: किसका फोन आया था?
0: फोन
1: मैं पूछ रहा हूँ, किसका फोन आया था?
0: फोन किसका फोन सर, किसका फोन?
1: मुझे जानते हो इंस्पेक्टर शैलेंद्र?
0: यस सर एसपी रघु सर। सर मैं वो सर।
1: तो फिर मुझे सिर्फ इस प्रश्न का जवाब दो कि किसके फोन पर तुमने अग्रिम जमानत करवाई?
0: सर वो खुद
1: इंस्पेक्टर शैलेंद्र, रात 8:30 पर घटना होती है।
0: जी सर
1: और अग्रिम जमानत का आवेदन शाम को 5 ही दे दिया जाता है, जिसे इंस्पेक्टर शैलेंद्र यानी कि तुम
0: जी सर
1: 6 रिसीव भी कर लेते हो।
0: सर मेरी कोई गलती नहीं सर, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था सर, मालूम ही नहीं था।
1: इसीलिए बीमारी की छुट्टी लेते हो, उसी समय और उसी हॉस्पिटल में भर्ती होते हो जहाँ वे लोग भी भर्ती थे।
0: सर वो आप
1: फोन शट अप। बाबूजी मैं रघु।
2: आओ बेटा।
1: बाबूजी मैं अहिल्या से जरा अकेले में बात करना चाहता हूँ।
3: अब वो बोलती ही कहाँ है।
2: ठीक है रघु, कर लो, भगवान करे तुम सफल हो। चलो अहिल्या की माँ।
3: चलो
4: अहिल्या, मैं फिर आ गया हूँ तुम्हारे सामने इन एकांकी क्षणों में जो तुम भोग रही हो। इस दर्द को कोई नहीं जान सकता, समझ भी नहीं सकता। अहिल्या तुम चुप हो, एक गहरा आक्रोश ठहर गया है तुम्हारे भीतर, उसने तुम्हारी संवेदनशीलता को पत्थर बना दिया है। अहिल्या तुम्हारे अस्तित्व की जरूरत है तुमको। याद रखो आज कोई मर्यादा पुरुषोत्तम आकर अहिल्या को पत्थर से इंसान बना दे, वो राम तुम्हारे भीतर ही है। अहिल्या वो राम तुम्हारे अंतर में है, सदा सदा से। बनवास नहीं है ये, जहां तुम्हें इंतजार करना पड़े किसी और राम का, तुम्हें सूरज बनना होगा अपने खुद का। अपनी ज्वालाओं से पिघलाना होंगे ये पथरीले पल। सिर्फ कागजों पर इबारतों से अस्तित्व नहीं रचता है, वो रचेगा तुम्हारे संकल्पों से। मेरा नाम रघु है, पर मैं राम नहीं हूं जो तुम्हें श्राप मुक्त कर दूं। लेकिन फिर भी यही कहूंगा, तुम ही अपनी राम हो। ले लो धनुष हाथ में, जिसकी टंकार से दशानंद की लंका ढह जाए। विवशताओं की जंजीरों में जकड़ी मानवता उन्मुक्त हो जाए। मैं राम नहीं हूं पर रघु हूं तुम्हारा। तुम्हारे उन्हीं पलों से मैं उन अपराधियों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाऊंगा। बस अपने पथरीले पलों से बाहर निकलो अहिल्या, बस अपने पथरीले पलों से बाहर निकलो अहिल्या। अहिल्या बाहर निकलो अपने पथरीले पलों से, बाहर निकलो अहिल्या, अहिल्या बाहर निकलो अपने पथरीले
3: पलों से। रघु तुम कहाँ चले गए थे? तुम रघु अपनी अहिल्या को छोड़ गए हो।
1: बाबूजी माँ लौट आई है, हमारी अहिल्या, हमारी अहिल्या बाबूजी, हमारी अहिल्या
3: लौट आई है। क्यों चले गए थे तुम मुझे छोड़ कर?

0: ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए।
1: मिलॉर्ड, मुजरिम का कहना है कि घटना के समय वो अस्पताल में भर्ती थे और इसी कारण उनकी जमानत भी हुई है। जिस अस्पताल का सर्टिफिकेट है मिलॉर्ड, वहाँ के उस वार्ड के एक ही बिस्तर पर 5 मरीज उसी समय भर्ती हो गए, और वह भी तब जबकि पिछले 15 दिनों से एक मरीज उस बिस्तर पर था। उस दिन उसका डिस्चार्ज होना था। पैसों की व्यवस्था देर से होने के कारण वास्तव में उसका डिस्चार्ज अगले दिन हुआ। तो क्या मिलॉर्ड, एक बेड पर 6-6 लोग थे।
0: ऑर्डर ऑर्डर।
1: और उससे भी ठोस सबूत है मिलॉर्ड, जब निशंसता से एक अबला की अस्मिता लुट रही थी, तब धक्का मुक्की में उसका मोबाइल वही गिर गया था और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी। जब वे सब लोग वहां से भाग रहे थे, तब मोबाइल वही छूट गया, और फोन करके जब मैं वहां वापस पहुंची और मैंने मोबाइल के दृश्य देखे, जज साहब, मैं पथरा गई थी, पथरा गई थी मैं।
0: ऑर्डर ऑर्डर।
1: लेकिन इन अपराधियों को सजा दिलवाने के बाद ही मुझे लगेगा कि मैं वापस अहिल्या बन गई हूँ। वापस अहिल्या, अहिल्या।

0: अरे कमाल कर दिया अहिल्या, कमाल कर दिया तुमने तो। पूरा देश तुम्हारे साहस की तारीफ कर रहा है। जिस तरह से तुमने तर्क दिए ना, उसके उत्तर किसी के भी पास नहीं थे। किसी अहिल्या, अरे अब तुम भी तो कुछ बोलो।
1: क्या बोलू रघु, उस अहिल्या को तो प्रभु राम मिले थे और मेरे तो तुम होकर भी मुझे भी राम तलाशने को कहते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, बस इतना बता दो रघु।
0: वो क्या?
1: यदि मेरे भीतर राम है तो तुम उस राम के क्या हो? हाँ बोलो ना रघु। अरे रघु तुम मेरा सच।
2: कई पल ऐसे भी तो होते हैं जब हमारी सारी बातें खत्म हो जाती हैं, एक सन्नाटा पसर जाता है, पर उस खामोशी की भी आवाजें होती हैं जो सुनाई नहीं देती, सुनाई देती हैं कानों से नहीं सिर्फ दिल से।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक पथरीले पल, लेखक सतीश दवे, नियोजक रवि सोनी, पात्र सहित भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार था। अहिल्या कल्याणी महाजन, बाल अहिल्या श्रद्धा भाटिया, रघु दिलीप लोकरे, बाल रघु आराध्य भाटिया, माँ अंजुश्री मुखर्जी, बाबूजी नरहरि पटेल, इंस्पेक्टर शैलेंद्र रवि सोनी, सविता उषा उदय चोरघड़े, निम्मी संगीता परमार, जज संजीव मालवीय और ध्वनि आदिल कुरैशी। निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता संजीव मालवीय।
1: अभी आप सुन रहे थे नाटक पथरीले पल। इस नाटक के निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता थे संजीव मालवीय। हम आकाशवाणी इंदौर से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वायलिन वादन। आज आप सुनेंगे वायलिन पर राग बागेश्री।

अभी आप सुन रहे थे वायलिन वादन, कलाकार थे पंडित कमल कामले। ये आकाशवाणी इंदौर है। अब से थोड़ी देर में यानी ठीक 11 बजे हम आपको सुनवाएंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और 11:05 पर सुनिएगा अंग्रेजी समाचार। कृपया कुछ पलों के लिए प्रतीक्षा करें।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत

0: बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रूपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेन्द्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज एपी मॉलर मॉर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक डीआर कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The government today approved 2 major highway infrastructure projects worth combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said, the Cabinet has approved the construction of an 8.1 kilometer long 6-lane road tunnel in Delhi on NH 148AE, connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg in Vasant Kunj. Mr. Vaishnav said the Cabinet also